0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
1: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य की जल आवश्यकताओं और शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के लिए शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय के दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में कल शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने जल संरक्षण से जुड़े उपाय अपनाने का आह्वान किया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्य रात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन अंतरिक्षयान है और ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को HPV टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव का एक महत्वपूर्ण उपाय है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा यह दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
1: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की कल अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृपया से फिर से सुन लें, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्य रात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्यभर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को HPV टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा ये दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सामग्री भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, मजबूत विकास आधार बना

0: प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को प्रभावी समाधान विकसित करने तथा उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
2: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। यह यात्रा भारत और बेल्जियम के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की निरंतर गति को दर्शाती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience.

0: innovation, cooperation and sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Update rahe, aage rahe. Text par at AIR News Hindi or Instagram par AIR News Alerts ko follow kare.
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत के विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। ये रेटिंग किसी देश की सरकार के ऋण चुकाने की क्षमता और वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। एक रिपोर्ट।
5: मंत्रालय ने कहा कि यह उन्नयन चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में हुआ है और निरंतर विकास प्रभावी आर्थिक नीतियों बेहतर राजकोषीय प्रबंधन तथा मजबूत वित्तीय प्रणाली द्वारा समर्थित भारत के आर्थिक बुनियादी ढांचे का परिचायक है। JCR ने एक बयान में कहा कि मजबूत निजी उपभोग और सार्वजनिक निवेश से समर्थित भारतीय अर्थव्यवस्था ने उच्च विकास दर बनाई रखी है। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि केंद्रीय राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 में 4.07% से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 4.04% पर आ गया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नेहा गोस्वामी।
4: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की सीबीआई जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने पर मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। एक रिपोर्ट।
6: दिशा सालियान मामले में न्यायमूर्ति सारंगवी कोतवाल और न्यायमूर्ति रंजीत सिन्हा आर भोसले की खंडपीठ ने कल सीबीआई को दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश किसी के खिलाफ दोष सिद्ध करने का संकेत नहीं है। पीठ ने कहा किसी व्यक्ति को तब तक आरोपी नहीं माना जाएगा जब तक जांच अधिकारी की राय में उनके खिलाफ उचित संदेह पैदा करने के पर्याप्त आधार न हो। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
4: उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्यभर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा ये दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। ग्रुप बी के मैच में कल रात दुबई में प्रतियोगिता में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रन से मात दी। और पहली ICC विमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये प्रतियोगिता अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसका कारण श्रीलंका को मेजबानी से हटाया जाना

0: आईसीसी ने कहा कि 6 टीमों का ये टूर्नामेंट अब भारत में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाली 6 टीमों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी। 28 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसके अलावा भारत पहली बार अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर 5 से 9 सितंबर तक ह्युंडई विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला की मेजबानी करेगा। इसमें 20 देशों के 100 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन 4 सितंबर को होगा।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, विदर्भ और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। उधर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में तेज बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है।
2: भोपाल, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मंडला में मंगलवार शाम से शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह तक रुक रुक कर जारी रही। इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। सतना में भारी बारिश से बाढ़ और जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। प्रशासन ने 434 प्रभावित आवासों के लिए 18,01,000 रुपए की सहायता दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के बालासोर जिले में सुवर्ण रेखा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजघाट में भी नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है।
3: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि बालेश्वर के राजघाट में सुवर्णरेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर 10.36 मीटर के खतरे के निशान के मुकाबले लगभग 11.5 मीटर तक पहुंच गया है। झारखंड के गालुडीह बैरेज से छोड़े गए पानी ने नदी के बहाव को और बढ़ा दिया है। भोगराई, बालियापाल और जलेश्वर ब्लॉक के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य जारी रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
5: धन्यवाद कनक। एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का सीईओ बनाए जाने की खबर आज के ज्यादातर अखबारों की पहली सुर्खी है। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, राम मंदिर के लिए वायुसेना के पूर्व अफसर पर ट्रस्ट। दैनिक जागरण लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर के वायुवीर बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले ट्रस्टी। गोविंद देवगिरी बने महासचिव। अमर उजाला की टिप्पणी है, सिंदूर के सेनानी को रामलला की कमान। राजस्थान पत्रिका ने अखिल भारतीय सर्वेक्षण के हवाले से बताया है, उच्च शिक्षा में बेटियों की उड़ान, दाखिलों में लड़कों को पछाड़ा। साथ ही पत्र ने यह भी लिखा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अब भी लड़कों को बढ़त। नेपाल त्रासदी में राहत और बचाव कार्यों में भारत द्वारा की गई भरपूर मदद पर नेपाल के प्रधानमंत्री का आभार, लोकसत्य के पहले पन्ने पर है। नेपाल के पीएम बोले, भारत का धन्यवाद। अमेरिका में पासपोर्ट नियमों में बदलाव की तैयारी, दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, इसका उद्देश्य अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता पर प्रतिबंध लगाना है। हिंदुस्तान ने राजधानी दिल्ली में एसआईआर के दौरान की गई मैपिंग पर लिखा है, 45% लोग ही दे पाए अपना पुराना ब्यौरा, नाम जुड़वाने के लिए घोषणा पत्र जरूरी। जनसत्ता ने लुप्तप्राय सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए दक्कन में 16 अहम क्षेत्रों की पहचान किए जाने का समाचार प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से देते हुए लिखा है, सोन चिड़िया की संख्या अब केवल 100-150 ही बची है। ये पक्षी कभी पूरे भारत और दक्षिण पाकिस्तान में पाया जाता था। दैनिक भास्कर की ये पंक्तियां ध्यान खींचती हैं, डिजिटल दौर में दोस्ती का संकट, मैसेज तो होते हैं, मुलाकात नहीं। एनसीईआरटी द्वारा छठी और नवीं की सभी भारतीय भाषाओं की नई पुस्तकों के नाम देश की नदियों के नाम पर रखे जाने पर दैनिक जागरण लिखता है, देश की नई पीढ़ी को भारतीय भाषाओं से जोड़ने की पहल में छात्र सिर्फ भाषा नहीं सीखेंगे बल्कि देश की नदियों के नाम से भी रूबरू होंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यूएस 05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for greater adoption of water-saving technologies and learning from global best practices. Prime Minister Modi to hold talks with his Belgian counterpart Bart de Wever in New Delhi today. ISRO to launch Earth Observation Satellite EOS-5 from Sriharikota tomorrow. India's sovereign credit rating upgraded to A- with stable outlook by Japan Credit Rating Agency. Bombay High Court orders CBI probe into death of Disha Salian, former manager of late actor Sushant Singh Rajput. And in women's cricket, India to take on Hong Kong in the second Group A match of 2020 Asia Cup in Dubai this evening. Prime Minister Narendra Modi has called for sensitizing urban local bodies to the challenges arising from urbanization, including population growth and future water requirements, and suggested organizing similar Chintan Shivirs for urban local bodies. Mr. Modi chaired the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Water organized by the Minister of Jal Shakti yesterday. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibitions and workshops, including exposure to global best practices, to enable Indian manufacturers and stakeholders to develop and scale efficient solutions. We have more from our correspondent.
7: Prime Minister Narendra Modi emphasized that the actionable and time-bound action points emerging from the summit should be pursued through a continuous process of review and learning. Appreciating the intensive two-day deliberations, Mr. Modi suggested that the summit should not remain a one-time exercise and called for a continuous process of review and follow-up. Emphasizing Jan Bhagidari, Mr. Modi suggested promoting Jal Utsav to create greater awareness among people. Prime Minister called for making desilting a regular program and developing clear criteria and SOPs for desilting. On dam safety, Mr. Modi stress rigorous preparedness before every monsoon, adherence to prescribed precautions, and creating awareness among school students, including to suitable incorporation in educational curricula. Prime Minister further called for strengthening knowledge and capacity on water management and governance in universities and higher educational institutions. He suggested structured interstate study visits involving public representatives, officials, and farmers to facilitate practical learning and replication of successful interventions. Mr. Modi also called for robust water data governance, with water sector data brought together, systematically managed, analyzed and effectively utilized. He recommended the use of AI for data collection and analysis through a uniform format. He also stressed anticipatory and integrated planning to address water scarcity through suitable utilization of treated water for agriculture and industrial purposes. With Subarna Saikia, this is Vishnu PS for Akashwani News, Delhi.
6: Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of Belgium, Bart de Wever, will hold bilateral talks in New Delhi today. Both leaders will discuss the entire spectrum of bilateral relations, as well as regional and global issues of mutual interest. The Belgian Prime Minister arrived in the national capital last night on a three-day visit to India. Prime Minister de Wever has been accompanied by Belgian Minister of Defence, Theo Franken. This is his first visit to India since taking office in February last year. The visiting dignitary will also deliver a keynote address at a Confederation of Indian Industry business event in the context of the India-EU Free Trade Agreement. Our correspondent reports that the visit will provide an opportunity to further strengthen the India-Belgium partnership and advance cooperation in areas of mutual interest, including trade and investment, defence and security, and renewable energy.
8: India and Belgium share historical ties spanning over three centuries. Belgium was among the first European countries to establish diplomatic relations with independent India in September 1947. Belgium is an important economic partner for India in Europe. Bilateral trade reached over $13 billion in 2025-26. Diamond trade, with Antwerp as a major global diamond hub, remains a significant component of bilateral commerce. Belgium is also an important important source of investment in India. FDI inflows from Belgium amounted to approximately $4.2 billion between April 2000 and December 2025. Science, technology, and

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाद डवेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को प्रभावी समाधान विकसित करने तथा उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत के विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। ये रेटिंग किसी देश की सरकार के ऋण चुकाने की क्षमता और वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, मजबूत विकास आधार बनाने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली को दर्शाता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने पर मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। सरकार ने विधिक माप विज्ञान भारतीय मानक समय नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। ये देश में भारतीय मानक समय को साझा, कानूनी रूप से मान्य और प्रमाणित समय संदर्भ के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह US-05 का प्रक्षेपण कल मध्य रात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को JSLV-F617 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि किसी सच्चे प्रतिभा को जब सकारात्मक और सहयोगपूर्ण वातावरण में विकसित किया जाए तो वो महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसा वातावरण न केवल प्रयासों को सफलता में परिवर्तित करने में सहायक होता है बल्कि जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतुष्टिदायक भी बनाता है। नेपाल बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सामग्री भेजी है। वहीं नेपाल और तिब्बत में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, विदर्भ और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। कई क्षेत्रों में तेज बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। प्रतियोगिता में भारत ने रविवार को थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है संगीतकार लक्ष्मीकांत पर। लक्ष्मीकांत की चर्चा प्यारे लाल के बगैर अधूरी है। जब जब लक्ष्मीकांत के गानों का जिक्र होता है तब तब प्यारे लाल का नाम भी आता है। इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा में बेमिसाल गाने दिए।

मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत शांताराम कुदालकर का जन्म 3 नवंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। लक्ष्मीकांत दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के दिन पैदा हुए थे तो परिवार ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया, इस उम्मीद से कि एक दिन लड़का अपने नाम को सार्थक करेगा। लक्ष्मीकांत का बचपन मुंबई के विले पार्ले की झोपड़पट्टी में गरीबी में बीता। 9-10 साल की उम्र में उनके पिता नहीं रहे थे। लक्ष्मीकांत और उनके बड़े भाई ने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संगीत सीखना तय किया। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन सीखने लगे और उनके बड़े भाई तबला। लक्ष्मीकांत ने 2 बरस तक हुसैन अली से फिर बाल मुकुंद इंदौरकर से मैंडोलिन की तालीम ली। बाद में हिंदी फिल्मों की पहली मशहूर संगीतकार जोड़ी हुस्न लाल भगत राम के हुस्न लाल के पास जाकर वायलिन बजाना सीखने लगे। जब

40 और 50 के दशक में हुस्नलाल भगतराम के शागिर्दों में सिर्फ लक्ष्मीकांत ही नहीं थे, शंकर जयकिशन, खयाम जैसे संगीतकार और महेंद्र कपूर जैसे गायक भी थे। लक्ष्मीकांत की मुलाकात प्यारे लाल से रेडियो क्लब कोलाबा में लता मंगेशकर के एक संगीतमय कार्यक्रम के दौरान हुई थी। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाते थे, प्यारे लाल वायलिन वादक थे और महान वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन के वे भक्त थे। लता मंगेशकर ने दोनों की प्रतिभा को देखते हुए अपने भाई हृदयनाथ के ग्रुप में उन्हें बजाने का मौका दिलवाया और इसके साथ ही एसडी बर्मन, सी रामचंद्र, मदन मोहन, शंकर जयकिशन जैसे कई संगीतकारों से दोनों की सिफारिश भी की, लिहाजा उन्हें वादक के रूप में छिटपुट काम मिलने लगा था। पहले इस जोड़ी ने चेन्नई जाकर अपनी किस्मत आजमाई लेकिन वहां रास नहीं आया, इसलिए दोनों लौटकर मुंबई आ गए। प्यारे लाल ने अपने पिता से वायलिन बजाना सीखा। उनका सपना वियना जाकर किसी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में काम करने का था। उन्होंने खुद को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर संगीतकार बनने का सपना देखने वाले लक्ष्मीकांत को भरोसा था कि एक दिन वो संगीत के आसमान में चमकते सितारे के रूप में निकल

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के रास्ते अलग अलग होने जा रहे थे, लेकिन दोस्ती ने जोर मारा और लक्ष्मीकांत जिद पर अड़ गए। उन्होंने किसी तरह प्यारेलाल को देश छोड़कर जाने से रोका। अपने दोस्त की जिद देखकर प्यारेलाल ने भी वियना जाने का विचार छोड़ दिया। इस तरह लक्ष्मीकांत को दोस्त मिल गया और प्यारेलाल को अपना देश नहीं छोड़ना पड़ा। दोनों की ये दोस्ती उनकी ही फिल्म दोस्ताना में मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के गाए गाने सलामत रहे दोस्ताना हमारा दोस्ती का कालजयी गीत बन गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वादक से सहायक बने, फिर अरेंजर, उसके बाद फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करने लगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने असिस्टेंट के तौर पर सट्टा बाजार, छलिया, दिल भी तेरा हम भी तेरे और मदारी जैसी कई फिल्मों में काम किया। काम के सिलसिले में उनकी मुलाकात भोजपुरी फिल्मों के निर्माता के परवेज से हुई, जिन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को चार फिल्मों में संगीत देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से इनमें से किसी भी फिल्म में उन्हें म्यूजिक देने का मौका नहीं।

1963 में एक छोटे बजट की फिल्म पारस मणि उन्हें मिली तो उनके शुभचिंतकों ने उन्हें समझाया कि छोटे बजट की फिल्म से उनका करियर खराब हो सकता है, लेकिन ये फिल्म सुपर हिट हुई। इसका गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा लोगों की जुबान पर चढ़ गया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुरीला सफर शुरू हो गया।

1964 में इस जोड़ी को राष्ट्रीय प्रोडक्शन की छोटे बजट की फिल्म दोस्ती मिली। इसी साल उनके प्रेरणा स्रोत रहे शंकर जयकिशन, राज कपूर की भारी बजट की फिल्म संगम से फिल्म जगत में धूम मचा दिया। संगम और दोस्ती फिल्म फेयर पुरस्कारों की दौड़ में शामिल थी, पर बाजी मारी फिल्म दोस्ती ने।

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीतकार जोड़ी बॉलीवुड की अब तक की सबसे सफल जोड़ियों में से एक मानी जाती है। इन दोनों की जोड़ी को 7 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1965 में फिल्म दोस्ती के लिए मिला फिल्म फेयर पुरस्कार, सन 1968 फिल्म मिलन, सन 1970 फिल्म जीने की राह, सन 1978 में मिला फिल्म फेयर पुरस्कार अमर अकबर एंथनी के लिए, सन 1969 फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, सन 1980 फिल्म सरगम, सन 1981 कर्ज।

जाने माने निर्माता निर्देशक सुभाष घई की कई फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। सन 1969 में आई फिल्म गौतम गोविंदा, सन 1980 की फिल्म कर्ज, 1982 की फिल्म विधाता, सन 1983 की फिल्म हीरो।

सन 1985 में आई फिल्म मेरी जंग। सुभाष घई के साथ कुछ और फिल्में भी हैं, जैसे कर्मा, रामलखन, खलनायक, सौदागर।

मनोज कुमार की फिल्मों में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेजोड़ संगीत दिया। सन 1972 में आई फिल्म शोर, सन 1976 में आई थी फिल्म 10 नंबरी, सन 1974 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, सन 1981 में आई फिल्म क्रांति में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। राज कपूर की फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने बेमिसाल संगीत दिया। फिल्म बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम और प्रेम रोग, इन फिल्मों में इनके संगीत का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था।

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी की टोली ने एक से बढ़कर एक गाने दिए फिल्म संगीत में, और इसीलिए आप रेडियो पर अक्सर सुनते हैं गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आनंद बख्शी से कुछ फिल्मों में गाने भी गवाए, जैसे फिल्म मोम की गुड़िया का ये गाना।

फिल्म चरस में गाना गाया आनंद बख्शी ने। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में पान को लेकर ये मशहूर था कि लक्ष्मीकांत जी के लिए पान नहीं तो काम नहीं, ऐसा हिसाब रहता था। इनका पसंदीदा पान कलकत्ते का मीठा पत्ता कम चूने वाला हुआ करता था। किसी भी रिकॉर्डिंग, मीटिंग या स्टेज शो जैसे बड़े प्रोग्राम्स में वो हमेशा अपने साथ एक खूबसूरत डिब्बे में पान रखकर चलते थे। इनके पान की आदत का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वे नहीं रहे इस दुनिया में, तब लक्ष्मीकांत के परिवार वालों ने उनके इस पसंदीदा पान को होठों से छुआया था अंतिम दर्शन के समय। सन 1998 में लक्ष्मीकांत इस असार संसार से अलविदा कह गए और ये जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। अपने जोड़ीदार लक्ष्मीकांत की अचानक मौत से प्यारे लाल को

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में जोड़ी की फिल्मों की लंबी फेहरिस्त है, एक से बढ़कर एक गाने हैं। आधे घंटे के इस प्रोग्राम के सफर में सारी फिल्मों और सारे गानों को समेटना बड़ा मुश्किल है। आज बस इतना ही। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत पर। चलने से पहले आपको बता दें, शोध आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को प्रभावी समाधान विकसित करने तथा उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। ये रेटिंग किसी देश की सरकार की ऋण चुकाने की क्षमता और वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, मजबूत विकास आधार बनाने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली को दर्शाता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने के लिए मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। न्यायालय ने कहा कि पुलिस की जांच से जवाब मिलने के बजाय और सवाल खड़े होते हैं। उच्च न्यायालय ने CBI को प्राथमिकी दर्ज करने और दिशा के पिता सतीश सालियान का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया, लेकिन यह भी साफ किया कि जांच के दौरान किसी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने तक किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाएगा। सरकार ने विधिक माप विज्ञान भारतीय मानक समय नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। ये देश में भारतीय मानक समय को साझा, कानूनी रूप से मान्य और प्रमाणित समय संदर्भ के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने इन नियमों को पिछले महीने की 27 तारीख को अधिसूचित किया था और 29 तारीख को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इन नियमों में भारतीय मानक समय के निर्धारण, रखरखाव, प्रसार और उपयोग के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 180 दिन बाद लागू होंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा, किसी सच्ची प्रतिभा को जब सकारात्मक और सहयोगपूर्ण वातावरण में विकसित किया जाए तो वो महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। नेपाल बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सामग्री भेजी है। वहीं नेपाल तिब्बत में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में भारत ने रविवार को थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। ग्रुप बी के मैच में कल रात दुबई में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रनों से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of Belgium, Bart De Wever, will hold bilateral talks in New Delhi today. Both leaders will discuss the entire spectrum of bilateral relations as well as regional and global issues of mutual interest. The Belgian Prime Minister arrived in the national capital last night on a 3-day visit to India. Prime Minister De Wever is being accompanied by Belgian Minister of Defence Theo Franken. This is his first visit to India since taking office in February last year. The visiting dignitary will also deliver a keynote address at the Confederation of Indian Industry Business event in the context of the India-EU Free Trade Agreement. Prime Minister Narendra Modi has called for sensitizing urban

0: Nasimang jasung tali gitrangko gak matani sumaya bot kame hamil son momen ni rengepa gitrangko kena sonamat na ha. Ya gitrang baksana cik program na dun sung man sumaya rang bayar rambut na ha. Tau zol zol na isimang delin kuatat skain gepa vivid party program Hindi aru English kuburangko ba absen stage no nikun kena sonamat na ngin ya nakasvani tura.
1: मुझे लगता है कि अमूमन जो स्त्रियों की स्थिति है
2: जी
1: वो कैसी है तो उसकी एक कविता है जाल
2: जी जी
1: शीर्षक है जाल मैं चहचहाती थी मैं मुखर थी
2: क्या बात है
1: उसने कहा तुम वाचाल हो कुछ ना बोली उसने कहा गुन्नी हो
2: ओ।
1: मैंने तिनका तिनका जोड़कर घर सजाना चाहा उसने कहा खर्चीली हो मैंने कुछ नहीं किया उसने कहा निकम्मी हो
2: ओहो।
1: मैंने धरती चाही उसने पिंजरा बना दिया मैंने आकाश चाहा उसने जाल बुन दिया
2: क्या बात है
1: तो क्या मेरा कुछ नहीं तो क्या मेरा कुछ नहीं
2: जी।
1: उसने उदारता दिखाई और मुझे क्षितिज दे दिया कहा जा पूरा क्षितिज तेरा जो दिखाई तो दिया मगर हाथ नहीं आया
2: क्या बात है वाह बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई तो हम जरा विराम देते हैं बातचीत को और एक गाना सुन लेते हैं फिर हम आगे

0: चलते हैं।
1: सोनू निगम का जो अग्निपथ वाला गाना है,
0: हाँ
1: अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी
0: बाकी
1: है
0: है
1: जिंदगी,
0: जी,
1: वो वाला सुनवा दीजिए
0: तो चलिए सुनते हैं ये
1: जी।
0: गाना।

0: तो शरद जी की आपके लेखन की दुनिया में क्या भूमिका रही है?
1: शरद जी से भी जब कोई ये सवाल करते हैं तो बोलते हैं, अरे भाई मेरी भूमिका कुछ नहीं रही है, और इतनी भी नहीं है कि मैं उसका लिखा हुआ पढ़ता हूँ, वो लिखा हुआ भी नहीं पढ़ते हैं, टीका टिप्पणी भी नहीं, लेकिन जब भी समाचार पत्रों में कुछ आता है तो वो जरूर पढ़ते हैं और कभी कभी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि बहुत अच्छा लिखा है और ऐसा सब। मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे कुछ करने के लिए उनकी इजाजत लेना पड़ती है, मैं अपने कार्य करती हूँ, है ना, उनका अपना फील्ड अलग है, मेरा अलग है, लेकिन कभी उन्होंने किसी प्रकार की रोक ऐसी नहीं लगाई कि नहीं ये नहीं करो ये नहीं करो।
0: जी
1: और लेखन चूंकि मैं मुझे प्रिय रहा है और लेखन के लिए मैं हमेशा अपने आप को तैयार पाती हूँ, उनकी भूमिका इसलिए भी बहुत ज्यादा नहीं होती।
0: कि
1: मेरा जो
0: उनके
1: लेखन का वक्त है वो दोपहर का है,
0: अच्छा जी
1: कभी कभी सुबह भी होता है, ये कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अरे लेखन के लिए मुझे एकांत चाहिए। जैसे मेरे दिमाग में कोई चीज आई कि मुझे ये लिखना है, तो अपने किचन में मैंने एक डायरी और पेन रखा हुआ है, वो फिक्स है।
0: बढ़िया।
1: कभी कभी काम करते करते कोई विचार आया
0: तो नोट कर
1: तो
0: लेते।
1: आटा गूंद रहे हैं और फटाक से हाथ धोए और पहले उसके चार बिंदु लिख लिए
0: वाह क्या बात है।
1: जी, और फिर उसको विस्तार दे देती हूँ, क्योंकि कई बार कोई बिंदु आपके दिमाग में आता है वो छिटक जाता है कई बार, तो वो लिख लेती हूँ। तो मुझे ये शिकायत कभी नहीं रही कि अरे मुझे
0: लिखने का वक्त नहीं
1: एकांत
0: मिलता।
1: नहीं मिला या लिखने का वक्त नहीं मिला। वक्त तो चुराना पड़ता है किसी भी काम के लिए, और वो वक्त चुराने में मुझे लगता है कि मैं माहिर हूँ, चुरा लेती
0: जी तो ये
1: हूँ
0: बहुत बढ़िया बात है।
1: जी
0: तो ये आपकी जो प्रेम कहानी है कैसे शुरू हुई और कहाँ मुलाकात हुई वो एक दृश्य भी बताती चलिए।
1: मुलाकात हमारी एक कॉमन फ्रेंड थी, वो डॉक्टर थी, अनफॉर्चुनेटली वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो हम उनके उनके यहाँ मिले, उस वक्त मैं पढ़ रही थी, बीए कर रही थी, और शरद जी भी वहाँ आए अपने मित्र के साथ। तो बाद में उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि मुझे तो ना इस लड़की से शादी करनी है, ये जो
0: अरे
1: येलो फ्रॉक वाली लड़की से। फिर उसके बाद हम काफ़ी समय तक नहीं मिले, लेकिन फिर इनकी एक और मित्र हैं, उनकी पत्नी के पड़ोस में हम रहने चले गए किराए
0: जी
1: से। तो जैसे उसने मुझे देखा तो उसने जाके पीसीओ से, वो एसटीडी पीसीओ होते थे उस समय, वहां से इनको फोन किया कि अरे आप जिस लड़की को ढूंढ रहे थे वो हमारे घर के बाजू में रहने आइए। तो शरद जी वहां आ गए और हमारी दो चार मुलाकातें हुई। तब तक मुझे इस चीज का
0: अंदाजा नहीं था।
1: अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ इनके मन में है। फिर लेकिन इन्होंने होली वाले दिन जो है वो प्रपोज कर दिया,
0: होली के दिन।
1: होली के दिन प्रपोज किया, रंगे पूते थे बिल्कुल, और पहले उस समय ग्रीन और पिंक कलर चला करता था, उसमें रंगे हुए थे। लेकिन तो मैं थोड़ा सा चौंक गई कि अरे एकदम अप्रत्याशित था वो। तो उस समय तो मैंने, और मेरी चूंकि एग्जाम चल रही थी तो मुझे पूरा ध्यान उधर देना था, लेकिन पता नहीं फिर कुछ मेरे मन में भी कुछ तो अंकुरित हुआ होगा। तो फिर फाइनली हम लगभग 1 महीने के बाद में मेरी रजामंदी रही।
0: ज्योति जी एक बार फिर हम आपके लेखन की दुनिया में लौटते
1: जी
0: हैं। आपकी जहां तक मुझे जानकारी है 17 किताबें हैं
1: जी
0: और बहुत सारी किताबों को पुरस्कृत किया गया।
1: जी
0: मध्य प्रदेश का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला।
1: जी
0: शब्द साधिका सम्मान से आपको
1: जी
0: सम्मानित किया
1: जी
0: गया। किस कृति के लिए मिला और वो कैसा था एक्सपीरियंस आपका?
1: ये जो साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार मुझे मिला है, ये मेरी पुस्तक यात्राओं का इंद्रधनुष के लिए मिला। इसमें मेरे सारे यात्राओं के वर्णन हैं,
0: जी
1: और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से अखिल भारतीय पुरस्कार मिलना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान
0: गौरव
1: की
0: की
1: बात
0: बात है।
1: थी, गौरव
0: बिल्कुल।
1: की बात थी। यात्राओं के वृत्तांत का चलन अंग्रेजी में बहुत है, हिंदी में बहुत कम है।
0: जी
1: वो किताब जब चयनित हुई तो मुझे निश्चित रूप से प्रसन्नता होती है। हमको जब भी मैं यात्राएं करती हूँ तो आने के बाद में सब थक्के सो जाते हैं, लेकिन मेरी आदत चूंकि सुबह जल्दी उठने की है तो 5 बजे नींद खुलती है और मैं डायरी लेके पिछले दिन की तमाम बातें नोट कर लेती हूँ।
0: बढ़िया।
1: तो जब हम यात्रा वृत्तांत लिखने लगते हैं तो वो सारी चीजें काम आती हैं। तो मैं जब भी बाहर से आती हूँ सारे यात्राओं के वृत्तांत लिखती हूँ। तो जब बात पहाड़ों की हो रही थी तो जितने भी कठिन यात्राएं हम कर चुके,
0: जी जी
1: जिसमें सिक्किम के लेह लद्दाख के ये सब तो थे, इसके अलावा जो हमारी प्रमुख यात्रा है वो है कैलाश मानसरोवर की। वो अद्भुत यात्रा है। कैलाश मानसरोवर तो है ही, कैलाश पर्वत में एक चुंबकीय आकर्षण है। मुझे लगता है वो हमको अपनी ओर खींचता है। जब हम 3.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए जब कैलाश के चरण स्पर्श को जाते हैं
0: जी,
1: तो मेरा अनुभव तो ये था कि मैं वहां से लौटना ही नहीं चाहती थी।
0: वाह क्या बात है।
1: और मुझे मालूम नहीं ये आस्था है क्या है, कुछ तो स्पिरिचुअल है। और वहां मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। ये भाव वहां पर आते हैं। और कठिन यात्राओं में 2 बार मैंने स्कूबा डाइविंग किया है, क्योंकि मुझे मछलियों की तरह तैरना अच्छा लगता है।
0: कहाँ पर की है स्कूबा डाइविंग?
1: स्कूबा डाइविंग मैंने एक तो मालवण में की है, और दूसरा स्कूबा डाइविंग मैंने किया लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप वाला थोड़ा गहरे पानी में।

0: किया है, पर वो भी अद्भुत अनुभव रहा।
1: जी
0: और इसी तरह मैंने हवाई जहाज से कूदी मारी, स्काई डाइविंग हमने की दुबई में,
1: हाँ
0: और उसमें भी जो चिड़ियाओं की तरह उड़ने वाला था वो पैरासेलिंग
1: हाँ
0: और स्काई डाइविंग से पूरा हो गया सपना।
1: हाँ तो चलिए इस खुशी के नाम एक गाना सुनते हैं।
0: शान की आवाज में हम एक गाना सुन लेते हैं, चांद सिफारिश जो करता हमारी।

0: इस गाने के बाद अब आपके एक और हुनर की बात हमें याद आ रही है, वो है कला, मांडना आर्ट,
1: जी
0: जिसमें भी आप माहिर हैं। तो ये कहाँ से सीखा, कहाँ से इसका
1: हाँ
0: बीज पड़ा आपके मन में?
1: हाँ तो दरअसल मेरा बचपन जहाँ बीता वहाँ पर बाड़ा होता था, एक गुआड़ी बोलते थे उसको मालवा में।
0: जी।
1: तो 16-17 घर थे और हर घर के आगे एक कच्चा ओटला हुआ करता था। वो ओटले का बनावट ऐसी होती थी, चौकोर होता था वो, हर घर के आगे एक ओटला। तो ओटला कैसा होता था कि वो पीली मिट्टी और गोबर से लीप के उसको बनाया जाता था।
0: जी जी
1: एक छोटा सा, समझ लीजिए, सिर्फ एक एक सीढ़ी ऊंचा होता था वो। तो जब उस पर पीली मिट्टी और गोबर का लेप हो जाता था तो बिल्कुल प्लेन होता। और चूंकि मालवा की संस्कृति है मांडना, तो उस पर गेरू और खड़िया यानी सफेद और लाल रंग से डिजाइन बनाई जाती थी।
0: जी
1: वो जो पुरानी परंपराएं हैं वही डिजाइन होती थी। तो ये हमने हमारी दादी से, बुआ से, अड़ोस पड़ोस की महिलाओं से, चाची भाभी, पहले तो ये रिश्ते होते थे ना, आंटी अंकल तो होते नहीं थे, तो कोई
0: काकी
1: भाभी,
0: चाची
1: चाची,
0: होती
1: काकी, मामी,
0: थी,
1: बुआ जी,
0: दादी
1: मामी
0: नानी।
1: जी, ऐसे होता था। तो वो लोग, चूंकि माँ नौकरी करती थी, तो जब सब महिलाएं मांडने बनाती थी तो चूंकि माँ नहीं है तो चलो भाई माँ की बेटी को पकड़ो, है ना। तो मुझे कहते चलो गुड्डी, गुड्डी मेरा बचपन का नाम था, गुड्डी चलो आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, मांडनो बनाई ले, मालवी बोली में बोलते थे हमारे, आ जा तू भी। तो मैं अपना खेरू गड़िया एक कटोरी में लेके बैठ जाती थी खड़िया, और उनके देखा देखी कुछ कुछ टिपकी लगा के गोला बनाया, ऐसे करके मैंने शुरू किया। तो बीज जो था वो वहां पड़ गया। फिर वो बनाती रही, फिर शादी होकर आए तो रंगोली बनाना घर में, घर के आगे ऐसे सब। उन दिनों हमारे यहाँ फर्नीचर का काम चल रहा था तो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े थे। चूंकि मांडना प्रेम था और मेरा कॉलेज में बीए में मेरा एक सब्जेक्ट पेंटिंग था,
0: जी।
1: तो हाथ चलते थे, ब्रश चलता था, तो मैंने उसको टेराकोटा से पेंट करके और उस पर रेड व्हाइट कलर से अपना बना दिया, मरून कलर से उसको पोत लिया और व्हाइट कलर से उस पर डिजाइन बना ली, कुछ मिरर चिपका दिए छोटे छोटे ऐसे करके। तो मेरी जो छोटी बेटी है चानी, उससे बोला मम्मी बहुत सुंदर बना है, आप थोड़े ज्यादा बनाओ ना, अपन एग्जीबिशन करते हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ जी। तो वो क्या है, थोड़ा बिजनेस फैमिली वाली है ना, तो चूंकि शरद
0: तो
1: जी बिजनेस में, तो उसके भी दिमाग में बिजनेस के आइडियाज आते रहते हैं। तो उसने बोला मम्मी एग्जीबिशन करते हैं। तो मैंने जो पहले जो मांडने बनाए वो करीब 300 के करीब मांडने बनाए मैंने,
0: वाह, क्या बात है।
1: वो फिर लकड़ियां प्लाई लिया ऐसे करके। और आप यकीन मानिए कि मेरी जो पहली एग्जीबिशन थी उसमें सिर्फ 8 मांडने वापिस घर आए, बाकी सारे बिक
0: बिक
1: गए।
0: गए,
1: जी।
0: वाह क्या बात है।
1: तो इस तरह से अलग अलग होटल्स में वहां पर एग्जीबिशन होती थी तो वो की, और उस वक्त तो सबको बना बना के गिफ्ट में भी यही दे दिया, कभी किताब कभी मांडना, ऐसा
0: जी
1: हस्तलिखित या हाथ की चीज की वैल्यू अलग होती है, उसके वो
0: बिल्कुल।
1: अनमोल होती है दरअसल।
0: अब लघु कथाओं की बात करते हैं। लघु
1: जी
0: कथाएं भी आपने लिखी हैं और
1: जी
0: संग्रह आए,
1: जी
0: कुल कितने लघु कथाओं के संग्रह आए, और किसी लघु कथा का जिक्र कीजिए यहाँ पर।
1: जी मेरे पहला लघु कथा संग्रह था मेरा जलतरंग, दूसरा था बीजू का, तीसरा था 99 का फेर, और जो चौथा लघु कथा संग्रह है मेरा वो है गोद भराई, और वो मैंने मालवी में लिखा है। मतलब मालवी हमारे यहाँ की बोली है,
0: जी।
1: मैं चूंकि हिंदी लिखती हूँ, हिंदी ही मेरा विषय रहा है, लेकिन जिस परिवेश में आप रहते हैं जहाँ बोलियाँ होती हैं, तो मुझे लगता है कि बोलियाँ बचाना भी बोलियों वालों का दायित्व है।
0: जी।
1: तो चूंकि मैं मालवा से हूँ तो मैंने एक पुस्तक मेरी मालवी बोली में मैंने निकाली है, तो एक लघु कथा संग्रह वो है, और मेरा जो पांचवा लघु कथा संग्रह है वो मेरे ख्याल से अगले महीने मेरे हाथ में आ जाएगा,
0: अच्छा।
1: जो षष्ठी पूर्ति के नाम से आ रहा है, क्योंकि जब मैं, मुझे लगा 60 बरस हुए तो 60 बरस में 60 लघु कथाएं तो होनी चाहिए,
0: क्या
1: तो
0: बात
1: काफी
0: है,
1: समय से
0: वाह।
1: लिख रही थी और इस तरह से वो, तो मेरे कुल जमा भी 5 लघु कथा संग्रह है।
0: बढ़िया।
1: तो मैं, आप कहें तो एक लघु कथा यहाँ पर सुनाऊं मैं।
0: जी
1: दरअसल लघु कथा का शीर्षक है ढक्कन।
0: जी
1: ढक्कन। विष्णु जी और सरला जी दोनों ही उस सुबह अपने दैनंदिनी कार्यों में व्यस्त थे, जीवन की सांध्य बेला में भी उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते थे। विष्णु जी दिन भर में 5-10 दफा कोस लेते थे, उस दिन सुबह भी शहद की बरनी का ढक्कन खोलने का निरर्थक प्रयास करते हुए बड़बड़ा रहे थे, इस उम्र में आकर भी अकेलापन।
0: जी
1: अकेलापन कहाँ, उनसे दो ही बरस छोटी सरला जी ने उनके हाथ से बरनी लेते हुए हंसकर कहा, मैं इतनी बड़ी दिखाई नहीं देती आपको, अनजान मत बनो, तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं। बच्चों की परवरिश, उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्या इसी दिन के लिए? उनके स्वर में नाराजगी थी। सरला जी ने मन ही मन सोचा, क्या सारी गलती बच्चों की ही है, क्योंकि वे अपने पति का स्वभाव भी जानती थी। लेकिन प्रत्यक्ष में बोली, यह लीजिए, पतले कपड़े की सहायता से ढक्कन खुल गया है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगली बार थोड़ा ढीला छोड़ना होगा, ढक्कन को भी और रिश्तों को भी।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये तो एक मुकम्मल लघु कथा आपने सुनाई।
1: लघु कथा की विशेषता ही यह है कि उसके अंत में एक पंच होता है।
0: जी जी जी
1: और वो पंच जो है वो पूरी लघु कथा का सार होता है।
0: जी।

0: ज्योति जी, लेखन की दुनिया में
1: जी
0: बहुत तरह के बदलाव आए हैं,
1: जी
0: लेकिन स्त्री लेखन आज कहाँ पर है? स्त्री लेखन में किस तरह के बदलाव आप महसूस करती हैं? किस तरह की चुनौतियां आज अभी भी कायम है?
1: चुनौतियां तो हैं।
0: जी
1: जब हम पुरुष प्रधान समाज में हैं तो चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन स्त्री लेखन में एक जो बदलाव मुझे दिखाई दे रहा है वो है खुलापन अधिक हो गया है। मैं उससे सहमत नहीं होती हूँ,
0: जी
1: क्योंकि मैं मालती जोशी की कहानियों को पढ़कर बड़ी हुई हूँ।
0: जी जी
1: उनकी कहानियों की नायिका स्वाभिमानी होती थी, लेकिन उनके लेखन में खुलापन कभी नहीं रहा। उनकी नायिकाएं दबी कुचली नहीं होती थी,
0: जी
1: उनकी नायिकाएं षड्यंत्रकारी भी नहीं होती थी, लेकिन अब खुलापन भी आ गया है और महिलाओं को षड्यंत्रकारी बनाकर प्रस्तुत किया जाता है कई जगह। तो
0: जी
1: मुझे लगता है वो आवश्यक नहीं है। कई बार मुझे कुछ लेखिकाएं कहती भी हैं कि तुम्हारे लेखन में इतनी सात्विकता की क्या जरूरत है, मेरा पैटर्न यही है, मैं ऐसे ही लिखती हूँ
0: जी
1: और उससे मुझे सुख मिलता है। जब आप कोई काम कर रहे हैं, आप लेखन कर रहे हैं, उससे आप सुख मिलता है और संतुष्ट हैं, तब तो आपका लेखन सार्थक है।
0: जी
1: तो बदलाव आया है। दूसरा ये कि कई बार ऐसा सुनने में आता है और देखने में भी कि महिलाओं को, महिला लेखिकाओं को मतलब, संघर्ष अधिक करना पड़ता है,
0: जी
1: एक मुकम्मल स्थान उनको कई बार वो नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम अपना लेखन ईमानदारी पूर्वक करते रहें
0: जी बिल्कुल सही कह रही हूँ।
1: और अपने प्रयासों को जारी रखें तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपना स्थान बनाने से कोई रोक सकेगा।
0: बिल्कुल, हमें ये बताइए कि इतनी सारी किताबें हैं, तकरीबन 17 किताबें आपकी आ गई हैं,
1: जी
0: तो आपके मुख्य मूल रूप से विषय कहाँ से उठाती हैं, कौन से विषय होते हैं?
1: विषय आसमान से नहीं आते है ना, विषय हमारे चारों तरफ होते हैं। मैं यहाँ इसको ईश्वर का आशीर्वाद मानती हूँ, क्योंकि देखते तो सभी हैं लेकिन उन्हें पकड़ने की और फिर अभिव्यक्ति की जो ताकत है वो मैं मानती हूँ कि वो ईश्वर प्रदत्त है, जिसे लोग गॉड गिफ्ट कहते हैं। एक अखबार में खबर आई थी, एक बच्चे को, कोई शिशु था, वो झाड़ी में फेंक के कोई चला गया, नवजात शिशु।
0: जी
1: अब नवजात शिशु झाड़ी में फेंक के गया तो पता चला कि वो तो लड़का है। तो एक कोई अम्मा ने बोला, अरे लड़क छोरो फेंक गई, छोरी होती तो बात थी।
0: ओ
1: मतलब देखिए
0: हाँ
1: समाज की मानसिकता कैसी है कि अगर लड़की को फेंक दिया होता तो बात समझ में आती, लड़के को क्यों
0: क्यों
1: फेंका।
0: फीका?
1: तो ये बीज हो गया। अब इसको विस्तार दे करके कथा का रूप हो गया। एक बार मैं अपनी एक्टिवा पे जा रही थी और पीछे से गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा है, तो मैंने बोला कि भाई रेड लाइट है, तो मैंने ऐसे इशारा किया कि ऊपर से निकल जा। हाँ ऊपर
0: अच्छा
1: से निकल जा भाई, तेरे को
0: हाँ
1: जल्दी।
0: जल्दी है तो
1: लेकिन वहां उस उन 39 सेकंड में खड़े खड़े दिमाग में आया, तो मैंने जाकर के एक व्यंग लिखा कि हवाई जहाज में चढ़कर हम जाएंगे दफ्तर,
0: क्या बात है
1: है ना। तो इस तरह से विषय कब आ जाते, और इन सब विषयों के साथ साथ जनरली सामान्यतः लोग बोलते हैं कि राजनीति महिलाओं का विषय नहीं है, राजनीति पर महिलाएं नहीं लिखती। मन्नू भंडारी जी की महाभोज की हम बात करें तो बहुत कम है जिन्होंने, महिलाओं ने राजनीति पर लिखा है। तो मेरा एक उपन्यास है पार्थ तुम्हें जीना होगा, वो पूरा राजनीति पर है उपन्यास, और उसकी नींव ही पड़ी कि मुझे, मैं उन दिनों राजनीतिक परिदृश्य से बहुत विचलित थी और मुझे लगता था कि ऐसा कोई युवा और ईमानदार नेता होना चाहिए जिस पर जनता भरोसा करे, जो ईमानदार है, युवा है और अपने कार्य के प्रति समर्पित है।
0: जी जी
1: तो वो अर्जुन के रूप में मेरे सम्मुख आकर के खड़ा हो गया। तो मैंने बस उसके बिंदु लिखे कि ये उपन्यास मुझे लिखना है, और वो मैंने लिखा। और हमारे आसपास जो सामाजिक विसंगतियां होती हैं
0: जी
1: वो आपको लिखने के लिए प्रेरित करती हैं।
0: जी जी
1: और माँ के लिए ही बस दो लाइनें कहूंगी कि कि गरीबी में भी उसने कभी मेरी फ्रॉक नहीं फटने दी।
0: वाह।
1: गरीबी में भी उसने कभी मेरी फ्रॉक नहीं फटने दी। संस्कारों का धागा जो था माँ के पास।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई। अब चलते चलते कोई एक कविता और सुनाना चाहेंगी?
1: मैं अंतिम, इसकी अंतिम तो नहीं, अंतिम से एक पहले वाली कविता सुनाती हूँ। उसका शीर्षक है अर्थी। पूर्ण हुआ है जीवन, अब तो विदा की बेला आई है। बांसों का ताना बाना बुन अर्थी आज सजाई है। जीते जी जो मिल ना पाए, कांधे सारे आज मिले हैं। चला चली की इस बेला में किसी से भी ना शिकवे गिले हैं। जीवन भर जो इर्द गिर्द रही, उसी काष्ठ की अर्थी सजी है। नया जन्म पाने को ही तो आत्मा ने यह देह तजी है। इसका शीर्षक है खिड़की। यह भी कविता है दुनिया काट की किताब से ली है
0: जी।
1: वह लकड़ी की खिड़की, शीशा भी नहीं है जिसमें, जब खुलती है तो भीतर आ जाते हैं सपने हवा के साथ। कभी कभी ले आती है मोगरे की सुगंध भी, और जब रहती है बंद तब भी रात में निकला चांद महसूस कर लेते हैं सपने सारे।
0: क्या बात है, बढ़िया कविता। बहुत ही दिलचस्प बातें आपने साझा की ज्योति जी।
1: जी,
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
1: मुझे भी आपसे मिलकर यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे लेखिका ज्योति जैन से ममता सिंह की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग मिला योगिता जाधव से। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। आज के मेहमान कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।
3: आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा, पिटारा।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी,
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावेनिल वालरिवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं, और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंडाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट द वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण देंगे। उनके साथ रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकिंग भी दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक

बद है। रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकिंग के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि विश्व इस समय अब तक की सबसे बड़ी भू राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में बेल्जियम जैसे महत्वपूर्ण साझेदार विचार विमर्श के लिए सार्थक अवसर प्रदान करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय कोहिनूर पावर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 290 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में कोलकाता के 11 परिसरों में छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अनुसार कंपनी ने झारखंड में 66 मेगावाट बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण लिया था। आरोप है कि ऋण राशि को निजी हितों के लिए बाद में समूह की अन्य इकाइयों को भेज दिया गया। सरकार ने विधिक माप विज्ञान भारतीय मानक समय नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। ये देश में भारतीय मानक समय को साझा कानूनी रूप से मान्य और प्रमाणित समय संदर्भ के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उपभोक्ता मामले विभाग ने नियमों को पिछले महीने की 27 तारीख को अधिसूचित किया था और 29 तारीख को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इन नियमों में भारतीय मानक समय के निर्धारण, रखरखाव, प्रसार और उपयोग के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ईओएस 5 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को जीएसएलवी F-17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के साथ बैठक की। इसमें स्कूल शिक्षा सुधारों के अगले चरण पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के साथ बैठक में आगामी परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। 14वीं नागालैंड विधानसभा के 9वें सत्र का दूसरा और अंतिम सत्र आज आयोजित हो रहा है। इस दिन कई सरकारी बिलों के साथ साथ फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बिल 2026 समेत कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाएंगे और उनको पारित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। लद्दाख में आगामी 2 दिवसीय द्रास महोत्सव 4 और 5 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इसमें हाल ही में नए जिले के रूप में घोषित द्रास की पर्यटन, सांस्कृतिक और साहसिक क्षमता को प्रदर्शित किया जाएगा। नेपाल बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सामग्री भेजी है। वहीं नेपाल और तिब्बत में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। खेलों में महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। प्रतियोगिता में भारत ने रविवार को थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ड दी वेवर के साथ वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे पहले आज सुबह बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बेल्जियम के प्रधानमंत्री भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल रात राजधानी पहुंचे। प्रधानमंत्री डी वेवर के साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। पिछले साल फरवरी में पद संभालने के बाद ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश शासन आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि विश्व इस समय अब तक की सबसे बड़ी भू राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का सामना कर रहा है। ऐसी स्थिति में बेल्जियम जैसे महत्वपूर्ण साझेदार विचार विमर्श के लिए सार्थक अवसर प्रदान करते हैं। बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन ने भारत को

0: के अगले चरण पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापारिक सम्मेलन में भारत की सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनियम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनियम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। प्रवर्तन निदेशालय कोहिनूर पावर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 290 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में कोलकाता के 11 परिसरों में छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अनुसार कंपनी ने झारखंड में 66 मेगावाट बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण लिया था। आरोप है कि ऋण राशि को निजी हितों के लिए बाद में समूह की अन्य इकाइयों को भेज दिया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि रूस के भीतर यूक्रेन के हमलों और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का रूस की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। श्री रूबियो ने कहा कि अमेरिका और यूक्रेन ऐसी व्यवस्था पर बातचीत कर रहे हैं जिनसे यूक्रेन उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों का उत्पादन कर सके। रूबियो ने यह बात कल एक साक्षात्कार में रूस के ईरान को समर्थन और यूक्रेन में जारी युद्ध पर चर्चा के दौरान कही। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन रूस के भीतर सैन्य और ऊर्जा से जुड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए लंबी दूरी के ड्रोन और अन्य हथियारों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त देखी गई। ताजा जानकारी के अनुसार सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 76,779 पर और निफ्टी 53 अंक बढ़कर 23,967 पर पहुंच गया। क्षेत्रीय स्तर पर रियल एस्टेट, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और पूंजीगत वस्तुएं प्रमुख लाभ कमाने वाले क्षेत्र रहे। बैडमिंटन में किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर्स सुपर 750 टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Yana Kaswani Turna Simang Deliniko Watatskangpa Hindiko Kokna Sonamat Nangaha, the Yasumin Bakuna Simanga, the Al Salaratamni Program Rango, Somera Maksa Sulsu Yatanga, Skangpa the Al Salim Program Go Yatanga, Chigni Bajimi Chikun Simang, Berkeley Woman, Aro Beckington Sirani Gupa, Chasung Taligit Ranko Kna Sonamat Nangan, Jolzol Chigni Bajimi Kula Chuni. Kini baju anda tentang bibit parti program ko kenal sunat menanggen. Kini baju orang hanap sun station ni kon English cover. Kini baju minit mahu Hindi cover. Kini kolaciu bibit parti program. Ketam baju Hindi cover. Ketam baju minit mahu English cover ko kenal sunat menanggen. Yang sal ni program wa datam ni program ko yatang sekayam. Atam ni dok baju orang hanap simang. Wiatani arus bot rangu kena sunamat nanggen jol-jol dok paji minit pungau. Silong stes ni kuatat sekain gepak cikum ho kena sunamat nanggen. Dok paji minit cik pungau. Isol na rukmetelani git rangu kak matani sumayo Martin sang ma arunidol ni rukgepak git rangu kena sunamat nanggen. Dok paji minit kolaciu na isimang ni namliki biatin gepak casung tali git rangu kena sunamat nanggen. Seni baji onhan sponsored program Make a Rise series pak ni ko kenal sunamat nanggen jol-jol Climate Change and Water ni geman Ma Martelina M. Sangma Jan Range Forest Officer Turani wajim wano yang ni geman sandi era ni ko kenal sunamat nanggen Seni baji mi cip wawahan jol-jol nak simang Tengtang-tang Hindi film ni git rang ko kenal sunamat nanggen Seni baji mi kolacio sponsored program Kisan Wadi Jian Ministry of Agriculture and Farmers Welfare ni ngajim yani geman bak chibri ko na simang knaso na matnangen jol jol chet pajiung ahon deliniko watatskaing pa hindi kobor, chet paji minit po English kobor,

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: अलका याग्निक और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाजें हैं अगले गीत में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की, फिल्म का नाम है अग्निपथ।
3: मेरे हीरो,
4: ये क्या करती?
3: मेरे जानो,
4: मुझे डर लगती है।
3: मेरे बालम,
4: तेरा भाई हमको मारती।
3: तुझे सलाम। मेरे हीरो, मेरे जानो, मेरे बालम, तुझे सलाम।
4: अय्यो कृष्णन अय्यर यम, ये के इतने सारे नाम।
3: तूने क्यों मुझे बचाया?
4: बस अपना फर्ज निभाया।
3: क्या तू कुछ भी कर जाता?
4: कर जाती।
3: कर जाती नहीं, कर जाता बोलो।
4: अच्छा अच्छा, कर जाता।
3: मेरे लिए मर जाता?
4: हाँ मर जाता।
3: ओह माय गॉड।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गनफॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी।
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावेन इलवालरीवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है, जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंडाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत है सुदेश भोसले और अलका याग्निक की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, फिल्म का नाम है अकेला।

पान भी चबाया फिर इत्र भी लगाया। थोड़ा संभल संभल के आया मैं सीधा चल के, पर लड़खड़ा गया मैं, मेरी चोट

जश्न शादी, बाकी है रात आधी, नाचूंगा गाऊंगा रे मैं आज सारी रैना, नाचूंगा गाऊंगा रे मैं आज सारी रैना, मुझे आज कुछ न कहना, मेरा दिल ठिकाने है ना, मुड़ गया।

0: आज कुछ ना कही ना मेरा दिल ठिकाने है ना, मुझे आज कुछ ना कही ना मेरा दिल ठिकाने है ना।
1: आइए अब सुने अलका याग्निक को। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है खलनायक।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

कार्यक्रम यादों की महफिल में आज हमने सुने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजे कुछ यादगार गीत। यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

संगीत के इस सुरीले सफर में बन के हमारे हम सफर चलने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत में एक बार फिर आपको बता दें आज की इबारत। एग्रीमेंट परमानेंट हो गया, फिर कैसे एक्सीडेंट हो गया। पतरी की है मोटर कार।

वो रोए तो राजेंद्र, हंसे तो जितेंद्र, हर हीरो की खूबी उसके अंदर। मुझको ये इशारा मिला है कि तूफान में जैसे किनारा मिला है, तेरी नजर पे ही ये मेरी नजर है, कि तूने बिठाया है मुझ पे पहरा, आया है जोगी बन के लुटेरा। प्यार की कीमत किसने अदा की, जब कभी होंगी बातें वफा की, सबकी जुबा पर होंगी अपनी कहानियां, अब याद में तेरी कट जाएंगे जीवन के दिन चार, खुश रहना मेरे यार। तो सुरीला सफर के हमारे बहुत सारे साथी हम सफर बहुत सारे संदेशे और संदेश पहले ही लिख चुके हैं और लगातार लिख रहे हैं, तो उन सारी बातों को, संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफर में बन के हम सफर आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम पढ़ देते हैं पहले कुछ संदेश। सुरीला सफर का इवेंट है ये, इबारत नहीं अरेंजमेंट है। श्रोतागण भी प्रेजेंट है, अनोखा कंटेंट है, गाने सभी इबारत में ही साइलेंट है, संगीत में सफर में उपस्थित रहने का हमारा भी कमिटमेंट है। आज की कहानी इंसानियत की पहचान कराती है, जो ईमानदार होता है, जो ईमानदार होता है वो वफादार होता है और वही परेशान होता है। घोड़ा हाथी की हालत कैसी होती है, जब जरूरत होती है तब तक रखते हैं, उसके बाद मोटर ट्रैक्टर जैसे वाहन काम आते हैं। किसी ने ये मैसेज लिखा है कि वैसे तो मुझे सभी गाने बहुत अच्छे लगते हैं, पर कुली का एक्सीडेंट हो गया वाला गीत मुझे पसंद है। एक्टर अमिताभ बच्चन इस गीत में बुरी तरह से घायल हो गए थे। और ये अगला कमेंट है कि आज की इबारत में वो गीत जो फिल्मों में पक्षियों, जानवरों, सांपों पे फिल्माए गए गीत हैं, जानवरों का फिल्मों में काम देखकर दर्शक बहुत ही अचंभित हो जाते हैं। फिल्म नागिन, निगाहें, सूरज और चंदा में सांप पे फिल्माए गए दृश्य बहुत पसंद किए गए। सफेद हाथी, हाथी मेरे साथी, माँ जैसे फिल्मों में हाथी का काम देखने लायक था। और तो और फिल्मों में तेरी मेहरबानियां में तो डॉगी ने कमाल का काम किया था, ऐसे लगा कि फिल्म का असली हीरो तो वही है। ये अगला मैसेज है कि आज की इबारत का सबसे खूबसूरत पहलू उसका भावनात्मक मोड़ है, चंचलता और ठिठोली से शुरू हुआ ये सफर जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे इसमें गंभीर रुमानी, इकरार और वफा, दर्द और विदाई का संजीदा रंग भी घुलने लगता है। प्यार की कीमत किसने अदा की से लेकर खुश रहना मेरे यार तक पहुंचते पहुंचते ये अल्लड़ दास्तान एक क्लासिक ट्रेजिक रोमांस का रूप ले लेती है, जहां जुदाई का दर्द तो है मगर शिकवे के बजाय महबूब के लिए सिर्फ एक दुआ बची रह जाती है। तो साथियों आइए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ में, जिसमें आवाज है मोहम्मद रफी की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी। राजेश खन्ना की ये फिल्म हिंदी फिल्मों के इतिहास की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है, जिसमें हाथी अपने मालिक का सबसे पक्का और वफादार दोस्त होता है। हाथी और उसके साथी नायक के परिवार की जान बचाने के लिए खुद की जान दे देते हैं। इस फिल्म में हाथी का नाम क्या था और राजेश खन्ना के साथ में अभिनेत्री कौन थी, अपने विचार, अपने जवाब, अपनी बातें हमें लिख दीजिए।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं कि इस फिल्म में नायिका थी तनुजा, हाथी का नाम था रामू और शीला। ये एक कमेंट पढ़ते हैं कि पहिए बदलते रहे, कभी टमटम तो कभी रिक्शा और मोटर कार हो गई, बदला जमाना ऐसा कि हर पुरानी याद अब बस एक दीवार हो गई। वो जवानी के दिन और वो रुत मस्तानी अब कहाँ मिलती है साहब। तब टूटी साइकिल में भी वफादारी थी, आज बड़ी गाड़ियों में भी बेजारी हो गई। बस यही दुआ है कि यादों के सहारे जीवन के कुछ दिन कट जाएं और बिछड़ते हुए भी दिल से कहा जा सके कि खुश रहना मेरे यार। अगला ये कमेंट हमारे एक साथी ने लिखा है कि कभी कभी कुछ ना जानने में ही शांति है, क्योंकि जीवन कोई पहेली नहीं, जिंदगी के पास आपके सारे सवालों के जवाब नहीं होते, फिर भी हमें शांति के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ये एक कमेंट है कि जब जानवर कोई इंसान को मारे, एक जानवर की जान आज इंसान ने ली है। साथियों, हिंदी फिल्मों में जानवरों ने हमेशा एक अहम भूमिका निभाई है। कभी वो नायक के वफादार दोस्त बने तो कभी कहानी का मुख्य हिस्सा बनकर दर्शकों को हंसाया रुलाया। हिंदी फिल्मों में जानवरों के कुछ सबसे यादगार और अहम रोल्स के बारे में हमें बताएं, साथ ही ये भी बताएं कि क्या आप कभी किसी जंगल सफारी में गए तो क्या कैसा अनुभव रहा, किसी नेशनल पार्क में जाकर क्या क्या देखा आपने, और ये भी बताएं कि बचपन में सर्कस देखी थी क्या कभी। और सबसे अहम बात, जानवरों के अधिकारों के बारे में क्या जानते हैं आप। अब हम बात करेंगे फिल्म तेरी मेहरबानियां की, जिसमें एक मोती नामक लैब्राडोर ने अपने मालिक की हत्या का बदला लिया था और ये रोल आज भी मील का पत्थर माना जाता है। तो इस फिल्म के हीरो हीरोइन और खलनायक के नाम हमें लिखकर भेज दीजिए। और मैं साथियों आपके सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, पढ़ती हूँ और आगे भी पढ़ती रहूंगी।

आवाज की दुनिया के दोस्तों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं। जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लन, अमरीश पुरी, सदाशिव अमरपुरकर, असरानी राजकिरण थे और आवाज थी शब्बीर कुमार। गीतकार थे SH बिहारी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम था तेरी मेहरबानियां। आवाज की दुनिया के दोस्तों ने हमें बहुत सारे जवाब दिए जो हमें मिल गए और हमने पढ़ भी लिए। अरे ये क्या लिख दिया आपने, ये एक कमेंट मिला है कि मैं अपनी चादर सिलने को बैठ गई हूँ। तेरी मेहरबानियां फिल्म कुछ दिन पहले ही तो देखी थी, सच में आंखों में आंसू आ गए।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत के बीच में कुछ बोलों के लिए आवाज दी है हेमा मालिनी ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। और इस ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म का नाम आप सभी जानते हैं, सारे डायलॉग्स भी आप जानते हैं, तो बताइए कि ये टांगे वाली बसंती की घोड़ी का नाम क्या था। और साथ ही हेमा मालिनी का एक आइकॉनिक डायलॉग भी हमें बताए। और बसंती की मौसी जी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का नाम, और ये कालिया और सांभा की भूमिका अदा करने वाले अभिनेताओं के नाम भी बता दें। और ये भी बताएं कि होली कब है, होली ये कौन पूछता था। आपके जवाबों का हमें है इंतजार। इसके अलावा भी आपको कुछ ऐसी फिल्में याद आ रही हो तो वो भी आप हमें बताएं।

हमारे साथियों ने हमें संदेश भेज दिए हैं, जवाब हमें मिल गए हैं। निर्देशक रमेश सिप्पी की इस फिल्म शोले में, जिसकी कहानी लिखी थी सलीम जावेद की जोड़ी ने, 15 अगस्त 1975 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, जया भादुरी, अमजद खान, विजू खोटे, मेक मोहन, और डायलॉग था, चल धन्नो आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। और यूं के हमें बेफिजूल बात करने की आदत नहीं है। कालिया और सांभा थे एक्टर विजू खोटे और मेक मोहन। बसंती की मौसी जी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का नाम था लीला मिश्रा। और फिल्म में गब्बर सिंह बने अमजद खान पूछा करते थे, होली कब है होली।

अब कुछ संदेश भी पढ़ देते हैं कि सुहाना सफर का विषय आज का बहुत काबिले तारीफ है। हम सुन रहे हैं, हमारे यहाँ डुग्गी डॉग नाम का एक डॉग है, तेरी मेहरबानियां का गीत सुन मैंने उसे दूध दिया और गीत सुनते सुनते आंखों में आंसू आ गए। बहुत बहुत मुबारकबाद कार्यक्रम के लिए। साथ में बचपन में हम मुंबई में रहते थे, उस समय मैं करीब 4 साल का था और फिल्म हाथी मेरे साथी देखने के लिए मैं अपने माता पिता के साथ गया था। जब रामू हाथी को गोली लगती है और वो मर जाता है तो मैं जोर जोर से रोया था और कह रहा था कि रामू हाथी मर गया। सब मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे कि ये सिर्फ फिल्म है, रामू हाथी मरा नहीं है। तो साथियों, फिल्म दिल धड़कने दो में प्लूटो मेहरा नाम के डॉग के लिए एक अभिनेता ने अपनी आवाज डब की थी, बताइए उस हीरो का नाम। और साथ ही ये भी बताइए कि जानवरों के अधिकारों के बारे में क्या जानते हैं आप, ये भी बताइए कि जिम कॉर्बेट कौन थे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है और भारत में कितने नेशनल पार्क हैं। आवाज की दुनिया के मेरे दोस्तों, फिल्मों में जानवरों के रोल की बात हो और नाग नागिन की बात ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। बॉलीवुड में सस्पेंस और बदले के लिए सांपों का खूब इस्तेमाल हुआ। रीना रॉय और श्रीदेवी ने इच्छाधारी नागिन का रोल निभाकर बड़ा तहलका मचाया था। जंगल में शिकार के दौरान कुछ दोस्तों ने एक नाग को मार डाला था, कौन से अभिनेता थे उस नाग की भूमिका में और नागिन बनी रीना रॉय के साथी कलाकार कौन थे, सबकी जानकारी हमें दे दे। आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म नागिन से। आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, गीतकार हैं वर्मा मलिक, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

सारे जवाब आपके मिल गए हमें, जितेंद्र, सुनील दत्त, रीना रॉय, योगिता बाली, रेखा मुमताज, फिरोज खान, विनोद मेहरा, संजय खान, कबीर बेदी और निर्देशक थे इस फिल्म के राजकुमार कोहली। कुछ सवाल हमने और पूछे थे कि तो मिला ये जवाब कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के पौड़ी नैनीताल उत्तराखंड में है और भारत में कुल 107 नेशनल पार्क हैं। फिल्म दिल धड़कने दो में प्लूटो मेहरा नाम के डॉग के लिए अपनी आवाज डब करने वाले अभिनेता का नाम है आमिर खान।

अब आपके कुछ कमेंट्स भी पढ़ देते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के पास 3 घोड़े थे जिनके नाम बादल, सारंगी और पवन थे। एक दोस्त ने हमें लिखकर भेजा है कि सर्कस बचपन में तो बहुत देखे हैं पर वहां जानवरों पर बहुत अत्याचार होते हैं इसलिए अब नहीं देखते। स्कूल का होमवर्क भले ही याद ना हो लेकिन आप शोले के बारे में कुछ भी पूछें तो सिर्फ डायलॉग ही नहीं हम तो पूरी स्टोरी बता सकते हैं। अच्छा, और मेरे पास भी गोल्डन रिट्रीवर नस्ल का एक डॉग है जो मेरे पास ही सोता है और जब मैं ऑफिस से वापस हम आते हैं तो वो मेरे पास ही रहता है। एक दोस्त का ये मैसेज है कि मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। एक बार मेरे कार्य क्षेत्र में एक हाथी का बच्चा कीचड़ में फंस गया था। उसकी माँ उसे निकालने की बहुत कोशिश कर रही थी और चिल्ला भी रही थी लेकिन वो जब असफल रही उसके बाद उसने हमारे स्टाफ के लिए छोड़ दिया। उसके बाद हमारे फॉरेस्ट के स्टाफ ने हाथी के बच्चे को निकाला। उसके बाद उसकी माँ उस बच्चे को साथ में लेकर चली गई। क्या बात है।

साथियों, फिल्म जानी दुश्मन में एक इच्छाधारी नाग के बदले की कहानी दिखाई गई थी, जिसमें अरमान कोहली हीरो थे और दूत का कर्ज एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो एक अनोखे सांप नागेश्वर और सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। नायक सूरज की भूमिका निभाने वाले अभिनेता का नाम लिख दीजिए। साथ ही फिल्म नाग नागिन में नजर आए थे राजीव कपूर, नाचे नागिन गली गली में मीनाक्षी शेषाद्री और शेष नाग में जितेंद्र और रेखा ने अहम भूमिका अदा की थी।

और अब बात होगी इस गाने की जिसका नागिन डांस सभी शादियों में किया जाता है। एक इच्छाधारी नागिन खलनायक से अपना बदला लेना चाहती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब खलनायक घर आकर अपनी बीन बजाते हुए तांत्रिक शक्तियों से ये सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश करता है कि रजनी कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक नागिन है। अंत में नाटकीय संघर्ष होता है जिसमें बुराई का अंत और अच्छाई की जीत होती है। तो जल्दी से बताइए कि इस फिल्म में अमरीश पुरी का नाम क्या था, और ये भी बताइए कि क्या आपने नागिन डांस किया है, जरूर बताइए। और इस फिल्म का पार्ट टू भी तो आया था, क्या नाम था उसका? और गीतकार हैं इस गीत के आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम तो आप जानते हैं।

फिल्म का नाम था नगीना और इस फिल्म में थे श्रीदेवी और ऋषि कपूर और खलनायक थे अमरीश पुरी जिनका नाम था भैरवनाथ और दूसरे फिल्म का नाम था निगाहें जिसमें नायक थे सनी देओल खलनायक थे अनुपम खेर। हमारे एक दोस्त ने लिखा है कि मेरा छोटा बेटा अभी तक हजारों सांपों जीव जंतुओं पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर चुका है और इन्होंने बहुत सारी फिल्मों के नाम लिखे हैं कि नाग नागिन नागमणि नाग पंचमी निगाहें नगीना नागिन पुरानी नागिन नई आई मिलन की रात नाचे नागिन गली गली दूध का कर्ज नाग देवी। ये तो पूरी लिस्ट दे दी आपने हमें। पहले के समय में अनेक तरह के जानवर लेकर मदारी आता था गली मोहल्ले में। वो तब तकरीबन बंद हो चुका है वन्य जीवन कानून के अनुसार। अब बंदर या किसी और जानवर का तमाशा करना अवैध है, अपराध है। नाग नागिन वाली फिल्मों के गीत सुनने में हमें आनंद तो बहुत आ रहा है मगर डर भी लग रहा है कहीं से कोई सांप ही ना निकल आए। अच्छा, विविध भारती के चाहने वालों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर एकदम लाइव। फिल्म हम आपके हैं कौन में क्लाइमेक्स में सबसे बड़ा हीरो था टॉफी नाम का डॉग जो भगवान के सामने से चिट्ठी उठाकर सही इंसान तक पहुंचा देता है। तो टॉफी वो चिट्ठी किस अभिनेता को देता है उसका नाम बताएं, फिल्म के निर्देशक का नाम भी लिख दें। तब तक सुनते हैं ये गीत लता मंगेशकर SP बालसुब्रमण्यम और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं देव कोहली, संगीतकार हैं राम लक्ष्मण और ये भी तो बताइए कि हम आपके हैं कौन।

साथियों, आपके जवाब हमें मिले हैं कि सलमान खान, माधुरी दीक्षित निर्देशक थे इस फिल्म के, सूरज बरजातिया टॉफी जिनको चिट्ठी देता है वो अभिनेता थे मोहनीश बहल।

एक साथी ने लिखा है कि हम आपके हैं कौन इस पारिवारिक ब्लॉकबस्टर फिल्म में टॉफी नाम का प्यारा सा डॉग एक अहम किरदार में था, जो क्लाइमेक्स में एक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाकर फिल्म की कहानी को सुखद मोड़ देता है। साइंस कहता है कि सांप के कान नहीं होते, उसे सुनाई नहीं देता, फिर बीन का क्या रोल है। बिल्कुल सही बात कही आपने। और ये भी मैसेज मिला है कि आप हमारे हैं बहुत ही प्यारे उद्घोषक जी, धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूं कि मेरी पत्नी रोजाना घर पर जो खाना बनाती है उसमें से पहली रोटी हम गाय के लिए रखते हैं और आखिरी रोटी डॉग को देते हैं, ऐसा हम हमेशा करते हैं। दोस्तों, भीरू नाम की स्ट्रीट डॉग को बचाने के लिए बच्चों की गैंग बहुत संघर्ष करती है। भावुक कर देने वाली कहानी थी फिल्म चिल्लर पार्टी में। होली, अमिताभ बच्चन के इस फिल्म में अल्लाह रखा नाम का बाज मुख्य किरदार के साथ साई की तरह चलता है और दुश्मनों पर हमला कर हीरो की जान बचाता है। तो हीरो की माताजी की भूमिका निभाने वाली दिग्गज अभिनेत्री कौन थी और किसने उन्हें किडनैप कर लिया था, उस खलनायक का नाम बताएं। और इस वक्त हम आपको सुनवाएंगे फिल्म मर्द का गीत। इसमें एक घोड़ा और एक श्वान दोनों ही सहनायक की तरह थे जो अंग्रेजों से लड़ते थे। इस गीत में उन दोनों के नाम छुपे हैं, सुनकर बताएं क्या नाम है दोनों के। और गीत में आवाज है मोहम्मद अजीज की, गीतकार हैं प्रयागराज, संगीतकार हैं अन्नू मलिक। फिल्म का नाम है मर्द।

हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा।

अरे क्यों भाई बादल क्यों भाई मोदी जी, मैं चटके का हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।

जहां क्यों परेशान है, अपनी किस्मत पे हैरान है। माँ क्यों परेशान है, माँ अपनी किस्मत पे

0: बादल क्यों भाई मोदी थी। मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, तुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा
1: दोस्त। साथियों, आपके जवाब हमें मिले हैं कि कुली में अमिताभ बच्चन की माता जी की भूमिका में नजर आई थी वहीदा रहमान, मुख्य खलनायक थे कादर खान। और इस गीत में जो जानवर नजर आए थे उनके नाम थे बादल और मोती। साथियों, कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ा जा रहा है। मैंने प्यार किया एक आइकॉनिक रोमांटिक फिल्म, प्रेम और सुमन की दोस्ती का एक उसूल था कि नो सॉरी नो थैंक यू। तो ये जो गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं उस कबूतर का नाम बता दीजिए जल्दी से।

साथियों, आवाज थी लता मंगेशकर की, गीतकार थे असद भोपाली, संगीतकार थे राम लक्ष्मण, फिल्म का नाम था मैंने प्यार किया और उस कबूतर का नाम था हैंडसम। सुरीला सफर के बन के हम सफर, आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफर, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ। कार्यक्रम सुरीला सफर अब समाप्त होता है।

0: jobs.
1: The size of the industry is 22.75 lakh crore, which is the world's third largest passenger vehicle market, largest two-wheeler market in the world, second largest three-wheeler market, second largest commercial vehicle market. Automotive export more is approximately up to 4 lakh crores. And the GST contribution from the automobile industry to the state and central government, the total GST collection, out of which 15% contribution from automobile industry.
0: The Supreme Court today held that the Bar Council of India, BCI, has no statutory power to regulate the conduct of law students, observing that it was for educational institutions to take action against students in accordance with their own regulatory norms. A bench headed by Chief Justice Suryakant passed the order while dealing with the controversy arising out of the BCI's action against students of Hyderabad's Nalsar University of Law over their objections to the CJR's proposed participation in the university's convocation. Union Minister for Education Prahlad Joshi held a meeting with the Secretary, Department of School Education and Literacy in New Delhi to discuss the next phase of school education reforms. In a social media post yesterday, Mr. Joshi said the discussions focused on strengthening the foundations of learning, promoting innovation in classrooms, and ensuring that the education system keeps pace with the aspirations of a young and dynamic India. The Union Minister also held a meeting with the Secretary, Department of Higher Education, to review the preparedness for the future examinations scheduled in the upcoming months. The Enforcement Directorate, ED, is conducting search operations at 11 premises in Kolkata, West Bengal, in connection with the 290 crore rupee bank fraud involving Kohinoor Power Private Limited. According to ED officials, the company had availed loans from banks for setting up a 66 megawatt power plant in Jharkhand, which was siphoned off to other group entities and diverted for personal purposes. The ED is also conducting massive search actions simultaneously at 30 premises across all zones of the southern regions in different narcotics-related cases. The agency said searches are being conducted under the mandate of Nasha Mukt Bharat. The Tamil Nadu Assembly today unanimously adopted a resolution urging the Union Government to take immediate and necessary action to facilitate the use of Tamil as the principal language of the Madras High Court. Chief Minister C. Joseph Vijay moved the resolution at the State Assembly. Bihar has been witnessing a continuous rise in the water level of the Ganga in Patna and several other districts. This has increased the threat of floods in new areas. We have more from our correspondent.
2: The Disaster Management Department has issued an alert in view of the rising water level of the Ganga. According to the department, the river is likely to cross the highest flood level at Gandhi Ghat in Patna tonight and at Hathidah in Mokama tomorrow afternoon. People living along the river and in low-lying areas of Bhojpur, Patna, Saran, Vaishali, Nalanda, Begusarai, Lakhisarai and Jahanabad have been advised to remain alert and avoid taking any risks. They have also been advised to stay away from rivers, ghats and waterlogged areas and follow the instructions of the local administration. In case of any emergency, people can contact the State Emergency Operation Center at 1070. Savita Parikh, Akashwani News, Patna.
0: Several parts of Jharkhand continue to face flooding and waterlogging following heavy rainfall over the past few days. More from our correspondent.
3: In Ranchi, four radial gates of the Getalsu Dam have been opened. In view of the strong flow of the Swarnarekha River, people have been advised to remain alert around Hundru Falls and other areas along the river. In Jamshedpur, the water level of the Swarnarekha River near Mango Bridge was recorded at 121.26 meters yesterday evening, while the Karkai River near Adityapur Bridge was flowing at 129.76 meters. Although the water levels of both rivers have fallen compared to Tuesday, the Karkai River is still 76 centimeters above the danger mark. One gate each of Odisha's Byangbil and Karkai dams, 15 gates of Ganjia Barrage, 13 gates of Chandal Dam and 9 sluice gates of Galudi Barrage remain open. The administration is maintaining continuous vigil in areas along the rivers and in low-lying areas. Mehvish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
0: Prime Minister Narendra Modi today took stock of the situation of flood in his constituency, Varanasi. He spoke with District Magistrate Satendra Kumar via telephone to obtain detailed information. He inquired about the arrangements being made in relief camps. The Prime Minister directed that flood relief operations be continuously monitored and that immediate relief be provided to those affected. Chief Minister Yogi Adityanath also conducted aerial survey of the flood-affected areas of Farukhabad district. The India Meteorological Department has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over East Madhya Pradesh tomorrow. The Met Department predicted heavy rainfall with thunderstorms and lightning over Bihar, East Rajasthan, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim, Uttarakhand and Madhya Pradesh tomorrow. In badminton, Kidambi Srikanth stunned world number 9, Victor Lai of Canada, in straight games to enter the men's singles quarterfinals of the China Masters Super 750 badminton tournament in Shenzhen today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Belgium agree to double bilateral trade in next 5 years. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Belgian counterpart in New Delhi. Agreements signed in areas of renewable energy, cybercrime and diplomatic training. Defence Minister Rajnath Singh and his Belgian counterpart commit to expanding bilateral defence ties through dialogue, high-level visits and capacity building. Finance Minister Nirmala Sitharaman meets investors at high-level business roundtable in New York, highlights government's focus on artificial intelligence, data centres and global capability centres. In Bihar, water level in Ganga River rises, increasing flood threat in new areas. And in badminton, Kidambi Srikanth beat Victor Lai of Canada to enter men's singles quarterfinals of China Masters in Shenzhen. With that, we end the midday news.
4: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता की दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर किए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री टेओ फ्रॉन्कन ने संवाद उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की उन्होंने एआई डेटा केंद्रों और वैश्विक क्षमता केंद्रों पर सरकार का दृष्टिकोण दोहराया बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ा और किदाम्बी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे भारत और बेल्जियम ने नवीकरणीय ऊर्जा साइबर क्राइम और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन और रक्षा सहयोग पर आशय पत्र सहित विभिन्न समझौतों का आदान प्रदान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है
5: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है फूड फ्यूल या सप्लाई चेन हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है
4: श्री मोदी ने कहा कि भारत और बेल्जियम के संबंध दीर्घकालिक हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में बेल्जियम में हजारों भारतीय सैनिकों का साहस और बलिदान दोनों देशों की साझा स्मृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वो 10 साल पहले बेल्जियम गए थे और पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच भागीदारी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है
5: पिछले एक दशक हमारी साझेदारी ने उल्लेखनीय प्रगति की है आज हमारे सहयोग का दायरा ट्रेडिशनल सेक्टर से आगे बढ़कर डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों तक पहुंच चुका है हम जोरावर टैंक जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हम दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट में से एक डेवलप कर रहे हैं
4: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला दोनों देशों की प्राथमिकता है उन्होंने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आज हुए समझौता ज्ञापन से सतत सहयोग को नई गति मिलेगी
5: रिन्यूएबल एनर्जी पर आज हुआ एमओयू हमारे सस्टेनेबिलिटी सहयोग को नई गति देगा क्रिटिकल मिनरल्स में हमने प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। सेमीकंडक्टर्स में बेल्जियम की एक्सपर्टाइज और भारत का स्केल एक दूसरे के पूरक है। इस दिशा में हम बेल्जियम के आईमेक इंस्टीट्यूट को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे।
4: वार्ता में भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। इससे पहले बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने आज सुबह राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। वो 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही।
6: ये दौर गंभीर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का रहा है। इन परिस्थितियों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उनका मजबूती से सामना किया। ऐसे समय में आपके जैसे मित्र और महत्वपूर्ण साझेदार से मुलाकात विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।
4: बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन ने भारत को घनी आबादी तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच मित्रता को और आगे ले जाने की भी बात कही।
7: भारत और बेल्जियम मित्रता साझेदारी के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। हम भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बेल्जियम एक तकनीकी रूप से विकसित देश है और उन्नत तकनीक हमारे लिए खासकर यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश के साथ भविष्य की परियोजनाओं में सहयोग हमारे लिए बेहद जरूरी है।
4: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग संवाद, उच्च स्तरीय यात्राओं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के जरिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
4: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रमुख क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा केंद्रों को बढ़ावा देना, वैश्विक क्षमता केंद्रों का समर्थन करना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना और बैंकों के निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करना शामिल है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने कहा है कि 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही है। ये दर्शाती है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। श्री क्वात्रा ने भारत सरकार और वित्त मंत्री सीतारामन की ओर से न्यूयॉर्क में अमेरिका के प्रमुख शेयर बाजार नैसडैक के कारोबारी सत्र का शुभारंभ करने पर ये बात कही। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 7.8% की वृद्धि हासिल करने में लघु और मध्यम उद्यम उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। उन्होंने नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौता एफटीए आउटरीच कार्यक्रम पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में ये बात कही। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नवाचार, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतों के बल पर भारत में विश्व की नंबर एक ऑटोमोबाइल उद्योग बनने की क्षमता है। उन्होंने नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 66वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देश की आर्थिक वृद्धि में इस उद्योग का योगदान लगातार बढ़ता रहेगा।
9: ऑटोमोबाइल उद्योग का कुल आकार करीब 22,75,000 करोड़ रुपए है। देश के कुल जीएसटी संग्रह में ऑटोमोबाइल उद्योग का योगदान लगभग 15% है। यह उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। वर्ष 2025-26 ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान उद्योग के निर्यात में 24% की वृद्धि दर्ज की गई।
4: श्री गडकरी ने भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम को एक बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि 11 कंपनियों के 30 से अधिक वाहन मॉडल पहले ही प्रमाणित हो चुके हैं। इस कार्यक्रम ने प्रशिक्षण लागत को काफी कम कर दिया है, साथ ही वैश्विक बाजारों में भारतीय वाहनों की विश्वसनीयता को भी मजबूत किया है। उन्होंने घोषणा की कि इस कार्यक्रम का दूसरा चरण अगले वर्ष अक्टूबर से प्रभावी होगा, जिसमें दुर्घटना से बचाव, पैदल यात्री सुरक्षा और दुर्घटना के बाद निकासी सहित उन्नत सुरक्षा मानक शामिल होंगे। श्री गडकरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए हाल ही में स्वच्छ परिवहन के लिए शुरू की गई परिवर्तन योजना के बारे में जानकारी दी। पंजाब में सरकारी शवगृहों में रखे अज्ञात और लावारिस मृतकों की पहचान के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक पहचान पोर्टल पहचान शुरू किया गया है। एक रिपोर्ट।
10: ये देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है जो भारत और विदेश में रहने वाले लोगों को दुर्घटनाओं या अन्य कारणों से जान गंवाने वाले अपने प्रियजनों की पहचान करने में मदद करेगा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अकेले पंजाब में लगभग 5 से 6 हजार मृतकों की पहचान नहीं हो पाती है। पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कल इस पोर्टल की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि पहचान पहल के अंतर्गत पंजाब के किसी भी सरकारी शवगृह में पोस्टमार्टम के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक ज्ञात और लावारिस शव की चेहरे की तस्वीर, जन्म चिन्ह और शारीरिक विकृतियों जैसे चिन्हों के साथ उसका विस्तृत शारीरिक विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। राज्य के सभी 23 जिले और 346 सरकारी अस्पताल इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं। जलंधर से राजेश वाली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRnews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
4: ये आकाशवाणी है। बिहार में पटना और कई अन्य जिलों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इससे नए इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
2: आपदा प्रबंधन विभाग ने गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पटना के गांधी घाट पर आज रात और मोकामा के हाथीदह में कल दोपहर गंगा का जलस्तर उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर सकता है। भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद के नदी किनारे तथा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और जोखिम से बचने की अपील की गई है। आपात स्थिति में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के 1070 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
4: वहीं झारखंड में भी पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश के बाद कई हिस्सों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है।
3: रांची में गेतलसू डैम के 4 रेडियल गेट खोले गए हैं, जबकि स्वर्णरेखा नदी के तेज बहाव को देखते हुए हुंडरू फॉल और नदी किनारे के इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जमशेदपुर में कल शाम मानगो पुल के पास स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर 121.26 मीटर दर्ज किया गया, जबकि आदित्यपुर पुल के पास खरकई नदी 129.76 मीटर पर बह रही थी। हालांकि मंगलवार की तुलना में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन खरकई नदी अब भी खतरे के निशान से 7-6 सेंटीमीटर ऊपर है। प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और किसी भी स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फर्रुखाबाद जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की और बाद में प्रभावित लोगों को जमीन के पट्टे और राहत सामग्री बांटी। इस बीच मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर बाद मिला जुला असर देखा गया। सेंसेक्स 19 अंक बढ़कर 76,590 पर और निफ्टी 6 अंक घटकर 23,908 पर पहुंच गया। और अब बात खेलों की। किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत का सामना हांगकांग के ली चेक ल्यू से होगा। उधर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच दुबई में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता की। दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन ने संवाद, उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा। और किदांबी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नखमे। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है आप आए बहार आई।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है अनजाना।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है खिलौना।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी,
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावेनिल वालरिवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है, जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंडाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए सुनिए लता मंगेशकर को अगले गीत में। नगमा निगार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए आशा भोसले की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है आए दिन बहार की।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और बेल्जियम ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन और रक्षा सहयोग पर आशय पत्र सहित विभिन्न समझौतों का आज आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वे 10 साल पहले बेल्जियम गए थे और पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच भागीदारी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
1: पिछले एक दशक हमारी साझेदारी ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज हमारे सहयोग का दायरा ट्रेडिशनल सेक्टर से आगे बढ़कर डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। हम जोरावर टैंक जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हम दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट में से एक डेवलप कर रहे हैं।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री 3 दिन के भारत यात्रा पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं, जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थेओ फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग संवाद, उच्च स्तरीय यात्राओं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के जरिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रमुख क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा केंद्रों को बढ़ावा देना, वैश्विक क्षमता केंद्रों का समर्थन करना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्ध सुनिश्चित करना और बैंकों के फंसे कर्जों को कम करना शामिल है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के साथ बैठक की। इसमें स्कूल शिक्षा सुधारों के अगले चरण पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के साथ बैठक में आगामी परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा की। बिहार में पटना और कई अन्य जिलों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे नई

0: बहुत सुंदर गीत हमने सुनवाए हैं अपने श्रोताओं को आरती
1: जी, बिल्कुल बहुत ही अच्छा गीत था।
0: हाँ, और संगीत भी कहते हैं कि वैसा ही काम करता है जैसा कि आपके जीवन में,
1: बिल्कुल, खाना हो या दवाई हो क्योंकि हम खाने की बात कर रहे हैं, इसलिए आज मैं बात में आपको कह रही होंगी ना, खाने की बात।
0: हाँ, खाना बहुत याद आ रहा है आज और मुझे तुम्हारा पोहा भी याद आ रहा है जिसमें तुम दुनिया भर की अंकुर दालें डाल के खा जाती हो चुपचाप से, और वो राज तुमने आज खुला है हमारी
1: किसी दिन बना के लाऊंगी आपके लिए।
0: चलिए देखते हैं। तो बात चल रही थी पोषण की, पोषण सप्ताह भी चल रहा है और पोषण पर हम कितना ध्यान दे पाते हैं अपने जीवन में। अभी हमने कहा कि घर के जो, वैसे तो सभी सदस्यों को अच्छा पोषण लेना चाहिए, लेकिन खास तौर से जो नवजात शिशु हैं या बच्चे हैं, बढ़ते हुए बच्चे हैं, और हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए पोषण कैसा हो, आज विशेष रूप से हम वृद्धावस्था और पोषण पर बातचीत करना चाहते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो जहाँ अनुभवों की एक दौलत होती है ना, वो कौन सी उम्र होती है ना, वो एक जो उम्र हम वहां पहुंच जाते हैं ना, तो अनुभवों की उम्र होती है, उसको वृद्धावस्था कहते हैं। तो कहा जाता है कि उम्र का बढ़ना जीवन की एक प्रक्रिया है, लेकिन स्वस्थ रहना हमारी सजगता और सावधानी का परिणाम होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना, तो शरीर में कई सारे प्राकृतिक परिवर्तन भी आने लगते हैं, क्योंकि जो आते ही हैं हमेशा, तो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता भी बदल सकती है और मांसपेशियों की ताकत भी कम हो सकती है और पाचन और भूख में भी बदलाव महसूस हो सकता है। इसलिए इस उम्र में भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा आरती कि संतुलित और जो पौष्टिक आहार है वो हमारे बुजुर्गों को सक्रिय रहने और शरीर की ताकत बनाए रखने और दैनिक जीवन को बेहतर ढंग से जीने में मदद भी करता है। और इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि भोजन में क्या शामिल हो। जैसे शरीर की मांसपेशियों और ताकत के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है, तो जब गृहिणी भोजन बनाए तो उसे पता होना चाहिए कि हमारे घर के भोजन में दालें हो, दूध हो, दही हो, पनीर हो, और जो नॉनवेज खाते हैं, मान लीजिए अंडा खाने का भी आपकी आदत हो अंडा खाना, तो आप इसको भी हिस्सा बना सकते हैं। और इसके अलावा फल है, सब्जियां हैं, अच्छी मात्रा में आप खा सकते हैं रंग बिरंगे फल सब्जियां, ये जो है भोजन को पौष्टिक बनाते हैं और इनमें कई पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे घर के वृद्ध हों वो नानुकुर भी करते हैं,
1: बहुत ज्यादा
0: ये पसंद नहीं है, ये मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं है, उन्हें समझाना है कि साबुत अनाज और रेशेदार भोजन वृद्धावस्था में आपके पाचन को बेहतर बनाता है और इसमें जो हड्डियों का आपका जो स्वास्थ्य है वो भी खास अच्छा हो जाता है। दूध है, दही है, ये खाद्य पदार्थ आहार का हिस्सा बनाए जाने चाहिए।
1: बिल्कुल। और किसी विषय जो कोई विशेष जो पोषक तत्व होता है कि उसकी आवश्यकता जो होती है हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के हिसाब से अलग अलग होती है। किसी के अंदर किसी की चीज की कमी हो सकती है, किसी के अंदर किसी चीज की कमी हो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: तो इसलिए डॉक्टर या योग्य पोषण विशेषज्ञ की सलाह लेना भी बहुत जरूरी होता है कि क्या हम खाएं कि वो उसके जरिए हमारी जो पोषण आवश्यकता है वो पूरी हो सके। तो इसके साथ अक्सर ये भी देखते हैं कि बुजुर्ग जो है वो पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी भूल जाते हैं। शरीर को तरल पदार्थों की आवश्यकता होती ही है, इसलिए दिन भर उचित मात्रा में पानी और अन्य स्वास्थ्य के जो तरल पदार्थ होते हैं जैसे कि जूस हो गया, तरह तरह के फलों के, तो वो लेना भी बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और वृद्धावस्था में स्वास्थ्य बेहतर बनाकर कहते हैं कि उम्र को भी आप मात दे सकते हैं, है ना। कई बार हम देखते हैं ना, कुछ लोग बड़ी उम्र के होते हैं लेकिन कहते
1: हैं
0: पता ही नहीं चलता है। एक एड भी आया करता था, है ना, इतने साल के बुजुर्ग या जवान। हाँ। तो मतलब लगता था कि अरे इतने बुजुर्ग आदमी भी जवान की तरह दौड़ते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये आप अपने भोजन पर ध्यान रखकर कर सकते हैं। संतुलित भोजन लें, भोजन बिल्कुल ताजा और साफ सुथरा होना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें कि बहुत अधिक नमक है, कई बार ऊपर से नमक डालने की जो हमारी गंदी आदत है ना, उससे हमें बचना चाहिए। बहुत मीठी चाय चीनी डाल
1: एकदम, कुछ लोग एकदम
0: शरबत पी रहे हैं जैसे, है ना, वो कैसे पीते हैं पता नहीं। और अत्यधिक जो तले भुने खाद्य पदार्थ हैं उनका भी सेवन हर बार नहीं करना चाहिए, कभी कभार आपकी इच्छा हो गई एक अलग बात है।
1: और इसके साथ साथ भोजन को व्यक्ति की चबाने और पाचन की क्षमता के अनुसार ही तैयार करना जरूरी है। जो भी भोजन बना रहा है ना, या आप खुद भी बना रहे हैं तो अपने हिसाब से उस हिसाब से आप भोजन को बनाएं। जैसे कि दांतों की समस्या होने पर नरम और पौष्टिक भोजन को ही चुनना चाहिए और भोजन का समय नियमित रखने की बहुत कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भोजन का अनुशासन जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालता है।
0: बिल्कुल। आप अगर एक समय निश्चित कर लेते हैं तो शरीर उसी हिसाब से आपको रिप्रेजेंट भी करता है कि किस तरह से शरीर वो आपको संकेत दे देता है कि भोजन का वक्त हो गया, भोजन कर लेना।
1: बिल्कुल, आपके पेट में गुड़गुड़ होने
0: लग जाती है और कई बार पता है हम देर कर देते हैं तो फिर कई और दूसरे सिम्टम्स हमें परेशान करते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि समय पर खाना नहीं मिलेगा तो हमें एसिडिटी हो जाएगी
1: या सिर में दर्द हो जाएगा।
0: सिर में दर्द हो जाएगा, तो समय समय पर आप भोजन लें और साथ में ये भी ध्यान रखें कि अच्छे भोजन के साथ हल्की शारीरिक जो एक्सरसाइज है, वो गतिविधि है जिसे हम कहते हैं, वो भी आप करते रहें अपने स्वास्थ्य के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से। टहले है ना, दिनचर्या का आपकी हिस्सा होना चाहिए टहलना। हाँ, किसी नई व्यायाम योजना को शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
1: बिल्कुल, और वृद्धावस्था कमजोरी का नहीं बल्कि अनुभव, समझ और जीवन की उपलब्धियों का समय होता है। सही पोषण, नियमित दिनचर्या, पर्याप्त पानी, उचित गतिविधि और परिवार का स्नेह, ये सभी मिलकर जीवन को अधिक स्वस्थ और सुखद बना सकते हैं। इसलिए याद रखिए कि स्वस्थ भोजन शरीर को शक्ति देता है और अपनों का प्यार जीवन में ऊर्जा भर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और एक बात जो अभी आपने कही ना कि दांतों की जो समस्या एक उम्र के बाद शुरू हो जाती है, तो जो घर में खाना बनाने वाली है उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से अपने घर के बुजुर्गों को वो खाना दें, क्योंकि कई बार क्या होता है आपने खाना तो रख दिया लेकिन उन्हें चबाने में बहुत टाइम लग जा रहा है। कई बुजुर्ग हमने देखे घंटों खाते हैं उस खाने को, ठंडा हो जाता है खाना, बेस्वाद हो जाता है क्योंकि वो चबा नहीं पाते। तो ऐसे समय में आप ध्यान रखिए, उसको रोटी है तो चूर के दें, चावल है, दाल चावल है, दलिया है, खिचड़ी है, ऐसा दें ताकि जो बुजुर्ग है वो उसे आराम से खा सके।
1: बिल्कुल,
0: थोड़ी सी बना के रख दिया
1: और गर्म रहेगी रोटी तो कड़ी नहीं होगी।
0: आपने फटाफट रख दिया कि मैंने तो अपना खाना पूरा दे दिया है, अभी खाएंगे, जब भी वो खाते खाते खाते खाते घंटों बीत जाते हैं क्योंकि उनके दांत काम नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात है जैसे कि प्रोटीन युक्त जो दूध है, दही है, पनीर है, दालें हैं, अंकुरित है, अनाज जो है, अंडा है, आप ले सकते हैं। हरी सब्जियां हैं, फल हैं, विटामिन और मिनरल्स के लिए आप ये ले, साबुत अनाज जैसा कि रोटी खा सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, ओट्स का दलिया आप खिला सकते हैं। पानी तो आपने भी बताया कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है, समय समय पर बुजुर्गों को याद दिलाते रहें। और कैल्शियम और विटामिन डी ये भी जरूरी है हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए। और कम नमक की बात आपने बताई और सबसे बड़ी बात कम चीनी, और हो सकता है तो चीनी छोड़ ही देना एक समय बाद, क्या जरूरत है चाय में चीनी डालने की या बहुत ज्यादा मीठा खाने की, क्योंकि आपका जो ब्लड प्रेशर है और आपकी जो शुगर है वो नियंत्रित रहेगी। तो जो बुजुर्ग हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में आसानी से पचने वाला संतुलित भोजन उन्हें करवाना चाहिए, क्योंकि वो खुद तो नहीं कर सकते ना अगर ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं तो। घर में जो भी गृहिणी है या बाल बच्चे हैं वो ध्यान रखें घर के बुजुर्गों का और समय समय पर उन्हें गर्म भोजन दें और स्वच्छ भोजन दें।
1: बिल्कुल, और इसी बात को लेकर हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भेजा भी हमें लिखकर। तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि वृद्धावस्था में सुपाच्य स्वास्थ्य वर्धक भोजन करना चाहिए, फल और सब्जी अधिक खाने चाहिए, तले भुने भारी भोजन नहीं करने चाहिए, सूखे मेवे, कद्दू के बीज रात भर पानी में भिगोकर सुबह नाश्ते में लेने चाहिए।
0: और क्या लिखा है, कुछ और भी लिखा है?
1: हाँ बिल्कुल, लिखा है कि मैंने आज अंकुरित, हाँ उन्होंने अपना खुद का लिखा है कि मैंने आज अंकुरित मूंग और चने को पीस कर उसके चीले बनाए, बहुत बढ़िया। फिर तो ऐसे भी सीनियर्स को अंकुरित अनाज थोड़ा उबालकर खाना चाहिए, उसमें कुछ भुने हुए सीड्स होते हैं और हल्के से चाट मसाला या नींबू का प्रयोग करें। प्रोटीन को पचाने के लिए कुछ रसेदार जो सिट्रिक जो फल होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं, तो उनको आप उनका सेवन करें। तो इन्होंने इतना अच्छा चीला बनाया भाई,
0: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल हमें प्रयोग करते रहने चाहिए ताकि घर के बुजुर्ग स्वस्थ रहे और दूसरे जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनके लिए भी आप बनाए।
1: बिल्कुल,
0: है ना, चूंकि बात वृद्धावस्था की चल रही है इसलिए उनको खास ध्यान दिया जा रहा है कि वृद्धावस्था में पोषण का कितना बड़ा योगदान है। एक श्रोता लिखते हैं कि वृद्धावस्था और पोषण बहुत बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। बूढ़ा होने पर भूख और ऊर्जा कम होने लगती है, इसलिए कुछ नया खाने की इच्छा होती है। इस सब्जेक्ट से पहले कविता सुनाना चाहता हूँ। वो यारों की हंसी ठिठोलियां, वहां नेताजी का बुत लग गया, देखो विकास सब चर गया, चौमासे बरसाती नदी वहां बन गया, नदी अब बन गई नाला, नाले भी हो गया गड़बड़ झाला। कुछ कविता लिखने की कोशिश की है और लिखते हैं कि हमारे दादी के घर वहां सब्जी रोटी और घी साथ होता है, मतलब कि घी से सनी रोटी हम खाते हैं सब्जी के साथ।
1: अच्छा ये भी अच्छी चीज है, घी खाना ही चाहिए। ये सोचने लोग कि ना घी खाने से मोटे हो जाएंगे, नहीं, आप घी खाइए, उससे आपकी हड्डियां मजबूत बनती हैं।
0: हाँ, लेकिन घी हरे, वही बात होती है कि आपका शरीर क्या कहता है। अपने शरीर के संकेतों को ध्यान में रखिए कि घी पचता भी है कि नहीं।
1: हाँ बिल्कुल, हल्का फुल्का ही खाए, बहुत ज्यादा नहीं
0: हिसाब से। और एक श्रोता लिखते हैं कि वृद्धावस्था जीवन का वो चरण है जब व्यक्ति उम्र के अंतिम पड़ाव में प्रवेश करता है। इस अवस्था में बुजुर्गों को परिवार के प्यार, सम्मान, देखभाल और सहयोग की आवश्यकता होती है। उनका अनुभव और जीवन की सीख समाज के लिए बहुत मूल्यवान होती है। हमें हमेशा अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनकी जरूरतों का ध्यान भी रखना चाहिए। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये उम्र ही ऐसी होती है जब व्यक्ति को पर्याप्त पोषण की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है कि उनके खाने में सभी प्रकार की दालें, चावल, प्रोटीन से युक्त चीजें और कैल्शियम की कमी उनको न होने पाए। इसके लिए दूध वगैरह ये सब जरूर शामिल करें उनके खानों में, और ध्यान रहे कि उन्हें ऐसी चीज दें जो उनको सूट करती हो। ये चीज बहुत ध्यान रखने योग्य है कि इस उम्र में कुछ भी खिला देना बुजुर्गों को सूट नहीं करता है, इसलिए कोई भी ऐसा खाना न दे जो उनके सेहत से खिलवाड़ करे।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि कुछ अच्छा, कुछ टेस्टी वैरायटी खाना हफ्ते में एक बार ठीक रहता है, और सप्ताह में एक दिन सिर्फ दूध, फल, फ्रूट खाना अच्छा होता है। नमक और चीनी फ्रूट वाले दिन परहेज करनी चाहिए, और मैंने करके देखा है तो लग रहा है कि ये सेहत के लिए ठीक है। सेहत ठीक रहे तो दुनिया अच्छी लगती रहेगी। बचपन के ये सब बातें इन्होंने लिखी है।
0: ये बात तो सही कहा इन्होंने, अगर सेहत ठीक है ना आरती,
1: सब कुछ अच्छा
0: तो
1: लगता है।
0: सब कुछ अच्छा लगता है, अगर सेहत सही नहीं होती ना तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी सब बेकार लगता है।
1: बिल्कुल। और अभी एक गीत सुने तो और अच्छा लगेगा,
0: हमारी सेहत और अच्छी हो जाएगी।
1: बिल्कुल।

0: हाँ तो आरती, जब हम स्वस्थ होते हैं ना तो ऐसा ही लगता है ये जमी गा रही होती है, आसमान गा रहा होता
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: हर जगह संगीत सुनाई देता है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: और आज हम बात करने जा रहे हैं किनकी, नीदुमोलू सुमति की, जो कि कला क्षेत्र में उन्होंने अपनी बहुत अच्छी पहचान बनाई है। तो पद्मश्री के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं इनकी। तो आज हम बात कर रहे हैं नीदुमोलू सुमति की, जिन्हें दंडामुड़ी सुमति के नाम से भी जाना जाता है। भारत की प्रसिद्ध मृदंगम वादिका और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की वो बहुत बड़ी कलाकार
0: हैं।
1: और वो भारत की शुरुआती महिला मृदंगम वादकों में गिनी जाती हैं।
0: क्या बात है।
1: और लय विन्यास की पहली महिला कलाकार के रूप में भी उनका उल्लेख है। और इनका जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1950 को आंध्र प्रदेश के एलुरू में।
0: सबसे बड़ी बात, और देखिए ना मृदंग बजाना, अरे बड़ा मुश्किल काम है। ज्यादातर हमने पुरुषों को ही
1: देखा है,
0: जी। लेकिन महिलाओं ने भी बहुत जगह अपने जो है कदम रख दिए हैं।
1: बहुत ताकत लगती है, बहुत ज्यादा उसके अंदर कैसे मृदंग बजाते
0: हैं। गजब गजब। तो जब नीदुमोलू सुमति को हम सुनते हैं तो सुनते ही रह जाते हैं। और पता चला कि इनके जो माता पिता है, नीदुमोलू राघवैया और नीदुमोलू वेंकट रत्नम्मा इनके माता पिता है, और उनके पिता स्वयं मृदंगम के विद्वान थे। उन्होंने सुमति की संगीत प्रतिभा को बचपन से प्रोत्साहित किया और सुमति ने 6 वर्ष की उम्र में मृदंगम सीखना शुरू कर दिया
1: बहुत
0: था।
1: बहुत
0: उनके पिता उन्हें संगीत कार्यक्रमों में ले जाते थे, जिससे उन्हें मंच और शास्त्रीय संगीत की दुनिया को करीब से समझने का भी मौका मिला।
1: बिल्कुल। और लगभग 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। सुमति ने मृदंगम में प्रमाण पत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी पूरा किया। और 1964 के बाद उन्होंने प्रसिद्ध मृदंगम कलाकार दंडामुड़ी राममोहन राव से प्रशिक्षण लिया, और राममोहन राव आगे चलकर उनके गुरु के साथ साथ उनके जीवन साथी भी बने। अपने गुरु से उन्होंने मृदंगम की जटिल तकनीकों, लय, ताल और प्रस्तुति की बारीकियों को बहुत अच्छी तरीके से सीखा।
0: बिल्कुल सही कहा। और लगातार जब अभ्यास के कारण वे धीरे धीरे संगत कलाकार से स्वतंत्र और एकल प्रस्तुता के रूप में स्थापित हो गई। नीदुमोलू सुमति की यात्रा जो है केवल एक सफल संगीतकार की कहानी मात्र नहीं है आरती। उन्होंने ऐसे समय में मृदंगम को पेशेवर के रूप में अपनाया जब इस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। उन्होंने निरंतर अभ्यास, अनुशासन और प्रतिभा के बल पर यह साबित किया कि कला में सफलता का आधार साधना, समर्पण और योग्यता है।
1: बिल्कुल। उनकी उपलब्धियों ने मृदंगम जैसे पारंपरिक वाद्य के प्रति नई पीढ़ी की रुचि बढ़ाने और महिला कलाकारों के लिए रास्ते खोलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मृदंगम पारंपरिक रूप से पुरुष कलाकारों का प्रमुख क्षेत्र माना जाता रहा है। ऐसे वातावरण में भी सुमति ने अपने प्रतिभा और निरंतर साधना से अलग पहचान बनाई। उनके वादन में ताल की सटीकता, लय की जटिलता और प्रस्तुति का संतुलन विशेष रूप से उल्लेखनीय
0: रहा। बिल्कुल सही कहा। और अपने लंबे संगीत जीवन में सुमति ने अनेक प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय संगीत कलाकारों के साथ मृदंगम पर संगत भी की, जैसे एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, महान गायिका सुब्बुलक्ष्मी, डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण, जोशी, चिट्टी बाबू, एन रमणी और यू श्रीनिवास जैसे प्रमुख नाम जो है हम शामिल करते हैं। और इससे उन्हें देश के प्रमुख संगीत मंचों पर अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर मिला। साथ ही मृदंगम वादन से उनकी प्रतिष्ठा जो है वो भी बहुत ही मजबूत हुई।
1: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, अभी हम लोग का समय हो रहा है एक अंतराल का,
0: और ले दी एक अंतराल
1: बात।

0: इस अंतराल के बाद सभी हमारी सखियों और सखाओं का स्वागत है। तो बात चल रही थी मृदंगम की।
1: बिल्कुल, और हम बात कर रहे थे सुमति जी की, जो मतलब उनके मृदंग को सुनकर ना ऐसा लगता है कि सारे दिमाग के पूरे शरीर के तार एकदम झनझना उठे।
0: मैं तो पता है उनके बारे में बात करते करते खो भी गई हूँ। मुझे लग रहा है कि उन्हें सामने मृदंग बजाते हुए देख रही हूँ। इतना मतलब गहरा उनका अभ्यास जब देखा और पढ़ा तो लगता है कि कितना कलाकार खुद को मांझता है।
1: बिल्कुल,
0: तब जाकर वो एक अच्छा
1: एक तपस्या ही तो है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और सुमति ने वर्ष 2000 में लय वेदिका नामक संस्था की स्थापना की। उनकी इस संस्था का उद्देश्य मृदंगम और ताल प्रधान संगीत को प्रोत्साहित करना था। संस्था के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिताएं और संगीत संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए और प्रतिभाशाली कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। इस पहल से उनकी भूमिका भारतीय ताल परंपरा के संरक्षण और नई पीढ़ी को प्रेरित करने वाली मार्गदर्शक की बन गई।
0: बिल्कुल। और वर्ष 2015 में सुमति ने सता मृदंगा वाद्य निवाली नामक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें लगभग 100 मृदंगम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर उनके गुरु और जीवन साथी दड़ामुड़ी राममोहन राव को श्रद्धांजलि दी। और ये कार्यक्रम उनके संगीत जीवन की उल्लेखनीय पहलों में गिना जाता है। सुमति को उनकी कला के लिए कई सम्मानजनक उपाधियों से भी संबोधित किया गया है।
1: बिल्कुल, उनकी उपाधियों की बात करें तो मृदंग शिरोमणि, मृदंग महारानी, नाद भागीरथ, मृदंगालय विद्यासागर, मृदंग विन्यास, कला भारती और नादलय साम्रागी जैसी उपाधियां शामिल हैं। निदुमोलु समिति को उनके लंबे संगीत सफर में अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें मद्रास म्यूजिक एकेडमी का बेस्ट मृदंगिस्ट अवार्ड, पालानी सुब्रमणिया पिल्लई मेमोरियल पुरस्कार उनको मिला और बहुत सारे पुरस्कार उनको मिले हैं।
0: बिल्कुल। और इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी चेन्नई का बेस्ट मृदंगिस्ट अवार्ड, बेस्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया अवार्ड, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, उगादी पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार का, पालानी सुब्रमणिया पिल्लई मेमोरियल अवार्ड, और वर्ष 2021 में भारत सरकार ने निदुमोलु सुमति को पद्मश्री से सम्मानित भी किया।
1: वो है भी इतने सारे इन पुरस्कारों के को बहुत ज्यादा उनके मिलने भी चाहिए। इतना उनका जो पूरा व्यक्तित्व है ना, पूरा व्यक्तित्व प्रेरणादायक है।
0: बिल्कुल, ऐसी महान कलाकार को हम सैल्यूट करते हैं।
1: बिल्कुल।

0: गीत ने जो है झूमने पर मजबूर कर दिया
1: बहुत प्यारा गीत
0: है ना।
1: और साथ ही आज हम बात करने वाले हैं अपने बचपन की तरफ थोड़ा सा जाने वाले हैं, है ना। और हम
0: बचपन की तरफ जाने वाले हैं, अभी कार्यक्रम शुरू हुआ तब से हम बचपन की तरफ ही थे।
1: सही बात है। और हमारे जो सखी हैं, जो सखाए सब अपने अपने किस्से लिख के भेज रहे हैं, बता रहे हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं कि किस तरह से उनको भी ये अंधविश्वास थे बचपन में, जो हमें सिर्फ हम ही नहीं थे,
0: उन्हें भी थे। लेकिन ये बात भी पक्की है कि बचपन में हमें नहीं पता होता कि अंधविश्वास है, हमें बताया जाता है अरे ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा,
1: सच में वो डर रहता है।
0: तो अंकित हो जाते थे इस बाल मन पे ना, अरे ऐसा नहीं करते। फिर बड़ों के हम भी वही बात आगे कहते रहे। तो ये बचपन में हमें जिस तरह से समझाया गया, डराया गया, सो जाओ नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, तो हम बचपन में समझते थे सचमुच गब्बर सिंह आने वाला है।
1: बिल्कुल, कोई ना कोई आगे पकड़ लेगा अगर सोए नहीं तो।
0: तो सब चीजें हमें बताई जाती थी, कही जाती थी, जिसे हमारे मन में हम अंकित कर लेते थे, बाल मन था हमारा। तो वो अब जब बड़े हो गए हैं तो हमें हंसी आती है कि अरे हम कैसे किया करते थे। तो क्या लिखते हैं श्रोता?
1: तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बचपन में ऐसा था कि बहुत भोला बहुत होता है बचपन, किसी भी बात पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। जब हम भाई बहन छोटे थे तो थूजा के पेड़ की पत्तियों को, जिसे हम लोग विद्या का पेड़ भी कहते थे, अपनी किताब में रख लेते थे, क्योंकि उससे विद्या आ जाती है, ऐसा हम लोगों को अंधविश्वास था। और जिस विषय में ज्यादा डर लगता था उसमें खूब सारी पत्तियां रख लेते थे कि अब कितनी विद्या है ये तो पता नहीं, मतलब पत्तियां रख लेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे,
0: पढ़ाई नहीं करके भी हम
1: वो विद्या आ जाएगी हमारे अंदर।
0: हर पेज के अंदर मोर पंख भी हम रखा करते थे बचपन में। सहेलियां देखती थी किसकी किताब में कितने मोर पंख हैं, कॉपियों में कितने मोर पंख हैं ना। और कई बार पेड़ जो पत्तियां हैं वो भी हम रखा करते थे, कई बार शौकिया भी रखते थे। किसी पेड़ की जो पत्ती हमें पसंद होती थी ना, उसका कलेक्शन करके भी हम लोग अपनी नोटबुक में
1: जब पीली पड़ जाती थी उसको अच्छा लगता था देखने में।
0: तो ये ऐसा भी होता था। और एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन की वो दुनिया जहां न मोबाइल था, न इंटरनेट की चिंता थी, न सोशल मीडिया का दबाव था, बस शरारती थी, खेलकूद, दादी नानी की कहानी और उनके बताए कुछ ऐसे नियम जिन्हें हम बिना कोई सवाल किए सच मान लेते थे। याद है बचपन में अगर कोई कहता था कि रात में नाखून मत काटो तो हम तुरंत नाखून काटना बंद कर देते थे। कोई पूछता क्यों तो जवाब मिलता बस मत काटो अच्छा नहीं होता। अब हमें ये जानने की फुर्सत ही कहां कि अच्छा नहीं होता, बड़ों ने मना किया है मतलब जरूर कोई बहुत बड़ी बात है।
1: और एक हमारे श्रोता है लिखते हैं कि फल जो होता है उसका बीज अगर निकल जाओगे तो पेट में पेड़ उग जाएगा।
0: हाँ
1: है ना, ऐसा होता था ना।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और श्रोता लिखते हैं कि अगर आंख फड़क जाए तो जो है घर में कोई भविष्यवाणी शुरू हो जाती थी कि कुछ अच्छा होने वाला है, नहीं नहीं कुछ खबर आने वाली है, भी दाई आंख फड़की कि बाई आंख फड़की
1: ये जरूर पूछा जाता था। हाँ, कौन सी
0: तो हम भी डर के मारे पता क्या करते थे, उसके ऊपर कागज काट के छोटा सा आंख पर चिपका लेते थे, हमें ऐसा कहा जाता था। और झाड़ू पर पैर मत रखो की बहुत सारी बातें हमें कही जाती थी, लेकिन हमने कभी पूछा नहीं क्यों, बस हमने उसको सत्य मान लिया।
1: बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे समाज जो परिवार में ये प्रथा रही कि किसी बच्चे का दांत टूट जाता था तो हमें ये सिखाया जाता था कि दांत टूटने पर उस दांत को चांद के सामने ये प्रार्थना करनी होती थी कि हे चांद बाबा मैं तुझे पुराना दांत दूं और तू मुझे नया दांत दे, इस तरह से कहना होता था। और ऐसा विश्वास था कि दांत चांद बाबा कुछ दिनों बाद हमें नया दांत भी दे देते थे। ऐसे हमारे बुजुर्ग हमें प्रेरित करते कहते थे कि आप हमारा ये दांत ले लीजिए और दूसरा
0: दांत दे दीजिए। तो मुझे अपना भी याद है आरती, जब मेरा दांत टूटा था मैं सूरज देवता के सामने खड़े होके कहती सूरज देवता मेरा ये दांत टूट गया है मुझे नया दांत दे दो ना। तो ये क्योंकि कहा गया होगा ऐसा, और मुझे वो सीन अब याद हो आया कि मैंने भी बचपन में ये किया है ना। अब समझ आता है कि हम कितने भोले हुआ करते थे, जैसा कहा जाता था हम मान लिया करते थे।
1: और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो उसका निदान था कि अपनी उंगलियों से हवा में क्रॉस बनाओ या स्वास्तिक एक बना दीजिए आप।
0: अच्छा।
1: तो उससे मतलब उसका प्रभाव हट जाता है। तो ये बिल्ली वाला तो आज भी चल रहा है
0: कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया है
1: कितना भी जरूरी काम क्यों ना हम वहीं रुके रहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: खेलते नहीं।
0: कैसा दिमाग में अंकित हो गई है कुछ चीजें, उनके तर्क कुतर्क अगर हम करने लगे तो फिर बहुत सारी बातें निकल आती हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम झाड़ू को देखकर ऐसे निकलते थे जैसे घर में कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठा हो। इसके अलावा बचपन में उल्लू, छिपकली, छींक, रास्ते में कोई चीज मिलना, इन सब के भी अपने अपने मतलब बताए जाते थे। और अगर घर से निकलते समय किसी ने छींक दिया तो हम रुक जाया करते थे। ये तो होता था,
1: ये तो आज भी होता है।
0: तुम्हारा छींको, दूसरी छींक, अरे दो छींक आइए अब निकलो, है ना। कितना
1: बहुत सारी चीज है।
0: बिल्कुल।
1: और हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि जब हम छोटे थे तो ये बात पता नहीं किसने फैलाई थी कि पेंसिल के छिलके दूध में भिगो कर रखने पर उससे इरेजर बन जाता है, मतलब रबड़ बन जाती है। तो हम बच्चे पेंसिल के छिलके दूध में भिगो कर रख देते थे, हालांकि कभी भी उससे इरेजर नहीं बना। ये चीज मैंने भी करी हुई है, कुछ नहीं बनता उससे, सिर्फ डांट पड़ती है, थप्पड़ पड़ते हैं।
0: लेकिन ये देखिए बचपन के वो दिन हम याद कर रहे हैं जिन्हें हम कई बार भूल भी जाते हैं, और आज उस टॉपिक के माध्यम से वो दिन याद आने लगे हैं। और लिखते हैं कि एक श्रोता की, सच तो ये है कि इन बातों में से बहुत सी बातें हमें बचपन में सच लगती थी, आज हम बड़े हो गए हैं, तर्क और विज्ञान को समझने लगे हैं, हमें किसी भी बात को बिना सोचे समझे सच नहीं मानना चाहिए, लेकिन इन पुरानी बातों की याद आते ही चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाती है। हमें तो हंसी आ रही है,
1: बिल्कुल
0: मुस्कान तो क्या कहें, क्योंकि ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं थे, ये हमारे बचपन की यादों का हिस्सा थे। दादी नानी की सख्त हिदायतें थी, माँ की डांट और हमारी मासूमियत थी।
1: बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक श्रोता जो लिखते हैं कि जब मैं स्कूल में था उस समय से मुझे इंडिया की जो नेशनल टीम है उसके मैच देखने का बहुत दीवानापन था, तो मुझे अंधविश्वास था कि अगर टेलीविजन पर मैं लाइव मैच देखूंगा तो इंडिया की जो टीम है वो हार जाएगी, इसे टीवी बंद करके मैं रेडियो कमेंट्री सुना करता था। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बहुत अच्छा किया। और ऐसा मेरे साथ कई बार सच में हुआ भी था, बाद में अगर उस समय मैच के मुख्य अंश दिखाए जाते थे तो टेलीविजन पर देख लेता था। अब क्रिकेट मैच में मैं एंजॉयमेंट के लिए लाइव देखता हूं, पर अंधविश्वास नहीं है, जो मैच जीते वो ही सिकंदर।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि इतना हमें पैशन रहता था कि टीम में कब क्या हो रहा है, हम लोग इतनी शक्ति लगा देते थे उस मैच को देखने में कि अगर उस दौरान कोई उठ गया तो हम कहते तो उठा क्यों भाई, वो बॉल चली गई है ना, वो आउट हो गया प्लेयर हमारा। तो इस तरह की कई बातें हमें याद आती है। और मुझे एक चीज और याद आती है आरती, हमारी सहेलियां कहती थी कि जो गिलहरी है ना इसकी पूंछ पर पत्थर मारो वो 25 पैसे देती है।
1: ये तो
0: हमें याद है, हमारे दीवारों पे छत की मुंडेर पर गिलहरियां आती थी, हम पत्थर इकट्ठे कंकर करके उसको मारते थे। अब वो कंकर ना उसके वहां लगता ही नहीं था पूंछ पे, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट होती थी
1: गिलहरी, आपने पकड़ में कभी नहीं आता।
0: हमें लगता काश ही 25 पैसे दे दे हमको, काश ही 25 पैसे दे दे हमको।
1: और एक हमारे भाई साथी है वो भी लिखते हैं कि बचपन में एक और अंधविश्वास था, जैसे ही तारा टूटा दिखाई दिया तो या 5 फल का नाम ले लो या 5 उंगली मुंह में डाल लो, और हम ये करते भी थे। बहुत बढ़िया,
0: सुंदर। तो और कुछ है बताइए। हाँ, श्रोता ने
1: एक हमारे श्रोता जो लिखती हैं कि कोई तारीफ कर इसमें बड़े होने के बाद भी कुछ कितने ही अंधविश्वास में जीते हैं, जैसे बाहर निकलने पर बिल्ली का रास्ता काटना, कोई तारीफ कर दे तो नजर लगने का डर होना। हम लोग जब स्कूल में थे तब हम लोग एक मैना देख लेते थे तो लगता था कि कुछ बुरा होने वाला है, और जैसे ही 2 मैना दिख जाती थी तो हम लोग खुश हो जाते थे। तो मैं तो अब इन बातों पर भरोसा नहीं करती, पर मेरी सहेली जो कि मतलब जॉब करती है तो अभी भी इस बात को मानती है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग मिले तभी उसे एक मैना दिखाई दी तो बहुत मायूस हो गई कि वो कहने लगी कि इसलिए मैं अपने मोबाइल में 2 मैना की तस्वीर रखती हूँ। हम सारी सहेलियां उसकी इस बात पर बहुत हंसे, और मेरी मम्मी का कहना है कि कभी भी मुझे एक आंख मत दिखाया करो, और वो दिन भर एक आंख दिखाने में गुस्सा हो जाती।
0: बिल्कुल सही कहा, जब हम किसी एक पक्षी को देखते हैं तो कहते हैं 1 for sorrow, और 2 जोड़ा दिखता है तो हम कहते हैं 2 for joy।
1: हाँ।
0: तो ये इस तरह की हमने धारणाएं बना ली हैं कि जोड़ा दिखेगा तो अच्छा कुछ होगा, अकेला कोई दिखेगा तो बुरा कुछ होगा। ये इस तरह की धारणाएं आज भी हमारे साथ चल रही हैं, और गाहे बेगाहे हम उससे प्रभावित होते भी।
1: बिल्कुल, और बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने मैसेज भेजे हैं, कमेंट भेजे हैं, लेकिन इतना हम गीत नहीं सुनेंगे तो फिर संगीत की कमी हो जाएगी थोड़ी।
0: बिल्कुल।

0: हाँ तो आरती, प्यार तो हम अपने आप से भी करते हैं, अपने परिवार वालों से
1: और हम एक दूसरे से भी करते हैं, और अपने सखियों अपने सखाओं से भी करते हैं,
0: बिल्कुल करते हैं, और अपनी रसोई से भी करते हैं जहाँ हमें सुस्वादु भोजन बनाना पड़ता है,
1: स्वास्थ्यपूर्ण
0: भोजन बनाते हैं, है ना। तो क्या लिखा है हमारी सखियों ने कि कैसे रखती है वो अपनी रसोई को साफ सुथरा।
1: एक हमारी जो सखी है वो कहते हैं कि रसोई को चमकती और साफ रखने के लिए रोज खाना बनाने के बाद गैस और काउंटर को साफ कर लीजिए अच्छे तरीके से। बर्तन को तुरंत धोकर व्यवस्थित करके रखें। फर्श पर गिरे पानी या खाने को तुरंत साफ करें। सप्ताह में एक बार अलमारियों और फ्रिज की सफाई करें। सूखे और साफ कपड़ों से सतहों को पोंछें। कूड़ेदान को रोज खाली करें। इस तरह थोड़ी सी नियमित सफाई करने से रसोई जो है वो हमेशा साफ और चमकती रहेगी।
0: बिल्कुल, हमारी एक सखी लिखती है कि रसोई को हमेशा चमकता और व्यवस्थित रखने के लिए सबसे जरूरी है कि नियमित रूप से छोटे छोटे उपाय अपनाएं। किचन सिंक की सफाई, सिंक को साफ करने के लिए आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, थोड़ा सा बर्तन धोने का जेल और विनेगर मिलाकर घोल बनाएं। इस मिश्रण से सिंक और स्टील के नलों पर लगे हार्ड वाटर के जो दाग है आसानी से हट जाते हैं और बदबू भी नहीं आती है। काउंटर टॉप और स्लैब की देखभाल मैजिक ब्रिक्स की किचन टीप क्लीनिंग जो गाइड है उनके अनुसार करें। बाबरे, बहुत ही इन्होंने तो टेक्निकली लिख दिया है। काउंटर टॉप की सामग्री के आधार पर सुरक्षित सफाई करें। घोल चुने, गर्म पानी, हल्के साबुन के घोल से जिद्दी दागों को तुरंत पोंछे ताकि चिकनाई न जमे। फर्श पर तेल या दूध गिरने से फर्श या उसको साफ भी रखें। सूखा आटा छिड़क कर भी साफ रख सकते हैं। आटा सारा तेल सोख लेता है जिससे 5 मिनट बाद अखबार या कपड़े से पोंछने पर चिकनाई आसानी से साफ हो जाती है। तांबे के बर्तनों को चमकाना है तो पुराने और काले पड़ चुके तांबे और पीतल के बर्तनों के बेस को साफ करने के लिए टोमेटो केचप का इस्तेमाल करें। केचप लगाकर कपड़े से रगड़ने पर बर्तन तुरंत चमक उठते हैं और किचन का हर कोना जिद्दी और गंदगी को आसानी से साफ करने के लिए हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है।
1: बिल्कुल, और हमारे एक साथी जो लिखती हैं कि रसोई में सभी दाल चावल मसाले जो भी हैं या तो उनको ट्रांसपेरेंट जो ऐसे दिखते हैं जो ऐसे डिब्बों में रखें और उन पर नाम लिख देने चाहिए ताकि कोई चीज ढूंढनी ना पड़े। हर बार भोजन बनाने के बाद आसपास गिरे सभी गंदगी को साफ कर देना चाहिए। मसालों और दाल आटे के डिब्बे को भी साफ कपड़े से पोंछते रहना चाहिए। इस तरह थोड़ा बहुत साफ करते रहने से रसोई साफ रह सकती है। एक ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा वहां पे फैन लगा होना चाहिए जिससे कि रसोई में दम घुटन सी ना हो और धूप आने से ऐसी कोई खिड़की भी होनी चाहिए और हवा के लिए अच्छा रास्ता होना चाहिए। तो धूप आने से रसोई का वातावरण शुद्ध रहता है। कुछ सफाई हफ्ते में और महीने भर में एक बार करनी ही चाहिए। जो शुद्ध रसोई में भोजन शरीर जो करते हैं जब बनाते हैं तो शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक लिखते हैं कि बारिश के मौसम में रसोई में नमी, सीलन और चिकनाई जल्दी होती है। कुछ आसान घरेलू उपायों से इसे साफ सुथरा और चमकदार रखा जा सकता है। बहुत सारे इन्होंने उपाय लिखे हैं और इसके अलावा लिखते हैं कि किचन साफ सुथरा होना ही चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि जब भी कुछ सब्जियां काटें उनके छिलकों को अच्छी तरह से समेटें, फेंके नहीं। कभी कभी छिलके जमीन पर पड़े रहते हैं और उनसे पैर फिसलने का डर भी बना रहता है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे केला खाते हैं, छिलका फेंक देते हैं तो कोई आएगा अचानक पैर फिसलेगा सड़क पर, कहीं भी आप धड़ाम से गिर जाएंगे।
1: बिल्कुल, और बहुत जरूरी है कुछ चीजों को ध्यान रखें तो, क्योंकि रसोई ऐसी जगह है ना कि अगर हम साफ नहीं रखेंगे तो जो खाना पड़ा रहेगा अगर वहाँ पे तो चूहे या इस तरीके की चीजें
0: कॉकरोच
1: आ जाते हैं।
0: बिल्कुल, कीट पतंगे जो हैं वो घर में होते ही हैं और इनका ध्यान रखने के लिए सबसे बड़ी बात है कि कम सामान रखें और इतना सामान रखें जितनी रसोई में जरूरत हो।
1: खाली डिब्बे जमा मत करिए।
0: बर्तन इकट्ठा कर लेते हैं शौकिया और किचन में और सिंक में दुनिया भर के बर्तन लगा देती हैं गृहिणियां दिन भर कि शाम को साफ कर लेंगे या बाई आएगी तो अगले दिन मांझ लेगी। वो जो ढेर होता है बर्तनों का वो घर में एक अलग सी स्थिति पैदा कर देता है। ऐसी स्थिति में खाना बनाना भी जो है अच्छा नहीं लगता
1: और वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक रहता
0: है। बिल्कुल, स्वास्थ्य से तो हम खिलवाड़ करते ही हैं और बहुत कुछ चीजें जो है हमारे घर की गृहिणी पर निर्भर करती है कि वो अपनी रसोई को किस तरह से साफ सुथरा रखिए
1: और जो फालतू के सामान उनको जमा मत करिए। और इस समय एक छोटा सा गीत सुनते हैं।
0: बिल्कुल
1: प्यारा सा।

0: आरती बहुत सुंदर गीत था ये और मुझे लग रहा है कि मैं भी तुम्हारा नाम गुलमोहर रख दूं। और पता है गुलमोहर का अर्थ क्या होता है? गुल यानी फूल, मोहर मतलब चमक, जो सुंदर है, जो शोभित है। यानी गुलमोहर जो एक सुंदर पेड़ का नाम भी है जिस पर चमकीले लाल नारंगी फूल खिलते हैं और इसलिए ये नाम खुश सुंदरता खुशहाली रंगों और प्रकृति की शोभा का हम प्रतीक मानते हैं। और तुम अभी बिल्कुल वैसी ही लग रही हो, खिलाती भी सुंदर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको ये।
0: तो चलिए अब जो है सखी सहेली कार्यक्रम से हम अपने श्रोताओं से इजाजत लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इस कार्यक्रम से आज मंदाकिनी जोशी
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों विविध भारती का स्टूडियो नंबर एक हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। तो बढ़ा लीजिए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज, देखते हैं ये पहला कॉल कहाँ से आया है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैम नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैहर एमपी से।
0: एमपी कहाँ से, कौन सी जगह से? एमपी के
1: मैहर से बात
0: कर रहा हूँ। मैहर से? भाई मैहर तो तीर्थ स्थल है, वहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो अभी वहाँ पर सीढ़ियाँ बहुत सारी चढ़नी पड़ती थी, तो कोई अभी सड़क वगैरह बन गए, व्यवस्था हो गई कि आसानी से आप चढ़ सके?
1: जी जी जी मैम, अभी तो आसानी से दर्शन करने के लिए आते हैं, बाकी सुविधा तो पूरी तरह से हो गई है मैम।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए फिर, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: जी फिल्म इतिहास सुनवा दीजिएगा, वो गाने के बोला जुदा अपने दिलवर से होने लगी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो
0: फरमाइश
1: हेलो फरमाइश
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम सूरत से बोल रहे हैं सर। मेरा
0: नाम
1: जितेंद्र
0: आपका?
1: भाई, जितेंद्र।
0: जितेंद्र जी, बताइए क्या हाल है?
1: सलून का दुकान है मेरा।
0: अच्छा, तो बताइए गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: जीत जाएंगे हम जिंदगी हर कदम, जंग फिल्म का गाना है मेरी तरफ।
0: अगर मन में चाहत हो तो सचमुच हर कदम पे आपकी जीत हो सकती है, और बस अपनी मेहनत करते रहना है जिंदगी में, यही तो फलसफा है जिंदगी का।
1: ओके मैडम।
0: ठीक है, तो धन्यवाद आपको कि आपने हमें फोन किया। तो अभी अब बातचीत कर रहे हैं खत्म, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश.
1: हेलो फरमाइश. नमस्कार.
0: नमस्कार. कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ग्राम नंगला काशान पोस्ट औरंगाबाद जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से रूप सिंह से आपसे बात कर रहा हूँ.
0: रूप सिंह.

0: साक्य। अच्छा बताइए रूप सिंह जी, क्या हाल है और अपने कासगंज है उस गांव के बारे में भी बताइए।
1: हमारा गांव तो एक देहाती एरिया में है और खेती बाड़ी करता हूँ मैं।
0: खेती बाड़ी में कौन सी फसल उपजती है वहाँ पर?
1: सभी तरह की उपजती है, जैसे बाजरा है, धान है, मक्का है, आलू है जी।
0: तो आप
1: धान और मूंगफली की खेती लगी हुई है।
0: अच्छा बढ़िया, तो व्यापार भी करते हैं आप?
1: व्यापार नहीं करते अभी।
0: ओके, सिर्फ मतलब खाने भर की उपज होती है।
1: जी जी जी
0: जी, बताइए गानों के शौकीन है, गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो कौन से गाने पसंद आते हैं, पुराने गाने या नए गाने?
1: पुराने सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, मोहम्मद रफी है, मुकेश है, किशोर कुमार है, लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसे।
0: जी जी, इन गायक गायिकाओं की आवाज भला कौन नहीं पसंद करेगा। बताइए फिर कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: फिल्म है जीने की राह।
0: जीने की राह
1: जी, और गाने के बोल हैं, एक बंजारा गाय जीवन के गीत सुनाए।
0: क्या बात है भाई, बड़ा ही दर्शन वाला गाना चुना है आपने, और सचमुच जीने की राह के बारे में पता चल जाए तो जीवन कितना आसान हो जाए ना।
1: जी बिल्कुल
0: जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: कोई दौलत पे नाच करता है, कोई शोहरत पे नाच करता है, जो सुनता है आकाशवाणी मुंबई वो अपनी किस्मत में नाच करता है।
0: क्या बात है, और आपकी आवाज सुनते ही विविध भारती के लोग नाच करते हैं। बताइए अपना नाम और जगह का नाम। वैसे आवाज तो पहचान चुकी हूँ मैं।
1: जी हसीना भी मंसूरी बोल रही मैडम, फालदाना का इंदौर से, और आपसे बहुत सालों के बाद बात हो रही लग रही है।
0: हमारी आपकी बात हुई थी हेलो सहेली प्रोग्राम में और हेलो फरमाइश में भी। बताइए अपने बारे में और इंदौर के बारे में, क्या कर रही हैं इन दिनों आप?
1: इंदौर तो बारिश थोड़ी कम हो रही है मैडम, मगर अच्छी है, ठीक, ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, मगर बारिश होना चाहिए।
0: बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो पानी की कमी हो जाएगी, फसलें सूख जाएंगी।
1: पानी कमी अभी इस साल भी बहुत कमी थी पानी की, और अभी तो बारिश हुई नहीं, तो फिर अगले साल क्या पता क्या होगा। नहीं
0: जी, तो पानी की बचत के लिए आप कुछ करती हैं निजी स्तर पर?
1: मैं तो पानी की बचत इस तरह से करती हूँ, अगर कपड़े धोना रहता तो बाल्टी में पानी निचोड़ के उसको ही इस्तेमाल करते हैं, और बर्तन भी मांजते तो बर्तन में ये टब में पानी लेके बर्तन मांजते ही ज्यादा व्यस्त धुले नहीं, नल के नीचे डायरेक्ट नहीं बर्तन धोते, और नल के नीचे धोना ही पड़ता, बहुत मद्दा करके धोते हैं, आराम से बर्तन धोते, और कहीं पर भी रास्ते में जाते हैं नल खुला दिखता है तुरंत उसको बंद करते हैं, और घर में भी कहीं कोई पानी ढोलता रहता है तो बहुत गुस्सा आती चिल्ला देते हैं हम लोग।
0: जी बिल्कुल, और पानी के एकत्रीकरण के लिए भी मुहिम चलानी चाहिए मिलजुल कर। और आपका काम काज बढ़िया चल रहा है?
1: हाँ बढ़िया चल रहा, पर अभी थोड़ी तबीयत ऐसी चल रही तो जा नहीं रहे मैडम, बुखार आ गया था और आवाज भी ऐसी हो रही बहुत मुश्किल से निकल।
0: आवाज तो अच्छी खासी आपकी आ रही है, बढ़िया, तो आवाज में तो कोई समस्या नहीं दिख रही है आपकी, आवाज बढ़िया आ रही है।
1: चलो ठीक है, शुक्रिया। हाँ। बढ़िया आ रही
0: तो बताइए अब कौन सा गाना सुनवाए
1: मैडम? फिल्म का नाम है जाने मन, और गाने के बोल है आएगी आएगी आएगी किसी को हमारे

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश ममता दीदी जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम है पांडुरंग मोरे, मुक्काम पोस्ट वारंगाफाटा, तालुका कलमदुरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ बहन जी।
0: पांडुरंग जी बताइए, क्या हाल है आपका?
1: ठीक ठाक है। हमारे वारंगे फाटे की खिचड़ी खाने को आओ, खिचड़ी प्रसिद्ध है वारंगा फाटा की।
0: अच्छा भाई, वाह, जरा उसकी रेसिपी बता सकते हैं तो बताइए, कैसे बनती है खिचड़ी, क्या खासियत है खिचड़ी की?
1: तुम्हारे को यहाँ से हम सेंट छोड़ेंगे, बोले तो उसका स्वाद छोड़ेंगे।
0: जी जी जरूर। हाँ तो अभी बताइए उसमें क्या खासियत है उस खिचड़ी की? वैसे तो दाल चावल,
1: बोले तो मसूर की दाल है और चावल है और बाकी सब मसाला रहता है, गरम मसाला।
0: अच्छा जी जी। तो किसी विशेष दिन बनती है क्या ये खिचड़ी की, रोज खाई जाती है?
1: नहीं नहीं नहीं, विशेष नहीं, हमारे यहाँ की प्रसिद्ध है वारंगा फाटा, बोले तो खिचड़ी पहले से शुरुआत में ये प्रसिद्ध है।
0: बढ़िया भाई, खिचड़ी तो सुस्वाद भोजन नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जो मसालेदार खिचड़ी तो अच्छी लगती है और फायदेमंद बहुत है। है ना, कहा जाता है कि सप्ताह में एक दिन तो खिचड़ी खानी चाहिए,
1: पर नाश्ते में खिचड़ी मिलती है, खिचड़ी और भजे मिलता है।
0: तो बना भी लेते, आप बना भी लेते हैं कि सिर्फ खाने के शौकीन है?
1: नहीं नहीं, बना लेते नहीं, हम देते हैं ग्राहक को।
0: अच्छा अच्छा, आपकी कोई शॉप है क्या?
1: हाँ होटल है, होटल है। अच्छा, वारंगाफाटा में होटल है।
0: क्या बात है, अब देखिए हमारे श्रोता सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि हमको भी मौका मिले कभी वारंगाफाटा जाने का। वैसे
1: कभी भी मिलेगा खिचड़ी नाश्ता और खुश हो जाएंगे खाने के बाद।
0: वैसे जिस शहर में जाए, जिस जगह पे, वहाँ की कोई मशहूर चीज हो तो वो जरूर चखना चाहिए, स्वाद चखना चाहिए, है ना?
1: हाँ हाँ, इधर नागपुर रोड जाता है, अकोला नांदेड़ रोड जाता है, चौक रास्ता है, टी पॉइंट है और हर तरफ से गाड़ी आए तो हमारे गांव से ही जाते हैं।
0: अच्छा, क्या बात है भाई, चलिए बड़ा अच्छा लगा जानकर। अब बताइए कि गाना आपको कौन सा पसंद आ रहा है समय?
1: गाना सुना है रोटी कपड़ा मकान में का, महंगाई मार गई।
0: तो आपको कहते हैं धन्यवाद और सुनवाते हैं आपको ये गाना, फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान।

उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी। उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी। मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी। एक हमें

0: हेलो फरमाइश।
1: न जाने ये नजर क्यों उदास रहती है, न जाने से किसकी तलाश रहती है, ये जान के भी किस्मत में हमारी के फोन को लगे या ना लगे, मैडम जी हमें फिर भी फोन लगने की आस रहती है।
0: क्या बात है, और हमें भी आस रहती है।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं ये बताइएगा, और हम आपके जो आपने शुरुआत की उसके जवाब में ये कहना चाह रहे हैं कि आज तो हमें भी रहती है कि हमारे श्रोताओं के कॉल लग जाए और हमारी बातचीत हो जाए। कहिए।
1: सतीश गुलियानी, दिलकुशा मार्केट, जलंधर, पंजाब से बोल रहा हूँ।
0: सतीश गुलियानी
1: जी, जी जी
0: जी, तो बताइए वहाँ के बारे में, जलंधर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: जलंधर में जानकारी मैडम सबसे बढ़िया, यहाँ देवी तलाब मंदिर है हमारी माता जी का, जिनके सहारे हम जीते हैं। बहुत बढ़िया पुराना मंदिर है ये, बहुत सब मनोकामना यहाँ पूरी होती है। बाकी घूमने फिरने बच्चों के लिए वंडरलैंड है, बहुत बहुत कुछ है मैडम यहाँ देखने को। नान खाने को बहुत अच्छे हैं यहाँ।
0: क्या खाने को?
1: छोले भटूरे।
0: अच्छा,
1: छोले भटूरे जो पंजाबी खाते हैं जी।
0: छोले भटूरे तो वैसे भी पंजाब के बहुत मशहूर होते हैं जी।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: और बताइए वहाँ के थोड़े कल्चर के बारे में बताइए, पंजाब का जो लोक संगीत है बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सारे लोक धुनों पर आधारित पंजाबी गाने आजकल फिल्मों में भी शामिल किए जा रहे हैं और बहुत सारे फिल्मी गीत में पंजाबी शब्द।
1: पंजाबी जैसे जैसे ये एक लाइन है,
0: हाँ,
1: ओ पेके जान वाली है नी किन्ना, ओए होय नी किन्ना, हाय नी किन्ना चीर लाएंगी, ये गाना पंजाबी है जी हमारा।
0: क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया,
1: बहुत चलता है।
0: हाँ जी, तो पंजाब की पृष्ठभूमि पर एक फिल्म भी आई थी, बहुत मशहूर हुई थी, और वहाँ के गायक हैं जो बहुत मशहूर हुए थे, याद है क्या?
1: सारे गायक सारे मशहूर हैं यहाँ पे, हम भी मशहूर हैं मैडम यहाँ पे, ऐसी बात नहीं।
0: अच्छा, आप किस लिए मशहूर है भाई, बताइए, बहुत बड़ी अच्छी बात है ये तो।
1: हम रेडियो रेडियो के लिए मशहूर हैं, जो कि प्रोग्राम चलता है ना।
0: हाँ हाँ,
1: तो उसमें हम भी फोन यहाँ पे लोकल फोन करते हैं हम।
0: अच्छा, मतलब फोन करने के लिए मशहूर है कि आपके कॉल हर प्रोग्राम में लग जाता है। वाह भाई, क्या बात है।
1: जी जी जी जी।
0: और अपने
1: जी
0: बारे
1: जी
0: में बताइए, करते क्या है आप?
1: हमारा मैडम फूड सप्लीमेंट का काम है।
0: अच्छा,
1: हम तो यही कहते हैं कि नशों से दूर रहो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, जल्दी सुबह उठो, सैर करो,
0: बिल्कुल,
1: और सबसे बड़ी बात कि अपने माता पिता की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो।
0: बिल्कुल, तो आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं ना?
1: मैडम मेरे माता पिता नहीं है, मेरी उम्र अष्टम बहुत ज्यादा हो गई है, 67 है।
0: अच्छा, ओहो।
1: मैडम मैं जब छोटा था तो मुंबई दौड़ गया था एक्टर बनने के लिए।
0: फिर लौटे कैसे?
1: लौटे मैडम किस्मत ने साथ नहीं दिया, मैं वीरू देवगन के साथ था।
0: बढ़िया।
1: हाँ जी,
0: आपकी तो आवाज भी अच्छी कड़कदार है।
1: हाँ मैडम, वक्त ने अपन के साथ वफा नहीं किया, लेकिन वक्त की हम अभी भी बहुत कदर करता है।
0: जी जी जी,
1: बिल्कुल मैडम। यहाँ वहाँ पे पता नहीं कब आपकी किस्मत पलटी खा जाए।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: कब किस्मत बदल दे। और देखो मैंने वहाँ ऐसा देखा है कि लोग चाहे भूखे भी रहते हैं, कहते हैं हम रहेंगे मुंबई में, वापस नहीं जाएंगे।
0: जी, बहुत सारे जो ऐसे कलाकार हैं जो आज आकाश की ऊंचाइयों पर हैं, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है।
1: ये धर्मेंद्र जी हमारे पंजाब के हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल,
1: इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। मैं भी अपने शूटिंग में जाता था, मैं भी
0: जी
1: शूटिंग में जाता था, मुझे उसका काम मिला था लाइट मैन का।
0: अच्छा अच्छा बढ़िया।
1: लेकिन मुझे मुझे किसी ने बताया कि आपकी आवाज है लाइट मैन, ये लेवर वाली नहीं है, आप किसी साइड मास्टर के साथ मिल जाओ।
0: अच्छा, वाह।
1: तो फिर मैं मिल गया था जी वीरू देवगन जी के, अजय देवगन जी के पिताजी हैं, वीरू देवगन के पिताजी हैं, उनके साथ।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो बात खास होनी हो गई एक दिन रात को जरा सी बात पे। मैं बिना बताया उनके कमरे में चला गया, उन्होंने कहा गेट आउट, बाहर निकल जाओ।
0: अच्छा,
1: बस बाहर आ गया, मुझे मूड खराब हो गया। मैंने कहा यहाँ तो, यहाँ पे मेरा होटल था उस टाइम, 10-10 वर्कर काम करते थे। तो मैं इसी गुमान में था कि यहाँ मेरा इतना बड़ा होटल है, 10 वर्कर काम करते हैं, ये वहाँ मुझे झिड़के मार रहे हैं। लेकिन वो झिड़के उनकी प्यार वाली थी। अगर सह जाता तो आज मैं कामयाब होता।
0: इसमें दो बातें हैं, कई बार क्या होता है बड़ों की डांट आपके लिए बहुत मायने रखती है और अच्छी भी लगती है, लेकिन कई बार आपका जब सेल्फ रिस्पेक्ट चोटिल होता है तो आप वहां नहीं रहना चाहते हैं।
1: जी जी,
0: तो ये
1: जी, जी,
0: आपने
1: जी,
0: अपने आप चुना। कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं, कौन सी फिल्में देखी हैं धर्मेंद्र जी की जो बहुत पसंद?
1: सारी फिल्में देखी है मैडम, सारी फिल्म देखी है। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं लाला, बहुत फिल्में देखी है मैडम मैंने, बहुत पिक्चर देखी है, क्या क्या नाम बताऊंगा इनका।
0: क्या बात है, अब बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: इज्जत फिल्म का गाना सुना दो जी, ये दिल आकाशवाणी में, आकाशवाणी में ना लगता नहीं, हम क्या करें।
0: اچھی بات ہے جی. عزت فلم کا گانا ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے فون کیا اور اتنی ساری باتیں ساجھا کی. اب بات چیت کو دے رہے ہیں ورام. آپ کو سنوا رہے عزت فلم کا یہ گانا.

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते जी।
1: मैं छत्तीसगढ़ कटोला तालाब रायपुर से मोहन लाल देवांगन मास्टर कौन से बोल रहे हो मैडम जी?
0: जी मोहन लाल देवांगन जी, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। बहुत ही पुराने श्रोता हैं आप तो।
1: जी हाँ। देखिए मैं विविध भारती का बहुत दीवाना हूँ और मैं बता दूँ कि मेरे परिवार भी वैसे दीवाना है।
0: जी ये दीवानापन हमेशा बना रहे, यही हमारी शुभकामना है और हमारी यही कोशिश भी रहेगी कि प्रोग्राम की गुणवत्ता बनी रहे ताकि आप सभी का दीवानापन जारी रहे।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब बताइए,
1: धन्यवाद मैडम जी।
0: क्या काम काज है आपका? हमारे श्रोताओं को बताइए, जो नए श्रोता हैं वो भी आपके बारे में जाने।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं ट्रेनिंग स्टाफ है, मेरा कर्तव्य रायपुर में मोहन जय के नाम से है और मेरा बेटा भूपेश देवांगन और तुषार देवांगन फैशन डिजाइनर है।
0: अच्छी बात है, क्या बात है।
1: हम लोग साथ में मिलकर सब करते रहते हैं और उसके बाद जो है कि देखिए मेरा बेटा जो फैशन डिजाइनिंग किया है, एक जो दिल्ली से किया है और एक छत्तीसगढ़ से किया है।
0: जी जी।
1: तो वो सब हम एक साथ सब काम करते रहते हैं और मेरा एक और दुकान यहाँ पर शोरूम बड़ा बनने जा रहा है, मतलब बन के लगभग तैयार होने पर है, हो जाएगा इस महीने में।
0: जी जी, बहुत बढ़िया। तो ये मिलजुल कर जो काम कर रहे हैं, शोरूम भी तैयार हो गया, तो ये आपकी मेहनत का कमाल है कि आपने
1: जी,
0: अपने
1: जी,
0: बच्चों
1: जी.
0: को अच्छी परवरिश दी होगी कि वो मेहनती हैं
1: जी,
0: और उस
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आपके बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं ना। तो नए बच्चों को भी गानों से जोड़ रखा है, रेडियो से जोड़ रखा है आपने?
1: वो तो मैं समझता हूँ कि मेरे से ज्यादा सुनते हैं मैडम जी। सुबह
0: अच्छा।
1: वो वर्कशॉप में रहते हैं तो रेडियो चलता रहता है, सुबह 6 बजे चालू हो जाता है और रहते रात को 11 बजे बंद होता है। टीवी देखते रहते हैं लेकिन रेडियो बंद नहीं होता।
0: ये बात बहुत अच्छी है कि जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें भी पुराने गानों से और पुरानी परंपरा से, पुरानी विरासत से जोड़ के रखना जरूरी है। तो
1: जी, जी, जी, जी,
0: अब बताइए कौन सा गाना सुनवाया जाए मोहनलाल जी?
1: देखिए मैडम जी, इस समय देखिए मेरा जन्मदिन होता है मोहनलाल देवांगन के नाम होता है मोहन मुरारी, लेकिन अब ये कृष्ण जन्माष्टमी का भी है। मैं सभी श्रोताओं को, आप विविध भारती परिवार को सबको शुभकामनाएं देता हूँ।
0: और कृष्ण जन्माष्टमी की जब बात चले तो हम ये जानना चाहते कि कृष्ण कर्म का संदेश देते थे, लेकिन कृष्ण के बहुत सारे रूप हैं। एक बाल रूप है, उनका सखा रूप है और एक ऐसा रूप है जो दर्शन सिखाता है। आपको कौन सा वाला रूप पसंद आता है श्री कृष्ण का?
1: मुझे तो उसका बचपना रूप बहुत अच्छा लगता है,
0: बाल रूप।
1: बाल रूप बहुत बहुत अच्छा लगता है और उनका जो बाल रूप में हर एक बात में नटखट जो होता है ना,
0: नटखट
1: बहुत अच्छा लगता है मैडम जी।
0: जी जी, उनके बाल रूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है सूरदास ने। कभी पढ़िए सूर की पद रचना, उन्होंने एक जगह लिखा है, किलकत कान घुटूरवन यावत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकरी धावत। तो श्री कृष्ण जी के लिए ये रचना उन्होंने की है, तो आप जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि सचमुच कृष्ण का बाल रूप सामने आ गया है। कौन सा गाना सुनवाया जाए मोहनलाल जी?
1: मैं गीत चुना हूँ फिल्म खुददार का और आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की और उसका बोल है, मच गया सुर सारी नगेरी रे, आया बीरज का बाका संभाल तेरी जगेरी रे।
2: अरे मच गया।

0: हेलो फरमाइश जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से?
1: खलील अहमद
0: जी। खलील जी बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: हम फिल्म है पगला कहीं का और तुम मुझे यूं भुलाना पाओगे, ये गाना सुनना चाहेंगे
0: जी। अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं?
1: हम तो रिटायरमेंट है, अभी घर में है फिलहाल।
0: अच्छा, क्या काम काज करते थे?
1: हम तो ईट जुड़ाई का काम करते थे।
0: अच्छा अच्छा, तो भाई ये तो बहुत बड़ा काम है, ईंट अगर ना हो तो घर कैसे बने? घर का निर्माण करना है तो ईंट बनाना ही पड़ेगा।
1: जी जी जी जी
0: जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। तुम

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैम
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: संत हिराम नगर भोपाल से बोल रहा हूँ मैम।
0: आपका शुभ नाम?
1: बाबूलाल सेन बोल रहा हूँ मैम।
0: जी बाबूलाल जी, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या काम काज है आपका?
1: क्या सैलून की दुकान है मैम
0: जी, और भोपाल शहर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी देंगे?
1: भोपाल अच्छा शहर है मैम जी, तालाब वगैरह है देखने के लिए, अच्छी है जगह, बने बढ़िया है। कमला पार्क है
0: जी, जी मैम। और गाना किस तरह का पसंद करते हैं? पुराने गाने पसंद है या नए गाने पसंद है आपको?
1: पुराने गाने मैम, पुराने गाने।

0: तो आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज भी हम सुनेंगे हम दाता फिल्म का गीत और बाबुल का घर ये बहना।
0: बेहतरीन गाना चुना है आपने, अब सुनते हैं आपके पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं निर्मल डिस्ट्रिक्ट भैंसा गांव से मोतीराम पिंगले बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी मोतीराम जी, बताइए अपने गांव के बारे में, बताइए जरा और अपने बारे में भी जानकारी दीजिए।
1: एक कस्बा है मैडम, उतना कोई खास नहीं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर सरस्वती माता का एक टेम्पल है। यहाँ पर काफी लोग महाराष्ट्र से आते हैं, दूर दूर से आते हैं मैडम दर्शन करने के लिए।
0: लोग कैसे हैं वहाँ के?
1: लोग अच्छे हैं मैडम, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई हादसा नहीं होता है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। इतना सेफ एरिया है मैडम हमारा।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर तो खास हो गया ना आपका शहर। लड़कियों की शिक्षा के लिए वहाँ पर लोग कोशिश करते हैं, मतलब लड़कियाँ पढ़ने लिखने
1: कोशिश
0: जाती
1: है मैडम, बहुत आगे है मैडम।
0: क्या बात है,
1: यहाँ पर SSC या इंटरमीडिएट जब एग्जाम्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा लड़कियाँ पास होती है मैडम।
0: अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: संगम फिल्म का मैडम, मुकेश का गाना, राज कपूर के ऊपर फिल्म आया गया, ओ महबूबा मेरे दिल के पास ही तेरी मंजिल है मजबूत।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन किया।
1: मैम एक एक एक एक रिक्वेस्ट है मैडम, क्या मैं गाना गाकर सुना सकता हूँ मैम?
0: जरूर जरूर सुनाइए।
1: ओ मैं

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनमर्ग से, मैं आपको नीम श्रोता लतीफ अहमद रैना
0: सोनमर्ग से बोल रहे हैं। सोनमर्ग तो भाई पर्यटकों के लिए बड़ी खूबसूरत जगह मानी जाती है।
1: हाँ हाँ, यहाँ तो पर्यटक हर लगभग 1500 से ज्यादा ज्यादा एक दिन में आते हैं।
0: गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम।
1: हाँ, गुलमर्ग, सोनमर्ग, दूध पथरी है ना, बड़गामा के साइड में दूध पथरी।
0: तो इस समय वहाँ पर मौसम कैसा है, ठंडा है या नॉर्मल है?
1: मैं नहीं उतना गर्मी, नहीं उतना ठंडी, नॉर्मल।
0: तो आपका क्या काम है?
1: बस मैं तो खेती किसानी करता हूँ।
0: वहाँ पर खेत के लिए जब खेत में काम करते हो तो किस तरह की फसल उपजती है, मतलब वहाँ की पैदावार कैसी है?
1: पैदावार तो बहुत अच्छी है यहाँ। इस साल तो यहाँ बारिश की वजह से बहुत कम फसल उगाया है।
0: कौन सी फसल उपजती है ज्यादातर
1: यहाँ पे? ज्यादा धान और मक्का एक ही फसल बनते हैं ना साल में यहाँ पे।
0: अच्छा अच्छा, बर्फ गिरती है तो आप लोगों को बड़ी परेशानी होती होगी, है ना?
1: हाँ, बहुत परेशानी है। 3 फुट कभी 4 फुट ऐसा ऐसा बारिश आता है, बर्फ आता है यहाँ पे,
0: जम जाता है बर्फ। और जो बाहर से घूमने जाते हैं उन्हें बर्फ बहुत ही रोमांचित करती है और बर्फ देखने के लिए लोग जाते हैं।
1: वो सोनमर्ग में तो लगभग 7-8 महीने तो बर्फ ही रहता है।
0: जी, तो बताइए तो कश्मीर की वादियों में कौन सा गाना आपके लिए भेजा जाए, आपकी पसंद का?
1: फिल्म का नाम है कुली नंबर 1, इसको दूसरे गाड़े कोई भी सुनाइए।
0: तो ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया इतनी दूर से और कश्मीर के बारे में इतनी सारी जानकारी भी दी। और आपको अब सुनवा रहे हैं कुली नंबर 1 फिल्म का ये गाना।

0: तो दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के फोन कॉल आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक कृपया फोन ना करें ताकि अन्य श्रोताओं को भी इसमें सहभाग का मौका मिले। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल करते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का STD कोड 022। टेलीफोन नंबर एक और है, इसे भी आप नोट कर लें, 4002466 2, मुंबई का STD कोड 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता दें, 2867-0288। इसके अलावा एक नंबर और 400-24662, मुंबई का STD कोड 022। चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग सौरभ घारू का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है।

0: प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, जीवन एक अधूरी कविता सा है ना? ये अधूरापन मन को सालता है, लेकिन लगातार आपका पीछा करता रहता है। कुछ लफ्ज अधूरे रह जाते हैं, कुछ ख्वाब, कुछ सपने, तो कभी कुछ मुलाकातें भी। हाँ, कुछ इश्क अधूरा रह जाता है, और तब कुछ आप अधूरे रह जाते हैं। हाँ, तब कुछ आप अधूरे रह जाते हैं।
1: तेरे बिना जिया ना लगे।

0: राजा रे।
1: जब मेरी किताब छपेगी ना तो लोग पढ़ेंगे तुम्हारी हंसी की कहानियां, तुम्हारी नाराजगी के किस्से, तुम्हारी बेरुखी की दर्दनाक गाथाएं, और हाँ तुम्हारी बेवफाई भी। पर कोई नहीं पढ़ पाएगा मेरा वो खालीपन, वो अधूरापन, जिसे मैं हर पल महसूस करती हूँ तुम्हारी।

कभी रात के सन्नाटे में जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब अधूरी कहानियां जेहन में तैरने लगती हैं। कहते हैं अधूरी मोहब्बत पूरी मोहब्बत से कहीं ज्यादा गहरी होती है। शायद इसीलिए अधूरी कहानियां जिंदगी की किताब में सबसे गहरी लकीर छोड़ जाती है।

अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, वे टुकड़ों में मौजूद होती हैं। एक वाक्य अधूरा छूट जाता है, एक कथानक छूट जाता है और कभी कभी एक नोटबुक अधूरे विचारों से भर जाती है। हाँ, हमें सिखाया जाता है कि हर कहानी का अंत होना चाहिए, पात्रों को अपने अंत तक पहुंचना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। ये पात्र अपने अधूरेपन के साथ पड़े रहते हैं, चुपचाप किसी कागज के कोने में, दिनों, महीनों और कभी कभी तो जीवन भर।

बिसरी हुई अधूरी याद मुलाकात, चरागाह में खो गई गाय है, हाँ, जो रास्ता तलाशती हुई एक दिन आ जाती है वापस। कोई बिसरी हुई अधूरी याद मुलाकात, चरागाह में खो गई गाय है, जो रास्ता तलाशती हुई एक दिन आ जाती है वापस, और बंद दरवाजों के बाहर रंभाती है। पर धीरे

धीरे ये रंभाना सुनाई नहीं देता है। अपने अधूरे होने का एहसास या अधूरेपन का दर्प जिद्दी बना देता है मन को। तब मन टस से मस नहीं होता अपनी जगह से।

आज जब किताबों की अलमारी खोली तो सामने आई किताब गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती का ये उपन्यास हमने मिलकर पढ़ा था, याद है? तुम्हें कहाँ याद होगा। हाँ, आज फिर एक बार उस अधूरे प्रेम के लिए दिल भारी हो गया है। इश्क का वो पहला खत कभी फाड़ा नहीं गया मुझसे। वो प्रेम, वो जुड़ाव, वो बेबसी हर शब्द जैसे आज भी सांस ले रहा है। अपनी अधूरी प्रेम कहानी की याद दिलाता है ये खत। और हाँ, तब मन को समझा लेती हूं ये सोचकर कि हम सब अधूरे होते हैं एक आस में। हाँ, हम सभी तो अधूरे होते हैं एक आस में।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने बस कुछ ही पलों में।

0: प्रस्तुत है तराने नए पुराने। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।
1: तराने

शागिर्द फिल्म के इस गीत को स्वर दिया था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और अगला गीत हम सुनते हैं छिछोरे फिल्म का, जिसे स्वर दिया है तुषार जोशी ने, गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, धुन प्रीतम की।

वो चांद मुस्काया, सितारे शर्माए, हमारा भी दिल ना मचलने लगे।

चांद मुस्काया बिचारे शर्माए हमारा भी दिल नाम चलने लगे जो हाथ

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम किसान वाणी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। मेरे साथ में है
4: नीलम वर्मा
3: और आप सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। नीलम जी, आज आधुनिकता की दौड़ में मानव खुद की परवाह किए बिना दिन रात सब कुछ भुलाकर बस दौड़ता चला जा रहा है। इस दौड़ में दौड़ना गलत नहीं है बल्कि सबको समय के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आधुनिकता के नाम पर खुद के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना गलत है। इसीलिए भारतीय समाज स्वस्थ रहे और आने वाली पीढ़ियां निरोगी रहें, क्योंकि स्वस्थ पोषण ही पीढ़ियों के स्वास्थ्य का आधार होता है। इस बात को जानते हुए भारत सरकार एवं महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाता है। पोषण के प्रति ये जागरूकता अभियान राष्ट्रीय स्तर पर सितंबर के प्रथम सप्ताह में चलाया जाता है, इसी कारण इसे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कहा जाता है, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है क्योंकि आज है 1 सितंबर।
4: बिल्कुल, हर वर्ष भारत सरकार एवं महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा सितंबर माह के पहले सप्ताह यानी कि 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। हर वर्ष इस सप्ताह का उद्देश्य अधिकाधिक लोगों को पोषण के प्रति राष्ट्रीय मंच से जागरूक करना होता है और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह एक ऐसा माध्यम है जो आपको जागरूक करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है।
3: और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का मुख्य उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के समाज में पोषण के प्रति जन जागरण करना होता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के माध्यम से भारत सरकार का उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा और उनकी बेहतरी में उचित पोषण के महत्व की जानकारी को प्रदान करवाना होता है।
4: बिल्कुल, और पोषण युक्त आहार को देकर और इसकी जानकारी प्रदान करवाकर नागरिकों को मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियों से बचाया जा सकता है। भारत सरकार एवं महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा मानव शरीर में उचित पोषण के महत्व और कार्य पर जोर देकर नागरिकों को अच्छा जीवन प्रदान करना होता है।
3: तो कहने का मतलब यह है कि पोषण सप्ताह का उद्देश्य यही होता है कि आप पोषण के प्रति जागरूक रहें, और खासकर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, अक्सर उनमें खून की कमी देखी जाती है, तो वो अपने पोषण का जरूर ध्यान रखें। साथ ही साथ नीलम जी, हमारे जो किसान भाई हैं वो भी पूरे देश के पोषण का ध्यान रखते हैं, क्योंकि इस समय जिन किसान भाइयों ने अपने खेतों में धान की फसल उगाई होगी, उससे हमें चावल मिलता है, तो वो पोषण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमारे किसान भाइयों की जो धान की फसल है वो अच्छी हो, और इस समय उनको क्या कुछ समसमय कार्य करने चाहिए, कैसे देखभाल करनी चाहिए ताकि वो देश में पोषण की भरपाई में सहयोग करें, तो इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कुमार जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। तो सबसे पहले डॉक्टर दिनेश कुमार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, नमस्कार, कैसे हैं आप?
5: धन्यवाद, और सभी किसान भाई और बहनों को भी मेरा नमस्कार। हम सकुशल हैं और आशा करते हैं कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो भी सकुशल होंगे।
3: बिल्कुल, और हमको भी उनकी फसल की चिंता होती है, तभी तो आज आपको कार्यक्रम में आमंत्रित किया है कि ताकि हमारे जो किसान भाइयों की धान की फसल है वो अच्छी रहे। तो अगर डॉक्टर साहब हम बात करें इस समय की, तो क्या स्थिति है धान की फसल की?
5: इस समय धान चाहे आपने रोपाई विधि से लगाया हो चाहे आपने सीधी बिजाई की हो, दोनों ही परिस्थिति में धान अब जननिक अवस्था की तरफ अग्रसर है। किसान भाइयों, धान की दो प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। एक वानस्पतिक अवस्था होती है जब इसमें ब्यांत बनता है, कल्ले बनते हैं, और फिर इसमें जो है वो पौधों की लंबाई बढ़ती है। ब्यांत पूरा होने के बाद धान की फसल तुरंत अपनी जननिक अवस्था की तरफ शुरू होती है, यानी बाल बननी उसमें शुरू हो जाती है। किसान भाइयों, जब आप निकली हुई बाल देखते हैं उसके एक महीना पहले पौधे के अंदर बाल बनना शुरू हो जाती है। ये सारी की सारी जननिक अवस्था कहलाती है, और जिस दिन बाल निकलती है, जैसे ही बाल निकलती है तुरंत उसमें फूल भी बनने लगते हैं, यानी फूल उसके खिल जाते हैं और उसमें परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो इसी अवस्था में इस समय आपकी फसल है।
3: बिल्कुल डॉक्टर साहब, धान की जो फसल होती है उसको पानी की आवश्यकता होती है, तो किस तरह से हमारे जो किसान भाई हैं अपनी धान की फसल में जल का प्रबंधन करें?
5: देखिए, देश के बहुत बड़े तबके में, बहुत बड़े क्षेत्र में धान की फसल को उगाया जाता है। वर्तमान आंकड़ों को देखें हम तो 50 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र ज्यादा क्षेत्रों में धान उगाया जाता है, और देश का ऐसा कोई राज्य या भाग नहीं है जिसमें धान नहीं उगाया जाता।

0: और अच्छी बात यह है कि कुछ भागों को छोड़कर ज्यादातर भागों में जहां धान उगाया जाता है वहां पे बहुत अच्छी बरसात हुई है। यानी कहने का मतलब यह है कि सिंचाई की धान में इस समय आपको कम आवश्यकता होगी अगर आपकी बरसात अच्छी हुई है तो। हाँ, अगर कहीं पे ज्यादा बरसात होगी, बाढ़ आ गई, तो वहां धान से आपको पानी को निकालना पड़ेगा। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने बताया कि धान अब जननिक अवस्था में, तो भाइयों बहनों मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि इस समय पे धान की फसल में पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर पानी हर समय हमारे धान की फसल में होना चाहिए। एक दिन के लिए भी पानी या 2 दिन के लिए भी पानी नहीं होगा तो उसका हमारी फसल की पैदावार पर उल्टा असर होगा। अतः इस दिशा में आप ध्यान रखें, आवश्यकता अनुसार समय समय पर अपने खेत में पानी बनाए रखें, कम से कम छिछला पानी आप उसमें बनाए रखें।
1: बिल्कुल, तो किसान मित्रों आप जरूर ध्यान दें इस बात पर कि आपको जल का प्रबंधन ठीक तरह से धान की फसल के लिए करना है। डॉक्टर साहब, फसल कोई भी हो, खरपतवार आते ही आते हैं
0: जी,
1: तो उनका नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी है, तो कैसे कर सकते हैं?
0: जी, जो ये अवस्था है, आज की अवस्था है धान की, जो ज्यादातर जननिक अवस्था है, इस अवस्था पे खरपतवार पहले ही किसान भाई नियंत्रित कर लेते हैं। और अगर इस समय भी किसी किसान भाई के खेत में खरपतवार है तो इस समय पे कोई भी खरपतवार नाशी दवाई नहीं है जो धान की फसल में खरपतवारों का नियंत्रण कर सके। अगर इस अवस्था पे आपके खरपतवार आते हैं, चाहे वो चौड़ी पत्ती के हों चाहे संकरी पत्ती के हों, उनको आपको निकाई द्वारा हाथ से ही आपको उनको उखाड़ के बाहर खेत के फेंकना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है।
1: बिल्कुल, तो इस तरह से किसान मित्रों आप अपने धान की फसल से जो खरपतवार हैं उनको उखाड़ के फेंक सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे खरपतवार आते हैं तो फसलों में रोग कीट भी आते हैं, तो इस वक्त तो जो अभी आपने जो अवस्था बताई है धान की फसल की, तो कौन कौन से कीट के आने की संभावना होती है और क्या हानि वो पहुंचाते हैं?
0: निश्चित तौर पे इस समय पे कीटों की अगर हम बात करें तो तना छेदक एक कीट होता है, वो तो हर साल आता ही है धान में, और वो अवस्था को नहीं देखता, वो वनस्पति की अवस्था में भी आता है और जब बालियां निकलती हैं तब भी आता है। इसी तरीके से पत्ती लपेटक कीट है, ये भी कभी भी आ सकता है, खास करके शुरुआती अवस्था में काफी आता है। तीसरा महत्वपूर्ण कीट है धान का, जो भूरा फुदका कहते हैं, ब्राउन प्लांट होपर, ये भूरे फुदके होते हैं, ये पौधे के तने पे बैठते हैं नीचे और फसल को नुकसान कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे चल के जब आपके दाने में दूध बनेगा, अभी तो शायद वो अवस्था नहीं आई है, तब आपके गंधी कीट भी आ सकता है। इसके अलावा और कई सारे कीट हैं जो धान की फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बात यही है कि आपको देखना है कि कहीं आपकी धान की फसल को इन कीटों द्वारा नुकसान तो नहीं हो रहा। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि खेत में आप जाएं सुबह या शाम और अपनी फसल को गौर से देखें और पौधों को हिलाएं, कहीं कोई कीड़े मकोड़े आपको उड़ते तैरते हुए दिखाई तो नहीं दे रहे। अगर ऐसी स्थिति है तो आप तुरंत उनका समाधान करें।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बात की थी तना छेदक कीट की और पत्ती लपेटक कीट की, तो किस प्रकार ये फसल को हानि पहुंचाते हैं और इनकी रोकथाम वो कैसे की जा सकती है?
0: जी, ये दोनों कीट लगभग साथ साथ ही धान की फसल में आते हैं। और पहले हम तना छेदक की बात करते हैं। इसकी जो सूंडी या इल्ली होती है वो जमीन की सतह से पौधे के तने में घुस जाती है, धान के तने में घुस जाती है और अंदर के पदार्थों को खाती रहती है। तो ऊपर की जो बीज की पत्तियां होती हैं वो भूरी होकर सूख जाती हैं, इसको हम मृत केंद्र कहते हैं, डेड हर्ट्स कहते हैं। इसके अलावा अगर तना छेदक बाली अवस्था पे आता है तो ये सूंडी अंदर ही अंदर बाली को काट देती है, और फिर आप अगर इस तरह की बाली को देखेंगे तो उसका रंग सफेद हो जाएगा, उसमें दाने नहीं भरेंगे, खाली उसमें जो है दाने दिखाई देंगे आपको और बाली का रंग सफेद होगा। कुछ किसान भाई इसको सफेद बाली रोग भी कहते हैं, हालांकि रोग नहीं है, कीट द्वारा हानि होती है। इस तरह की बाली को आप जब खींचेंगे तो बड़ी आसानी से वो खींच जाती है और इससे पैदावार में काफी हानि होती है। और आपने दूसरा सवाल पूछा कि भाई ये पत्ती लपेटक क्या करता है, तो इसकी भी सूंडी नुकसान करती है। ये करती क्या है, पत्ते पे पहुंच जाती है और पत्ते को जो किनारे होते हैं दोनों तरफ से उनको सील देती है और अंदर एक सुरंग सी बना लेती है, इसको लीफ रोलर भी कहा जाता है, और अंदर से ये क्लोरोफिल को खा जाता है। किसान भाइयों, आपकी फसल के जो पत्ते हैं वो सफेद रंग के हो सकते हैं और इसकी अवस्था अगर ज्यादा उग्र हो जाए, बहुत ज्यादा इसका हमला हो जाए, तो पूरा खेत हमें ऐसे दिखाई देगा जैसे चूने से किसी ने पुताई कर दी हो, जगह जगह आपको सफेद पत्ते दिखाई देंगे। तो ये इन दोनों कीटों के लक्षण हैं, इनकी रोकथाम भी एक जैसी है, दोनों को मतलब एक दवाई से आप नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए आप ध्यान से सुने, कार्बाफ्यूरान 3CG है ये, CG जो जी है उस पे बैन लग गया है, लेकिन कार्बाफ्यूरान 3CG जो है बाजार में मिलती है, इसकी 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप बुरक सकते हैं, छिड़क सकते हैं। इसी तरीके से एक दूसरा ग्रेनुल होता है, दानेदार दवाई होती है, जिसको कार्टप हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं, इसकी 4G मात्रा होती है, 4% ग्रेनुल आते हैं, दाने आते हैं, इसका आप बुरकाव कर सकते हैं, इसकी मात्रा भी लगभग 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास है। इसके अलावा क्लोरपाइरीफास दवाई आती है, उसका भी छिड़काव कर सकते हैं, इसके लिए 2 ग्राम क्लोरपाइरीफास आती है, प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से इन कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, कीटों के नियंत्रण करने के लिए आपने जो दवाइयां बताई हैं, छिड़काव के बारे में आप बता रहे हैं, तो किस समय छिड़काव करना चाहिए ताकि उसका असर सही तरह से हो?
0: बिल्कुल, ये वाजिब सवाल है आपका, क्योंकि इस समय पे बरसात भी होती रहती है, तो अगर हमारी छिड़कने वाली दवाई है, अगर हम पर्णीय छिड़काव कर रहे हैं, यानी हम स्प्रेयर मशीन से छिड़काव कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमें मौसम की जानकारी लेना चाहिए। अगर हमें पता है 4 घंटे बाद बरसात होगी, तो इस तरह के छिड़काव को आप टाल दें। जब आपको मौसम साफ दिखाई दे और उम्मीद हो कि अगले 6-7 घंटे बरसात नहीं होनी, तब आप इस तरह की दवाई का छिड़काव करें। दूसरी तरफ मैंने दानेदार दवाई जैसे आपको बताई है, इनमें खास ध्यान यही रखना कि खेत में ज्यादा पानी ना भरा हो और ज्यादा बारिश की संभावना ना हो, छिछला पानी हो, हल्का पानी हो, तब ये दानेदार दवाई ज्यादा प्रभाव डालती है, क्योंकि इनकी मात्रा थोड़ी कम होती है। तो इसमें आप रेत में मिला के आप इस तरह के दानेदार दवाइयों को अपने खेत में बुरक सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, दवाई अगर हमारे किसान भाई अपने खेतों में लगा रहे हैं, खास करके कीट नियंत्रण की, तो अपने स्वास्थ्य का उस समय किस तरह से ध्यान रखना उनको आवश्यक है?
0: जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी होता है कि किसान भाई जब भी इन दवाइयों का छिड़काव करें, प्रयोग करें, तो कुछ सावधानियां आपको बरतनी पड़ती है। जैसे सबसे पहले अपनी आपको आंखों को बचाना है, इसके लिए आप एक चश्मा लगाएं, आपके सर में बालों में एक टोपा या कोई इस तरह की चीज ओढ़ें, और आपके अपने चेहरे को भी बचाएं, हाथों में दस्ताने हों, आपके ग्लव्स हों। आप कोशिश करें कि ये पदार्थ जो अब आप प्रयोग में लाते हैं खेत में, तो आपके शरीर पे ना आए, आपके किसी अंग में ना जाए। जो किसान भाई, हालांकि बीड़ी वाड़ी नहीं पीनी चाहिए आदमी को, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, फिर भी कोई किसान अगर इस तरह के कार्य को करता है, तो आपको छिड़कने के बाद तुरंत बीड़ी ना पिए, अपने मुंह पे अपनी उंगलियों को ना लगाएं, इससे भी आपको हानि हो सकती है। और साथ ही साथ मौसम का आपको ध्यान रखना है, और ये जो इसकी पैकिंग होती है, जो डब्बे होते हैं या पैकिंग होती है, उसको खेत के आसपास ना रखें, खेत से दूर ले जाके उनको नष्ट कर दें। और अगर घर में आप इस तरीके की जहरीली दवाई रखते हैं, तो उनको बच्चों की पहुंच से दूर रखें, और किसी कारणवश अगर आप इस दवाओं को सांस में ले लेते हैं या किसी तरीके से निगल जाते हैं, खा लेते हैं, तो तुरंत किसी चिकित्सक से आप संपर्क करें और अपना इलाज कराएं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है, और इसी बात से एक बात जोड़ते हुए मैं एक और जानकारी आपसे चाहूंगा कि जो भी हमारे किसान मित्र अपने खेतों के लिए दवाइयां खरीदते हैं, चाहे वो कीटनाशक हो या रोगों के लिए खरीदते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? कई बार नकली दवा भी आ जाती है।
0: जी बिल्कुल, देखिए अभी कई बार किसान भाई सवाल करते हैं, भाई मैंने खरपतवार नाशी डाला, कीटनाशी डाला, तो असर नहीं हुआ। किसान भाइयों, आजकल बाजार में बहुत नकली दवाएं, नकली चीजें मिल रही हैं। पहली बात तो यह कि आपको किसी दुकानदार पर निर्भर नहीं होना है। आप दुकानदार को समस्या कुछ बताएंगे, वो दवाई कुछ दे देगा। पहली बात तो दवाई का चयन ही गलत हो जाता है, और दूसरी बात वहां पे संभावना होती है कि आपको नकली दवाई मिल जाए। थोड़ी महंगी जरूर मिलेगी, लेकिन अच्छी कंपनी की आप दवाई लें। और जो दूसरा प्रमुख हिस्सा है वो ये है कि आप रसीद जरूर लें, पक्की रसीद लें। आजकल हर दवाई के डिब्बे पे नंबर होता है, उसका उससे पहचान हो सकती है कि वाकई ये कंपनी ने बनाई है, उसकी जांच की जा सकती है, और QR कोड वगैरह से स्कैन करके उसका सारा डिटेल हम पता कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि एक्सपायरी डेट देखें, उस पर कहीं उसकी म्याद तो खत्म नहीं हो गई है दवाई की। कई बार ऐसा होता है कि दवाई हमारी की म्याद खत्म होगी, एक्सपायरी होगी, और फिर हम उसको प्रयोग में लाते हैं, तो वो प्रभावी नहीं होती, इसका ध्यान रखें।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बात आपने बताई कीटों का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, और बात वर्तमान समय की करी रहे, तो इस समय क्या जो सूत्रकृमि होते हैं वो भी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं?
0: जी हाँ, सूत्रकृमि किसान भाइयों क्या होते हैं, छोटे छोटे सूत्र के आकार के कीड़े होते हैं, नन्हे नन्हे कीड़े होते हैं, जैसे कि धागा होता है सफेद रंग का, और ये मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, और कई बार ये धान की जड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। वहां प्रवेश करने के बाद ये अपनी बढ़वार करते हैं और धान की जड़ों में सफेद रंग की छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, और ये जब गांठें बनती हैं तो पौधा हमारा पोषक तत्वों को नहीं ले पाता, यहां तक कि पानी को भी नहीं ले पाता। ये खास करके उन दशाओं में आता है जब हमने धान की सीधी बिजाई की हो या खेत में पानी का प्रबंधन कम हो, पानी कम लगाया हो हमने। अब क्या होता है, निमेटोड या सूत्रकृमि जब जड़ में गांठें बना लेते हैं तो पौधे की बढ़वार रुक जाती है, उसकी पत्तियां पीली हो जाती हैं और कई बार तो उस पर बालियां नहीं आती। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों आप कार्बाफ्यूरान का तुरंत प्रयोग करें और जांच पहले करें, हर पौधे को उखाड़ के देखें कुछ पौधों को, और अगर उसमें जड़ों में गांठें दिखाई दें तो आप कार्बाफ्यूरान 3 सीजी इसकी 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टर के हिसाब से बुरक दें, या फिर आप 250 किलोग्राम नीम की खली प्रति हेक्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं, इससे निमेटोड रुकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये कीटों के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी और सूत्रकृमि के बारे में आपने बताई। अब बात करते हैं रोगों के बारे में
0: जी।
1: तो कौन कौन से रोग आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है इस मौसम में, किस तरह से उन पर नियंत्रण किया जा सकता है?
0: जी देखिए, इस समय पे 4 रोग या 5 रोग प्रमुख होते हैं, जैसे कि एक ब्लास्ट होता है, बदरा रोग होता है, वो आ सकता है। दूसरा शीत ब्लाइट जिसको हम आवरण झुलसा कहते हैं। तीसरा हमारा बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी जीवाणु पत्ती झुलसा हो सकता है, और एक हमारा फाल्स स्मट या आभासी कंड होता है। इसके अलावा कहीं कहीं पर बकानी रोग के आने की भी संभावना रहती है।
1: तो डॉक्टर साहब, किस तरह से हमारे किसान भाई इन रोगों को पहचाने और किस तरह से उनका जो उपचार करें?
0: जी बिल्कुल, जैसे रोग, जैसे ब्लास्ट रोग होता है, बदरा रोग कहा जाता है, इसमें क्या होता है बदरा रोग में कि धान के पौधों पे आंख के आकार के धब्बे बन जाते हैं और ये धब्बे फिर बढ़ते जाते हैं और पूरी पत्ती को भूरा रंग कर देते हैं, इससे काफी नुकसान होता है। और ये जो रोग है, बदरा रोग है या ब्लास्ट रोग है, ये धान के कई भागों में आता है, कई बार नोड पे आ जाता है, जो गांठें होती हैं धान के तने पे उस पे भी आ जाता है, पत्तों पे भी आ जाता है, यहां तक कि धान की जो ग्रीवा होती है जिसको हम गर्दन कहते हैं, धान की बाली का वो भाग जो तने से जुड़ता है उसको गर्दन कहा जाता है, जैसे हमारी गर्दन होती है, इस पे भी कवक का आक्रमण हो जाता है जिसकी वजह से बाली सड़ सी जाती है वहां से और टूट के लटक जाती है। किसान भाइयों कई बार तो हमने ऐसा देखा है कि शाम को किसान ने देखा कि खेत ठीक है और जब वो सुबह अपने खेत में गए तो उन्होंने देखा कि 20-30% तक बालियां अपने स्थान से लटक जाती हैं यानी उस पर कवक का हमला हो चुका है। तो इस तरह के जो नेक ब्लास्ट है या गर्दन तोड़ किस लेनी है और 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टर के हिसाब से छिड़क दें तो आपका
1: इसके लक्षण और कंट्रोल के बारे में आप किसान भाइयों को क्या जानकारी देना चाहिए?
0: जी बिल्कुल, और मेरी अभी कुछ दिनों पहले कुछ किसानों भाइयों से बातचीत भी हुई थी तो कई जगह मध्य भारत में खास करके इस बार जो जीवाणु पत्ती झुलसा है वो आ रहा है और उसके आने की संभावना है। किसान भाइयों पहले आपको इसके लक्षण पहचानने के लिए सबसे पहले ये होता है कि पौधे की वृद्धि रुक जाती है। दूसरा, पौधे के जो किनारे होते हैं, पत्तों के जो किनारे होते हैं, नोक से पीलापन शुरू होता है और जो मार्जिन होते हैं, जो पत्ती के दोनों किनारे होते हैं, इसमें लंबे लंबे लहरदार पीले रंग की जो है पट्टियां सी बन जाती हैं और फिर ये पट्टियां बड़ी होकर पूरा पत्ता भी पीला हो सकता है, पत्ता हमारा सूख सकता है, धान के कई पत्ते एक साथ सूख जाते हैं, कई बार तो पूरे की पूरी फसल हमारी नष्ट हो सकती है। इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो सबसे पहले आप जांच कराएं कृषि विज्ञान केंद्र से या विश्वविद्यालय से कि कहीं ये रोग जीवाणु पत्ती झुलसा तो नहीं है। अगर ये कन्फर्म हो जाए तब तुरंत इस रोग का आप इलाज करें। इसके लिए यहां से हम ये सुझाव देते हैं कि आप एक मिक्सचर होता है बना बनाया, इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट, ध्यान से सुने, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 9% होता है और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड ये 1% होता है और इसके अलावा आपके कापर ऑक्सीक्लोराइड, सो ये मिश्रण बना बनाया आता है 3 दवाइयों का, मैं दोबारा बता रहा हूँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट, टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इस मिश्रण की आप 2 ग्राम मात्रा लें और प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के आप छिड़क दें। अगर ये रोग आपके खेत में फिर भी दिखाई देता है तो आप इस छिड़काव को दोहराएं और एक चीज का खास ध्यान रखना कि इस खेत से जो प्रभावित खेत है इससे पानी का जो बहाव है वो स्वस्थ खेत में ना जाने दें, क्योंकि ये पानी के माध्यम से दूसरे खेतों में रोग फैलता है। और दूसरी बात यह कि नाइट्रोजन का प्रयोग आपको कम से कम करना है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, धान की फसल में इस समय जो आवासी कंड है वो भी अक्सर दिखाई देते हैं फसल में आ जाते हैं, तो इसके लक्षण और इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है?
0: जो फाल सिस्मट है किसान भाइयों, इसको हल्दी गांठ रोग भी आप लोग कहते हैं, हिंदी में इसे आवासी कंड कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब दाने निकलते हैं और दाने में दूध बन रहा होता है, तो उस समय दाने के अंदर जो कवक होता है, एक खास प्रकार का कवक होता है, उसके बीजाणु बनने शुरू हो जाते हैं और वो धान के दाने को पीला रंग कहते हैं, इसलिए आप हल्दी गांठ कहते हैं। दाना फूल जाता है, दो ढाई गुना हो जाता है, शुरू में वो दाना पीले रंग का दिखाई देगा या ऑरेंज कलर का दिखाई देगा, फिर ये काले रंग का हो जाता है। इससे धान की गुणवत्ता काफी प्रभावित होती है, उसकी क्वालिटी में गिरावट आती है। हालांकि पैदावार पर कोई खास

0: नहीं पड़ता, लेकिन जब तक आप पहचान पाते हैं इस रोग को तब तक काफी देरी हो चुकी होती है, क्योंकि इसका जो बीजाणु है, इसका जो फाइफा है फंगस का, वो पौधे के अंदर पहले से ही मौजूद रहता है, सिर्फ आखिर में दिखाई देता है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दें तो आप कापर ऑक्सी क्लोराइड, ध्यान से सुने, कापर ऑक्सी क्लोराइड, इसकी 1.25 किलोग्राम मात्रा 500 लीटर पानी में घोल बनाकर।
1: तो किसान भाई जिनकी धान की फसल लगी हुई है खेतों में, किन किन बातों का ध्यान दें, किस तरह से अपनी फसल की देखभाल करें ताकि उनको अच्छी पैदावार मिले?
0: निश्चित तौर पे अगर आपने अभी भी नाइट्रोजन की खुराक नहीं दी है, धान आपने पछेती लगाया था, तो जो तीसरी और अंतिम खुराक है धान की, वो जरूर उसमें लगा दें। प्रायः ये गाभे पे लगाई जाती है, जब उसमें पेनिकल का बनना, जो बाली का बनना पौधे के अंदर शुरू हो जाता है। उचित जल प्रबंधन करना है, जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है, जननिक अवस्था है, इसमें आपको खेत में 1 से 2 सेंटीमीटर पानी हमेशा रखना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि अपनी फसल की लगातार निगरानी आपको करते रहना है, खेत में आते जाते रहना है, और समस्या ध्यान से आपको देखनी है। अगर कोई समस्या दिखाई दे तो उसका आप वैज्ञानिकों से सलाह लें, और जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां से सलाह लें, और दुकानदार से आप सलाह ना लें, मेरा ये मानना है, और फिर आप उसका उपचार करें, उसका निदान करें। तो आशा करता हूं कि अगर इन बातों पर आप ध्यान रखोगे तो धान की अच्छी पैदावार आप ले पाओगे।
1: बिल्कुल डॉक्टर दिनेश कुमार जी, आपकी बातों का हमारे जो किसान भाई हैं जरूर ध्यान रखेंगे, उसी तरीके से अपने फसल में समय कार्य करेंगे, देखभाल करेंगे। कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
3: परम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: और अब नीलम जी, हमारे किसान बहन भाई इंतजार कर रहे होंगे मौसम आधारित कृषि सलाह का, ताकि वो उसके अनुसार अपने कृषि कार्य हैं उनको अच्छे से संपन्न कर पाए। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार आप किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस मौसम में धान की फसल को नष्ट करने वाली ब्राउन प्लांट होपर का आक्रमण आरंभ हो सकता है। इसीलिए आप किसान भाई खेत के अंदर जाकर पौध के निचले भाग के स्थान पर मच्छरनुमा कीट का निरीक्षण करें।
5: और इस समय धान की फसल मुख्यतः वानस्पतिक वृद्धि की स्थिति में है, अतः फसल में कीटों की निगरानी करें।
1: और इस मौसम में आप किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि स्वीट कॉर्न यानी कि माधुरी बिन ऑरेंज और बेबी कॉर्न की बुवाई मेड़ों पर करें।
5: और इस मौसम में टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूल गोभी और पत्ता गोभी की पौध तैयार है, तो इस मौसम को मद्देनजर रखते हुए पौधों की रोपाई मेड़ों पर करें।
1: कद्दू वर्ग की सब्जियों को ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था करें ताकि वर्षा से सब्जियों की बेलों को गलने से बचाया जा सके।
5: और कद्दू वर्गी एवं अन्य सब्जियों में मधुमक्खियों का बड़ा योगदान है, क्योंकि वे परागण में सहायता करती हैं, इसलिए जितना संभव हो मधुमक्खियों के पालन को बढ़ावा दें। कीड़ों एवं बीमारियों की निरंतर निगरानी करते रहें। कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क रखें और सही जानकारी लेने के बाद ही दवाइयों का प्रयोग करें।
1: तो किसान भाइयों, ये तो थी मौसम आधारित कृषि सलाह। और अब श्रोताओं, आपको बताते हैं दिल्ली की आजादपुर मंडी का फल सब्जी का भाव। तो श्रोताओं, सबसे पहले बात करें सब्जी की, तो आलू बिका 12 रुपए प्रति किलोग्राम, प्याज बिकी 25 रुपए प्रति किलोग्राम, टमाटर बिका 25 रुपए प्रति किलोग्राम, बैंगन बिका 17 रुपए प्रति किलोग्राम और खीरा बिका 22 रुपए प्रति किलोग्राम। अगर हम भिंडी की बात करें तो वो बिकी 40 रुपए प्रति किलोग्राम, मटर बिकी 75 रुपए प्रति किलोग्राम और तोरई बिकी 19 रुपए प्रति किलोग्राम।
5: और अब बात करते हैं फलों के भाव की, तो सेब बिका 90 रुपए प्रति किलोग्राम, केला बिका 20 रुपए प्रति किलोग्राम, अमरूद का भाव रहा 45 रुपए प्रति किलोग्राम और

0: मौसमी बिकी 29 रुपए प्रति किलोग्राम, पपीता बिका 23 रुपए प्रति किलोग्राम और तरबूज बिका 15 रुपए प्रति किलोग्राम।
1: तो श्रोताओं, आपने जाना फल सब्जी का भाव, और देखिए अब नीलम जी घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अपने श्रोताओं से अनुमति ली जाए। लेकिन अनुमति लेने से पहले अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि आपको आज का किसान वाणी कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप कोई भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। तो इसी के साथ कार्यक्रम किसान वाणी के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। आप सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवरेज।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: Nasimong Hindi programo ni kisanvani program ni bakchi bri pakok na sona manaha somoy da o chet baji onaha dikdik sani jamano na simang delhi station ni wata ting pa hindi aro english ko borang kok na sus kana man gen yan akashvani tura
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत और बेल्जियम ने आज व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बख्त दा वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बख्त दा वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला एक देश और एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनाने में मदद करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिक्षा क्षेत्र में भारत को नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने कहा कि देश 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता का आंकड़ा पार कर चुका है, जो वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट के लक्ष्य की ओर देश की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। गुजरात के अहमदाबाद में भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2026 के अंतर्गत आयोजित एक रोड शो में श्री नाइक ने ये बात कही। उन्होंने इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, पर्यावरण बुनियादी ढांचा, ऊर्जा भंडारण, हरित विनिर्माण और अभिनव वित्त पोषण को शामिल करते हुए एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की आवश्यकता का उल्लेख किया। झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित दो दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वोटर रजिस्ट्रेशन एंड वोटर रजिस्टर्ड 2026 आज रांची के NUSRL में संपन्न हुआ। समापन सत्र में NUSRL के कुलपति प्रोफेसर अशोक आर पाटिल ने कहा कि सटीक और समावेशी मतदाता सूची लोकतांत्रिक भागीदारी की बुनियाद है और चुनाव की शुचिता और समावेशन को साथ साथ सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 5 रन बना लिए हैं। हांगकांग ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। किदाम्बी श्रीकांत तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renuka. India and Belgium today reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgium counterpart, Bart De Wever, welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. The two sides identified significant potential for cooperation in pharmaceuticals, life sciences, semiconductors, defense manufacturing, critical minerals, renewable energy, ports, logistics, space and advanced technologies. Both leaders also welcomed the successful conclusion of negotiations on the India-EU Free Trade Agreement and called for its timely implementation. In his press statement, Prime Minister Modi emphasized that India's economy has maintained its momentum even in this challenging environment. He said in the last quarter, India recorded a growth of 7.8%. He further stated that today, India's growth story is becoming a source of confidence and new opportunities for the world. He stated that the scope of bilateral cooperation has expanded beyond traditional sectors to reach strategic areas such as defense and clean energy.
2: हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे। फ्रेंड, रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। आज हमने दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई है।
3: ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी, बेल्जियम कन्वेड सॉलिडारिटी विद

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज कार्यक्रम में बात की जाएगी क्रिकेट के मैदान की, जहां महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला है जारी और भारतीय टीम को मिली है फिर एक बार शानदार और तेज शुरुआत। बैडमिंटन के कोर्ट पर आज किदांबी श्रीकांत तथा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी लेकर के आई है गुड न्यूज। चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में की है अपनी जगह पर की, वहीं अनाहत सिंह ने स्क्वाश के मैदान में फिर एक बार जीत की तरफ बढ़ाया है कदम। लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में बनाकर की जगह और यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्काराज ने दूसरे दौर में दर्ज की है एक और जीत। पहला सेट हारने के बाद शानदार वापसी का किया प्रदर्शन और 2027 में होने वाली पहली ICC महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी अब श्रीलंका के स्थान पर भारत में की जाएगी आयोजित। आज के कार्यक्रम को शुरू किया जाए दुबई में इस समय खेले जा रहे भारत और हांगकांग के बीच महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के मुकाबले से, जहां तक यह समाचार मिलने तक भारत ने 8वें ओवर में बिना कोई विकेट खोए 69 रन बना लिए हैं। हांगकांग ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। अगर भारत की बात की जाए तो ग्रुप ए के अपने पहले मुकाबले में इस टीम ने 94 रन से एक शानदार जीत दर्ज की थी थाईलैंड के ऊपर और टीम की नज़र जो है आगामी 5 तारीख को पाकिस्तान से होने वाले मुकाबले पर होगी। और इस क्रिकेट मुकाबले पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे सहयोगी विशेष। विशेष, आज के मैच पर क्या खास अपडेट है आपके पास?
1: शक्ति, भारतीय टीम ने अपनी शुरुआत जो है बेहद शानदार करी है। आठवां ओवर चल रहा है और भारतीय टीम 74 रन बना चुकी है बिना किसी नुकसान के। दोनों सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और शफाली वर्मा शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। शफाली वर्मा ने जहां 16 गेंदों पर 28 रन, वहीं स्मृति मंधाना ने 31 गेंदों पर 44 रन बनाए हैं। शफाली ने अपनी पारी में 2 छक्के भी लगाए हैं। इसी के साथ ये मैच जो है भारत बहुत अच्छी पोजीशन में होल्ड कर रहा है इस मुकाबले में और इस मुकाबले को जीतकर एक अपनी जो स्थिति है सेमीफाइनल के लिए उसको और मजबूत करना चाहेगा।
0: जी बिल्कुल, स्थिति मजबूत करना चाहेगा। हम एक बार स्थितियां भी जानना चाहेंगे, जो कि एशिया कप चल रहा है, मल्टी नेशन टूर्नामेंट है इस समय, जो कि अब धीरे धीरे हर टीम अपने मुकाबले खेल चुकी है, पूल में और पॉइंट टैली में क्या स्थिति नजर आती है?
1: ग्रुप ए की बात करें शक्ति, तो इंडिया अभी नंबर 1 पर बनी हुई है एक में से एक मुकाबला जीतकर, वहीं दूसरे नंबर पर
0: काम काफी हद तक टीम के लिए कर दिया और एक मजबूत शुरुआत टीम को देकर के पवेलियन लौटी हैं। उन तैयारियों के अनुरूप देखा जाए तो ये कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है भारत के लिए मैच।
1: भारत के लिए एक वार्म अप गेम की तरह साबित होगा पाकिस्तान के मुकाबले से पहले, क्योंकि पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने बल्लेबाजी में बहुत सारी गलतियां करी, जहां पर 46 रन के अंतराल में लगभग 7 विकेट भारत ने गंवाए थे और एक बहुत बड़े स्कोर करने से चूक गए थे। तो उन सब गलतियों पर ध्यान देते हुए जैसी आज शुरुआत मिली है, इसी को कैपिटलाइज करके एक बड़ा स्कोर जो है बनाने की ओर भारतीय टीम देखेगी।
0: जी बिल्कुल, भारतीय टीम चाहेगी कि एक बड़े स्कोर में तब्दील किया जाए शानदार शुरुआत को। और अब क्रिकेट के मैदान की एक और खबर की तरफ नजर डाली जाए, जो कि आई महिला क्रिकेट के ही मैदान से। 2027 में होने वाली पहली ICC महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी अब भारत में आयोजित होगी। 14 से 28 फरवरी के बीच निर्धारित ये प्रतियोगिता पहले श्रीलंका में होनी थी, इसकी मेजबानी अब भारत को प्राप्त हो गई है। श्रीलंका से मेजबानी लेने का कारण श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड में सरकारी दखल के बाद प्रशासनिक सुधारों की जारी प्रक्रिया को बताया जा रहा है।
2: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने बताया कि 6 टीमों के बीच खेले जाने वाला यह टूर्नामेंट अब 2 वेन्यू पर आयोजित होगा। इनमें मुंबई का क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया और वडोदरा का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम शामिल है। ICC ने कहा कि यह टूर्नामेंट पहले श्रीलंका में होना था, लेकिन अब यह भारत में होगा, क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड जुलाई में ICC के सालाना सम्मेलन में तय किए गए व्यापक सुधार कर रहा है। श्रीलंका क्रिकेट का कामकाज अभी एक अंतरिम ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी की देखरेख में जारी है। ICC ने यह भी बताया कि भारत को मेजबान के तौर पर चुनने से पहले एक मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के प्रस्तावों पर विचार किया गया था। महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 के लिए क्वालिफाई करने वाली 6 टीमों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेगी। इनमें से शीर्ष 2 टीमें 28 फरवरी को होने वाले फाइनल में पहुंचेंगी। इन टीमों का चयन 6 जुलाई के क्वालिफिकेशन कट ऑफ तारीख पर ICC महिला T20 टीम रैंकिंग के आधार पर हुआ है। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: शेड्यूल जो है भारत का होना है, यहां से एशियन गेम्स और शायद कह सकते हैं कि इस T20 फॉर्मेट की पहली चैंपियंस ट्रॉफी को जीतकर भारतीय टीम उस T20 विश्व कप में जीत ना पाने की कसक को भी मिटाने का काम करेगी। क्रिकेट के बाद अब स्पोर्ट्स कैन में बात बैडमिंटन की। किदांबी श्रीकांत तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। सुनते हैं आज खेले गए मुकाबलों का पूरा हाल।
3: किदांबी श्रीकांत ने आज पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में कनाडा के विक्टर लाई को एक कड़े मुकाबले में 21-18, 21-19 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जहां अब उनका सामना हांगकांग की ली च्यूक यू से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स जोड़ी ने फ्रांस के पोपोव बंधुओं क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव को 21-17, 22-24, 21-9 से हराया। अब ये भारतीय जोड़ी क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रूप और आंद्रे सकारू रश्मि सेन का सामना करेगी। हालांकि महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से 17-21, 21-18, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो का अभियान ताइपे के ह्यू क्वांग हॉन्ग और सु येन हुई से सीधे गेम में 18-21, 18-21 की हार के बाद समाप्त हो गया। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो कह सकते हैं कि चिराग और सात्विक की ये जोड़ी, जिसने 2022 के एशियन गेम्स का स्वर्ण पदक जीता था, फिर एशियन गेम्स से ठीक पहले अपनी शानदार लय में नजर आती हुई, और शायद वो एशियन गेम्स और सिंगापुर ओपन जैसे टूर्नामेंट का खिताब जीत चुकी ये जोड़ी वापस एक बार इसी इतिहास को दोहराने की कोशिश में होगी। अब बैडमिंटन के बाद बात स्क्वाश की, जहां नाहा सिंह लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। इस विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियन ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम की नील गिल्स को 13-11, 4-11 और 11-8 से हरा।

0: बनाहट का अगला मुकाबला शिव सारंगी और गरस के बीच होने वाले प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले के विजेता से होगा। भारत के अन्य खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो दूसरे दौर में रमित टंडन और पहले ही दौर में वीर चोटरानी का अभियान इस प्रतियोगिता से समाप्त हो चुका है, तो कह सकते हैं कि भारत के अभियान की पूरी उम्मीदें इस युवा खिलाड़ी पे होंगी जिसकी नजर इस टूर्नामेंट से भी अधिक एशियन गेम्स पे स्वर्ण पदक जीतने पर है। और टेनिस में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज ने आज तीसरे दौर में जगह बना ली है। उन्होंने अपने दूसरे दौर के मुकाबले में जैम फारिया को पहले सेट गंवाने के बाद शानदार वापसी करते हुए 4-6, 6-0, 6-3 और 6-2 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाक्त डी वेवर के साथ नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री डी वेवर को हॉकी विश्व कप 2026 के सफल आयोजन के लिए बधाई दी।
1: पिछले महीने बेल्जियम और नीदरलैंड ने मिलकर हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट किया। मैं इस वर्ल्ड कप के भव्य आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं अपने खिलाड़ियों की मेहनत और प्रदर्शन के लिए भी उनकी सराहना करता हूं।
0: तो खेल एक बड़ी भूमिका निभाते हुए दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में ऐसा ही कुछ उदाहरण हमने देखा, जहां हॉकी ने भारत और न्यूजीलैंड के जो टाइस थे उनको किस तरीके से 100 वर्ष पूरे होने पे मजबूत करने का काम किया था। और ये विश्व कप जिसमें भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान हासिल करके ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था, जबकि पुरुष टीम को 8वें स्थान से संतोष करना पड़ा था। और अब बात भारतीय जूनियर पुरुष और महिला हॉकी टीमों की कर ली जाए, जो कल से शुरू हो रहे AHF जूनियर एशिया कप में अपने खिताब को बचाने के इरादे से उतरेंगी। भारतीय महिला टीम ने पिछले 2 संस्करण में जूनियर एशिया कप की ट्रॉफी जीती थी और इस बार मिडफील्डर खेदेम सिलेमी चानू टीम की कप्तानी करेंगी। एलीट पूल में शामिल भारत अपने अभियान की शुरुआत 5 सितंबर को साउथ कोरिया के खिलाफ करेगा, जबकि भारत 5 सितंबर को इंडोनेशिया के खिलाफ पूल ए में अपने अभियान की शुरुआत करेगी पुरुष टीम। इसके बाद 6 सितंबर को पुरुष टीम का मुकाबला जापान से, 8 सितंबर को साउथ कोरिया से और 9 सितंबर को चीनी ताइपे से होगा।

0: तो अब भारत में स्टेज सेट हो रहा है एक आर्चरी टूर्नामेंट का, जहां आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और भारतीय तीरंदाजी संघ के महासचिव वीरेंद्र सचदेवा ने अहमदाबाद में होने वाली विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज से पहले आज भारतीय जर्सी का अनावरण किया। 2024 पैरालंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता हरविंदर सिंह और कांस्य पदक विजेता तीरंदाज शीतल देवी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। तो भारत इस एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए तैयार है। इस अवसर पर श्री मुंडा ने कहा कि ये खुशी का विषय है कि विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज गुजरात में हो रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के खिलाड़ी गुजरात आ रहे हैं और इस तरह के आयोजन खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। श्री मुंडा ने बताया कि उन निर्देशों के खिलाड़ी पहले ही यहां पहुंच चुके हैं।
1: मुझे बेहद खुशी है कि गुजरात में ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज, जिसके माध्यम से दुनिया भर के खिलाड़ी गुजरात में आ रहे हैं और वो अपना प्रदर्शन करेंगे। गुजरात गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है और इस तरह के आयोजन होने से देश के खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। अभी 19 कंट्री के लोग यहां पहुंच चुके हैं। देखा जाए तो पहली बार ऐसा मोदी गवर्नमेंट के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में एक विजनरी लीडरशिप के साथ खेल को नया आयाम देने में देश सफल हो रहा है।
0: तो भारत एक बेहतर आयोजन स्थल के रूप में उभरता हुआ, और एशियाई खेलों के लिए एक और अपडेट भारत के पास है, जहां राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी जसवीर सिंह को जापान में होने वाले एशियाई खेलों के लिए चोटिल नीरज चोपड़ा की जगह 77 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम में शामिल किया गया है। तो विशेष इस पर आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि नीरज ने जो काम किया कि आज भारत में उनको देख करके बैक टू बैक कितने जेवलिन स्टार्स जसवीर, सचिन, किशोर जेना तैयार हैं कि अब पूल की कमी नजर नहीं आती।
2: जी बिल्कुल शक्ति, जब यशवीर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीता था तब सभी का पूरा श्रेय, इसका पूरा श्रेय जो है सभी ने नीरज को दिया था कि उन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर एक नया टारगेट सेट किया था भारतीय जेवलिन थ्रोअर्स के लिए, और ये बहुत ही शानदार एक उनके लिए मौका है यशवीर के लिए, जो अब वो अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित करने के लिए देखेंगे।
0: जी बिल्कुल, यशवीर से उम्मीद होगी भारत को कि वो नीरज की कमी पूरी कर...

0: और जब नीरज के स्थान पर आप आए हैं तो आपसी उम्मीदें अपने आप बढ़ जाती हैं। विशेष जेवलिन हटा दिया जाए तो 77 मेंबर्स का ये स्क्वाड है, किन खिलाड़ियों से सबसे अधिक उम्मीदें भारत को होंगी?
1: भारत के लिए गुलवीर सिंह और पारुल चौधरी ये एक बहुत बड़े नाम के रूप में साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एशियाई खेलों में 3 स्पर्धाओं में ये भाग लेंगे। गुलवीर 10,000 मीटर, 5,000 मीटर और 1500 मीटर में, जबकि पारुल 3,000 मीटर स्टीपल चेस, 5,000 मीटर और 1500 मीटर में हिस्सा लेती नजर आएंगी।
0: जी बिल्कुल, आपने गुलवीर सिंह का जिक्र किया और हमारी आंखों के सामने वो तस्वीरें आई जब अभी हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने 2 पदक भारत के लिए जीते, 10,000 मीटर में सिल्वर मेडल और 5,000 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए, यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस पर अपनी राय और सुझाव आप हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पे भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में MSME के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री ने वाराणसी की स्थिति की जानकारी ली। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
3: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
3: भारत और बेल्जियम दोनों ही रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया।
3: इस वर्ष की शुरुआत में हमने ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच यह अभूतपूर्व सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को भी नई मजबूती देगा। भारत की निरंतर आर्थिक प्रगति और इस एग्रीमेंट ने हमारे आर्थिक संबंधों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले।
2: बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
4: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था

0: वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता के सफल समापन का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतक समझौते पर वार्ता को भी जल्द पूरा करने पर जोर दिया। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने नियमित आदान प्रदान, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रक्षा औद्योगिक साझेदारी के माध्यम से रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और बेल्जियम की संघीय पुलिस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने यह बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री तेओ फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। भारत ने ब्रसेल्स में डिफेंस अटैशे नियुक्त करने का फैसला किया है। बेल्जियम ने इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में डिफेंस अटैशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी दी। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण पर श्री जॉर्ज ने कहा कि उसे पिछले साल अप्रैल में बेल्जियम के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और तब से वो बेल्जियम की जेल में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे।
3: मेकिंग इंडिया $30 trillion इकोनॉमी।
4: भारत 2047 तक $30 trillion की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश अपनी आर्थिक यात्रा के अहम दौर में है। पहली तिमाही में 7.8% का सकल घरेलू उत्पाद बहुत उत्साहजनक है और भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। दुनिया भर में अनिश्चितता और भारी उथल पुथल के इस दौर में ये बड़ी उपलब्धि है।
3: अराउंड द वर्ल्ड इज नो मीन अचीवमेंट।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत हमेशा से ये कहता आया है कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है और इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। श्री जयशंकर ने यूक्रेन के कीव में वहां के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा से मुलाकात के बाद ये बात कही। श्री जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिन पहले किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए गए बयान को दोहराया। श्री मोदी ने कहा था कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करना होगा। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए भारत की ओर से हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। बाद में विदेश मंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की और मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के उपायों पर चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार विभाग के रणनीतिक योजना और समन्वय

0: की सचिव एलेनोर जेन लॉसन से मुलाकात की। दोनों ने द्विपक्षीय हितों से जुड़े मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4,216 लोग अब भी लापता हैं। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। तेज बारिश के कारण जौनपुर, सोनभद्र, वाराणसी, पीलीभीत, चित्रकूट और चंदौली में आज स्कूल बंद रहे। इस बीच मौसम विभाग ने कल मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कल तेज बारिश का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। सरकार ने आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित इस संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय कल से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को एक साथ लाने का अवसर मिलेगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में 2 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। हांगकांग ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अनाहत सिंह लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम की नील गिलस को 2-1 से हराया। किदाम्बी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में कनाडा के विक्टर लाई को हराया, जबकि सात्विक और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव की जोड़ी को हराया। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रेस्टो को हार का सामना करना पड़ा। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन कल जन्माष्टमी के भव्य उत्सव के लिए सज धज कर तैयार है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि में तैयारियां जोरों पर हैं। मथुरा में पहली बार कल जन्माष्टमी के मौके पर 500 द्रोण आकाश में भगवान कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत रूप से प्रदर्शित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जन्माष्टमी समारोह में भाग लेने के लिए मथुरा पहुंच चुके हैं। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने आज श्री स्वामी हरिदास सभागार का उद्घाटन किया और 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि श्रीमद् भगवद् गीता में दी गई श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी कठिन समय में सही निर्णय लेने और नैतिक मूल्यों पर दृढ़ रहने की प्रेरणा देती हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
4: सेंसेक्स 417 अंक गिरकर 76,153 पर बंद हुआ। निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 23,873 पर रहा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 49 पैसे मजबूत होकर 94 रुपए

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विनय सक्सेना। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया।

ना जाने उन्हें हमारी सूरत पसंद आई या सीरत, ना जाने हमारे बोलने का अंदाज पसंद आया या लफ्ज, बेवजह तारीफ करना आदत सी लगती है उनकी। कहते हैं हर धड़कन पर नाम है तुम्हारा, चाहो तो पढ़ लो हर लफ्ज।

अंतराल के बाद छाया गीत कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्यार जब परवान चढ़ जाए तो फिर क्या सुबह क्या शाम, दिल गुनगुनाता है सिर्फ अपने दिलबर का ही नाम। निकाले चाहे कोई लाख बुराई, करे कितना ही बदनाम, हंसते हंसते सह जाते हैं आशिक हर खुशी हर गम का जाम।

अचानक जब तुम यूं मेरी नजर के सामने आ जाते हो, दिल की धड़कन कुछ इस कदर बढ़ जाती है मानो सारी जिंदगी एक पल में सिमट गई हो। तुम्हारे साथ बिताए चंद पलों को याद करती हूँ तो लगता है मानो ये जिंदगी उन चंद पलों में ही थम गई।

तुमसे मिलने की कसक ने इस कदर बेताब किया कि भीगी भीगी रातों में भी जलने लगा मेरा जिया। अब अगर तुम आ जाओ तो चैन आ जाए, मेरा दिलदार आ जाए तो करार आ जाए।

सुना रही हूं प्यार की कहानी, प्यार से सुन लो। मैंने तुम्हें चुन लिया है, अब तुम भी मुझे चुन लो। ना सुनने की हालत में अब नहीं रहा ये दिल मेरा, मैंने राह चुन ली है तुम्हारी, तुम भी मेरी राह चुन लो।